आसन हमें उस प्राणायाम का महत्व उनसे जुड़कर नहीं समझ में आता है। इसीलिए यह 30 दिवसीय जो कि योग साधना का एक नया कार्यक्रम सीरीज शुरू हुई है, वह इसी कार्यक्रम, इसी श्रृंखला और इसी को उद्देश्यपूर्ण और बनाने के लिए। तो आइए भावना के अर्थ को हम योग अभ्यास के माध्यम से, एक शब्द के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज के भागम भागी जीवन को व्यवस्थित रूप से एवं संतुलित रूप से करने के लिए भावना योग अति आवश्यक है। कई संत महात्माओं ने कहा है कि भावना योग तन को स्वस्थ और मन को मस्त व आत्मा को पवित्र बनाने के लिए अभिनव प्रयोग है। अभिनव प्रयोग का मतलब है कि यदि, जो कि हम बहुत सारी ऐसी भावनाएं होते हैं जो कि हम अपने सामने वाले को प्रतीत नहीं करा पाते हैं, जैसे हम कुछ कहना चाह रहे हैं पर वह भावना उन तक नहीं पहुंच पाती है। ये भी है कि भावना जिस तरीके से हम अपने सामने वाले की ओर रखते हैं, वैसे ही हमें वह सामने वाला भी प्रतीत होने लगता है। यदि हम किसी को चाहपूर्ण से चाहते हैं तो वैसे ही उनके प्रति भावना बनने लगती है, और यदि हम किसी को घृणा रूप में देखते हैं, दोषपूर्ण देखते हैं, तो वैसी ही भावना सामने वाले के लिए बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी भावना को शुद्ध, पवित्र और जो कि विकृत अगर भावना आ रही है उसे हटाते हुए एक पवित्र और उज्ज्वल रखनी चाहिए। योग साधना में भावना योग साधना क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। पहला, भावना योग में आता है चमत्कारिक आसन, दूसरा एक्सरसाइज और तीसरा प्राणायाम। भावना से जुड़ी हुई कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसे हम समझ तो पाते हैं लेकिन हम अंतर रूप से कर नहीं पाते हैं। भावना योग साधना से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण शब्द जो कि हमारे आज के योग साधना में सबसे पहला आता है, चमत्कारिक आसन। कई बार हम आसन तो बहुत सारे कर लेते हैं, जैसे आसन में सबसे महत्वपूर्ण आता है सूर्य नमस्कार, चक्रासन, उष्टासन और भी ऐसे बहुत सारे आसन हैं। लेकिन क्या हम ये जान पाते हैं कि किस आसन के साथ में हमारी कौन सी भावना जुड़ी है? ये भी तो हो सकता है कि भावना हमारी केवल की केवल यही है कि हमें पतला होना है, हमें दुबला होना है और हम इसीलिए उस योग साधना आसन को करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको वो उतना ही असर देता भी है। लेकिन यदि हम भावना ये रखें कि हमें स्वस्थ होना है, हमारा शरीर बहुत सारी ऐसी बीमारियों से हट करके स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु में हमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी का सामना ना करना पड़े। काफी लोगों की ये मनसा होती है कि हम योग साधना सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारा एक रूटीन बना रहे। साथ ही साथ योग साधना से जुड़ने के लिए कई ऋषि मुनियों ने यहाँ तक बता दिया है कि भावना सबसे महत्वपूर्ण और पहला कारण है योग से जुड़े रहने का। योग से जुड़े रहने का महत्वपूर्ण कारण, सिर्फ भावना को ही हम महत्व इसलिए दे रहे हैं कि यदि हम सवेरे उठ करके हमारे मन में ये भावना है कि हम किसी स्वच्छ स्थान में बैठ जाएं और आराम से योग साधना को करें, तो यह भावना हमें रात में भी सोने नहीं देगी। हमें सवेरे उठ करके जल्दी से इस प्रक्रिया को करने के लिए एक भावना जागृत करेगी। अंतर मन से हर प्रकार के कामों को करने के लिए सबसे पहले भावना ही उठती है। यदि हम किसी को माने, हम किसी मंदिर में जाएं, हम भगवान की प्रार्थना अर्चना करें, यदि भावना सही ना हो तो हो सकता है? नहीं, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में एक शब्द जुड़ा है जो कि है भावना। आपने अभी एक बात गौर करी, भक्त भी भ से, भगवान भी भ से और भावना भी भ से, यानी कि भक्त, भगवान और भावना, ये तीनों चमत्कारिक शब्द इसलिए हैं कि तीनों के बीच में एक ही अंग

एक ही का अक्षर होना, भ। भ से भगवान, भ से भक्त और भ से भावना। इसीलिए कहा गया है कि यदि हम भावना से घर बैठे हुए अपने भगवान को याद कर लें तो ही हमारी भावना उन तक पहुंच सकती है। योग साधना में भावना का अर्थ इतना दीर्घ बताया गया है कि अगर हम अभी आपके साथ में बताने के लिए बैठ जाएं तो काफी देर लग जाएगी, लेकिन भावना का सही उपयोग योग साधना में ये बताया गया है। तो आइए हम अब चलते हैं अभ्यास की ओर, जो कि है भावना योग। योग में सबसे पहले हम किसी स्वच्छ स्थान पर और एकांत वातावरण में बैठ जाएंगे। पद्मासन की स्थिति में, यदि आप पद्मासन की स्थिति में नहीं बैठ सकते हैं तो आप साधारण सी पलथी मार करके भी बैठ सकते हैं। यदि आप जमीन पे भी नहीं बैठ सकते हैं तो आप किसी भी कुर्सी पे जो बिना हत्थे वाली है आप उस पे भी बैठ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए प्राणायाम आसन के प्रति। तो आइए हम अपनी भावना योग भावना शुरू करते हैं। पद्मासन की स्थिति में या साधारण सी पलथी मारने की स्थिति में जब हम बैठ जाएंगे, उसके बाद हम एक हथेली यानी कि अपनी दाहिनी हथेली बाई हथेली के ऊपर रख देंगे। उसके बाद में जैसे हम हवन यज्ञ में जाते हैं, हम आचमन करते हैं, उसी तरीके से उसी अवस्था में आराम से बैठ जाएंगे और एकांत चित होकर के भावना योग की तरफ बढ़ेंगे, कुछ इस तरह।

हाथों की हथेलियों में घर्षण करने के बाद में चेहरे पे और अपनी आंखों पे लगाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। भावना योग इसलिए है क्योंकि भावना योग हम भावना से जुड़ रहे हैं, अपनी अंतर आत्मा को पहचानते हुए अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल अवस्था की ओर जाते हुए हम एकाग्रचित होकर के भावना योग की ओर आगे बढ़ेंगे। आती जाती श्वास को महसूस करेंगे, कोशिश करेंगे कि दाहिनी नासिका को अपने अंगूठे से बंद कर लें और बाईं नासिका से श्वास को लेंगे व छोड़ेंगे। कुछ इस तरह आवाज आएगी और यही प्रक्रिया हम लगातार 1 से 1.5 मिनट तक करते रहेंगे। तत्पश्चात बाईं नौसिका को बंद करके हम दाहिनी नौसिका से श्वास की प्रक्रिया को लेंगे और छोड़ेंगे। सिर्फ यही प्रक्रिया एक ऐसी है जो कि हम भावना योग में करते हैं। इस प्रक्रिया को करने से हमारी अंदर की जितनी भी विशुद्धि होती है वह बाहर निकलेगी और सही प्रकार में, सही मायने में जो कि प्रक्रिया है श्वास लेने की वह अंदर जाएगी। इसी प्रक्रिया को 1 से 1.5 मिनट हम आराम से करेंगे और उसके बाद हम पूर्णतः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। एक साक्षी चित्र होकर के फिर से हम ओम की स्थिति

तो भावना योग आज आपने समझा कि भावना योग में हमने सबसे पहले ध्यान योग को लगाते हुए किस तरीके से हम मुद्राओं के साथ में जुड़ते चले गए। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं भावना योग के लाभ। भावना योग के लाभ हम कुछ इस तरह बताएंगे आपको, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी जो जीवन शैली है वह हमेशा भागम भागी और सारे कामों को एक साथ करने की एक शैली बन चुकी है, लेकिन भावना योग आपको एक संतुलन से कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। भावना योग, जैसा कि बताया, यदि नित सवेरे आप केवल इस प्रक्रिया को 5 से 7 मिनट, ये आगे की अवस्था है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था आप इसे 1 मिनट से शुरू करते हुए 1.5 मिनट 2 मिनट तक कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में संतुलन शक्ति ज्यादा बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि जब आप किसी यज्ञ में जाते हैं तो आचमन कराया जाता है, और आपने इस योग साधना में आचमन भी किया, तो इसका मतलब यही हुआ कि योग शुरू करते समय हमें आचमन भी कराया गया और फिर आगे की प्रक्रिया को समझाया गया। हम एक बार फिर से बता देते हैं कि योग यानी भावना योग साधना में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। पद्मासन की स्थिति, या फिर आप बैठ सकते हैं साधारण सी पलथी मार करके, दाहिनी नासिका को बंद करके बाहिनी नासिका से सांस लेना है 1 से 1.5 मिनट तक, और वहीं से छोड़ना है। तत्पश्चात बाई नासिका को बंद करके दाहिनी नासिका से सांस लेना है व छोड़ना है। यही प्रक्रिया 1 से 1.5 मिनट तक चलती रहेगी। पुनः बताने का उद्देश्य यही है कि यदि आप में से किसी ने भी सुनने समझने में अगर आपसे कोई त्रुटि हुई हो तो हम उन्हें पुनः बता दें। लाभ, भावना योग का लाभ बहुत ही संक्षिप्त है, जिसे आप स्वयं भी समझ सकते हैं और को भी समझा सकते हैं। भावना योग, जैसा कि बताया, लाभ यह बिल्कुल जांचा परखा हुआ ही है कि भावना योग जब से आप करने लगेंगे आपको इसका लाभ 15 दिनों के अंदर ही मिलने लगेगा। उसके पहले आपको यह पक्का करना है अपने आप को कि हमारी भावना हमारे सामने वाले के प्रति कितनी ज्यादा पवित्र है। इसी दृढ़ संकल्प के साथ हम भावना योग को करें और सामने वाले तक भी हम सही व सच्ची भावना पहुंचाने में सक्षम रहें। छोटा सा उदाहरण हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि हम सभी एक पारिवारिक माहौल में रहते हैं। कई बार हमारे परिवार में कई ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमें अप्रिय लगती हैं, जैसा कि किसी से विवाद हो जाना, किसी से बोलचाल बंद हो जाना। अगर हम उस स्थिति में एक मौन की स्थिति आ जाए और अपने आप को मौन करते हुए भावना योग की ओर अगर चले जाएं, तो तुरंत ही आपको इसका लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए कैसे, हम बताते हैं आपको। मान लीजिए कि आपके घर में, आपके पारिवारिक में किसी से कोई विवाद की स्थिति है। उसके बाद में हमने उस समय तो विवाद कर लिया, लेकिन पूरा दिन हमारे अंतर मन में उनके लिए कुछ ऐसी उठपटांग सी बातें चलती रहती हैं। यदि वह बातें हम ना चलाते हुए उनके लिए अच्छा सोचें कि हो सकता है उन्होंने हमें इस तरीके से बोला हो, उसका अर्थ यह हुआ हो, यही भावना आपके सामने वाले तक भी जाएगी, क्योंकि एक साइंटिफिक रीजन है टेलीपैथी। हम जो सोचते हैं वह तुरंत हमारे सामने वाले की ओर अग्रसर हो जाती है। तो इसीलिए भावना योग से जुड़ें और हमारे साथ नित प्रतिदिन आकर के योगशाला में जुड़ें। और इसी के साथ आज की सीरीज में भावना योग हम सभी मिलकर के करेंगे, यह एक दृढ़ संकल्प लेते हुए मुझे दे इजाजत, करें योग, रहे निरोग।

सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है, साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से, वसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास, हमें इस महीने में यानी कि वसंत ऋतु में फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है, हम सभी लोगों ने मिलकर के सूर्य नमस्कार को किया भी है। 12 आसनों से मिलकर एक आसन बना जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। दूसरा आसन आता है कपालभाति, जो कि हमारी पेट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कपालभाति हम सभी जानते हैं कि हमारी आंतरिक चीजों को किस तरीके से डिटॉक्स करता है, यानी हमें अगर गैस, एसिडिटी, अपच, पेट में जलन या अगर हम कुछ भी खाते हैं, हमें तुरंत पेट में दर्द होने लगता है या हमें सौंच जाने की आवश्यकता होती है, तो कपालभाति नियमित रूप से करने से ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा अभ्यास आता है भस्त्रिका, जो कि
हमारे पूरी शरीर को डिटॉक्स करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास से निर्मित और हमारी आंतरिक नलियों को साफ करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए सर्वप्रथम हम किसी भी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा आसन है जो कि हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वह मल के माध्यम से बाहर आ जाती है। सक्रिय और तेज अभ्यास करें। ये महीना वो होता है यदि हम इसमें कुछ भी खा ले तो आसानी से पच जाता है, इसीलिए सक्रिय आप जिस भी दशा में अभ्यास करेंगे वह आपके लिए उपयोगी होगा। सक्रिय और तेज अभ्यास करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का अभ्यास होता है। खानपान की बात अगर हम करें तो इस महीने में हल्का गर्म और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए, और साथ ही साथ शहद हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है, खास करके फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में। शहद का उपयोग हम कई बार कई रूपों में कर सकते हैं। सुबह योग के बाद गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद को मिला करके पीने से जिन लोगों को लगता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट है, चर्बी है, या फिर हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, हमेशा उदासी बनी रहती है, शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त फुस्त करने के लिए शहद का उपयोग फायदेमंद है। आइए अब सावधानी की ओर चलते हैं। कफ की अधिकता न हो इसलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में हल्की ठंडी होती है और फिर हल्की सी गर्मी, जिसमें कफ की अधिकता बढ़ जाती है, इसीलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। तो ये था दोस्तों वसंत ऋतु, जो कि फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने तक के लिए एक आसन अभी हम लोगों ने मिलकर के किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, वह है सूर्य नमस्कार और कपालभाति, भस्त्रिका जो डिटॉक्स के लिए। अगले ऋतु यानी अगले मौसम के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सा अभ्यास, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों हर बार की तरह योगशाला में भी आज मैं जो आप सभी के लिए लेकर के आई हूं वो है समय सारणी, मतलब योग की समय सारणी। अब आप सोच रहे होंगे कि योग की समय सारणी क्या होती है। समय सारणी का मतलब होता है कि किस समय कितना और कौन से प्राणायाम को करना है, और उसका लाभ भी एक साथ हम आज आपको बताएंगे। प्राणायाम के साथ साथ आसन और सूक्ष्म व्यायाम हम एक साथ करेंगे।

नमस्कार आदरणीय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पहली किरण, वो किरण जो सिर्फ सूरज की नहीं बल्कि उम्मीद, विश्वास और ईश्वर से जुड़ाव भी है। सुबह की इस पवित्र बेला में जब हवा में शांति है और मन अभी भी कल की भागदौड़ से दूर है, तो आइए कुछ पल अपने आराध्य को समर्पित करें। पूजा तभी फलीभूत होती है जब उसमें प्रत्येक विधि विधान का पालन किया जाए। इसलिए आज का जो एपिसोड होगा वो आपकी अपनी आरजी आकांक्षा पूरी तरह से आरती पर केंद्रित करेगी। आरती, आरती वो है जब हम पूरी पूजा करने के उपरांत दो पल ईश्वर को गीत, लय, ताल सभी के द्वारा वंदन समर्पित करते हैं। और कहा भी जाता है कि अगर आपने मात्र आरती पूरे मन से कर ली तो समझ लीजिए ईश्वर की पूरी पूजा आपने पूरी कर ली। तो चलिए इसी क्रम में आज की सबसे पहली वंदना, सबसे पहली आरती जो हर पूजा में सर्वप्रथम की जाती है, किसकी? प्रथम पूज्य श्री गणेश की। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात हे भव्य शरीर वक्रसुंड सूर्य की चमक वाले गणेश जी, मेरे सारे कर्मों को विघ्नों से सदैव मुक्त करते रहना, इस मंत्र का जप अति उत्तम माना गया है। साथ ही गणपति की आरती आइए मिलकर करें।

श्रोताओं, आरती केवल दीपक घुमाना नहीं, आरती है अहंकार का अंधकार हटाना, मतलब मन के मंदिर में श्रद्धा का दीप जलाना। जब हम आरती करते हैं तो हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, ऐसा नहीं है, हम कुछ नहीं मांगते बल्कि खुद को उनके श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं। दीप जले तो भीतर के मन में भी एक उजाला सा हो जाता है, मन की हर नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो चलिए इसी भाव से माँ लक्ष्मी की आराधना इस आरती के माध्यम से करते हैं। उससे पहले माँ लक्ष्मी का ये सबसे प्रचलित मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए यदि विधिवत माता लक्ष्मी का नित्य पूजन किया जाए तो जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में धन संपदा बनी रहती है। आइए माँ को मनाते हैं माँ की आरती से।

मित्रों, वैसे तो हम अपनी पसंद से कोई भी आरती का चुनाव कर सकते हैं, और एक आरती है जो कि सार्वभौमिक है, जिसके बोल हैं, आरती कीजिए प्रभु की, मन मंदिर में दीप जले, दुख दरिद्र सब दूर हो, जीवन पथ पर सुख फले। तो ये आरती जो सभी धर्मों के लिए एकदम उपयुक्त है। इसके अलावा आरती हमें ये सिखाती है कि अगर मन सच्चा हो तो हर सांस भी प्रार्थना बन जाती है। आज का दिन किसी से शिकायत नहीं करना, किसी के लिए दुआ बनने का दिन हो जाए, ऐसी भावना के साथ में हमें आज का दिन बिताना है। लेकिन उससे पहले, घर में हो या सफर में, काम पर हो या अकेले, बस मन से एक दीप जला लीजिएगा। किसके लिए? ईश्वर के लिए, जो कि हर जगह व्याप्त है। चलिए तो उन्हीं ईश्वर की वंदना करते हैं, उनके श्री चरणों की ओर फिर से बढ़ते हैं। और इस बार हम आरती में चयन करके लाए हुए हैं श्री जगदीश्वर यानी जगत पिता श्री विष्णु जी की आरती। उससे पहले ये मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितनी मधुरता है और कितनी मिठास है इस प्यारे से मंत्र में। अर्थात, मैं भगवान वासुदेव को नमन करती हूँ। ये मंत्र महर्षि नारद के मुख से उत्पन्न माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने से मन मस्तिष्क शुद्ध होते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, करते हैं ना श्री हरि की आरती।

आप सुन रहे हैं आरती स्पेशल पहली किरण, जहां हर सुबह होती है श्रद्धा, शांति और सकारात्मक ऊर्जा के नाम। आज हम बात करेंगे उस परंपरा की, या कर रहे हैं उस परंपरा की, जो शब्दों से नहीं प्रकाश से प्रार्थना करती है, यानी आरती। प्राचीन काल की आरती। प्राचीन समय में जब मंदिर नहीं थे, मंत्र पुस्तकों में नहीं हुआ करते थे, बल्कि मनुष्य के हृदय में बसते थे मंत्र, तब अग्नि ही गुरु थी। ऋषि मुनि यज्ञ की अग्नि के चारों ओर बैठकर दीप और अग्नि के माध्यम से ईश्वर को नमन करते थे। ये आरती यानी प्रकाश को साक्षी मानकर की गई प्रार्थना। तो सबसे प्राचीन जो हमारे ईश्वर में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, यानी भोलेनाथ, चलिए अब उनकी प्रार्थना करते हैं और उनका वो पंचाक्षरी मंत्र जो हम सभी के मुखारबिंदु पर अक्सर होता है, वही ओम नमः शिवाय, अर्थात मैं शिव को नमन करती हूँ। ये वो मूल मंत्र है जो शरीर का शुद्धिकरण करता है और ध्यान की अवस्था लाने में मदद करता है। इसे कई सभ्यताओं में महामंत्र भी माना गया है। तो चलिए फिर करते हैं महादेव की आरती।

दोस्तों अब बात करेंगे मध्यकाल और बाकी धर्मों की आरती पर। समय बदला पर प्रकाश की भाषा वही रही। हिंदू धर्म में दीप और कपूर से आरती की जाती है। बौद्ध परंपरा में दीपदान को आरती मानते हैं। जैन धर्म में जिनेंद्र देव के समक्ष दीप प्रज्वलन ही आरती है। सिख धर्म में आरती शब्द के साथ गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित ईश्वर की महिमा ही आरती है। इस्लाम में चराग और नूर की दुआ को आरती कहते हैं। ईसाई धर्म में मोमबत्ती जलाकर प्रभु के सामने मौन प्रार्थना करना आरती है। यानी सभी की आस्थाएं और सभी की श्रद्धा अलग अलग है, पर वो एक है कौन? हम सभी का ईश्वर। नाम अलग थे पर भावना एक, अंधकार से उजाले की ओर। तो चलिए फिर एक और आरती की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वो मंत्र जो हम सभी अपनी माँ को याद करते हुए पढ़ते हैं अक्सर। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, कोई भी रूप माँ का, माँ तो माँ है ना, तो माँ के लिए ये मंत्र। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रयंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात मंगल कल्याण मनोरथ पूरे करने वाली, भूत भविष्य वर्तमान देखने वाली गौरी व नारायणी यानी भगवान के सभी स्वरूपों के साथ आप ही जुड़ी हो। माँ आपको नमस्कार है।

श्रोताओं, अब बात करेंगे आधुनिक समय की आरती की। आज दीप एलईडी का हो सकता है, मोमबत्ती मोबाइल की स्क्रीन पर भी जल सकती है, पर जब हम किसी के लिए मन से दुआ करते हैं, किसी दुख के लिए दिल से रोशनी मांगते हैं, वही आधुनिक आरती है। चलिए अब आपको हम ले चलते हैं एक छोटी सी कहानी की ओर। एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। हर शाम एक हिंदू वहां दीप रखता, एक मुस्लिम चराग जलाता, एक सिख वाहिगुरु कहता, एक ईसाई मोमबत्ती रखकर मौन खड़ा हो जाता। किसी ने कभी नहीं पूछा किसका भगवान बड़ा है। बस एक बात सब कहते, आज थोड़ा उजाला और बढ़ जाए। एक दिन किसी बच्चे ने पूछा, ये सब अलग अलग क्यों करते हैं? बूढ़े पीपल की छांव में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा जब दीप जलता है तो वह धर्म नहीं पूछता, वह सिर्फ अंधकार मिटाता है। यही है सबसे बड़ी आरती। उस दिन से वो पेड़ गांव का मंदिर बन गया, गुरुद्वारा भी, मस्जिद भी और चर्च भी। चलिए सर्वधर्म को ऊपर रखते हुए ये आरती, उससे पहले ये मंत्र, मंत्र वही है, ओम राम रामाय नमः। मतलब ये वो शक्तिशाली मंत्र है जिसके जाप से विपत्तियां दूर होती हैं और शरीर निरोग रहता है। इसका जब चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। तो चलिए फिर आरती की ओर भी बढ़ते हैं।

दोस्तों, आरती किसी एक धर्म की नहीं है, ये मानवता की लौ है। जहाँ प्रकाश है वहाँ ईश्वर है। आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहाँ हर सुबह हर धर्म हर दिल एक ही उजाले में जुड़ जाता है। चलिए फिर इसी लौ को और आग देते हैं इस मंत्र और आरती के द्वारा। ये वो आरती है जो कि एक नटखट सी भावना को जन्म देती है। उससे पहले ये मंत्र, ओम क्लीन कृष्णाय नमः, अर्थात हे कृष्ण, मेरा प्रणाम स्वीकार करें तथा जीवन की बाधाओं से मुझे मुक्ति प्राप्त कराएं। ये एक शक्तिशाली मंत्र है जो आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा का आवाहन करता है। चलिए बढ़ते हैं श्री कृष्ण की आरती की ओर।

दोस्तों, यदि आपके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है तो उनकी सेवा एक छोटे बालक की तरह करें। मंदिर की पवित्रता हमेशा बनाए रखें। कोशिश करें कि वहाँ का वातावरण हमेशा सुगंधित रहे। चलिए, अब आपको ले चलते हैं एक और आरती की ओर, जो है किसकी? उस देवी की जो हमें बुद्धि देती हैं, हमारे मस्तिष्क में ज्ञान का प्रसार करती हैं और साथ ही साथ में हमारे बुद्धि, मन और सभी चीज़ों को स्वस्थ रखती हैं। माँ शारदे, सरस्वती महाभागे, विद्ये कमल लोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी, विद्याम देहि नमोस्तुते। अर्थात अक्षर, शब्द, अर्थ और छंद का ज्ञान देने वाली भगवती सरस्वती, मैं आपकी वंदना करती हूँ, मैं आपको नमन करती हूँ। चलिए, अब बढ़ते हैं माँ शारदे की आरती की ओर।

श्रोताओं, पूजन में आप अक्सर सोचते हैं कि दीप क्यों? तो दीपक को ज्ञान और रोशनी का प्रतीक माना जाता है। दीप प्रज्वलन का भाव है। दीपक से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे वातावरण शुद्ध होता है क्योंकि दीपक में गाय का घी या तेल इस्तेमाल किया जाता है जो घर से रोगाणुओं को दूर भगाता है। देखा ना, इसमें धार्मिक होने के साथ साथ में कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी प्रचलन माना जाता है और घर के वातावरण को पवित्र भी बनाता है दीपक। दीपक जलाने से पूरे घर को फायदा मिलता है, चाहे वो पूजा में सम्मिलित हो या नहीं। हम अज्ञान का अंधकार मिटाकर अपने जीवन में ज्ञान के प्रकाश के लिए पुरुषार्थ करें, दीपक का यही संदेश है। तो चलिए इसी संदेश के साथ में बढ़ते हैं एक और आरती की ओर, जो कि है इस धरती को जीवन देने वाली माँ की आरती, यानी गंगा आरती। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। इस मंत्र का जप करने से जातक को वैसे ही पुण्य प्राप्त होते हैं जैसे गंगा स्नान करने से मिलता है। पापों के लिए क्षमा मांगने और मुक्ति के लिए ये अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। चलिए अब एक बार करते हैं क्या, हर हर गंगे।

दोस्तों चलिए अब आपको ले चलते हैं पूजा विधान में शंख के महत्व की ओर। अक्सर आपने सुना होगा कि वार्तालाप के दौरान हमारे पुराने यानी पौराणिक पंडित और सभी बोलते हैं, घर वाले भी, आस पड़ोस के लोग भी, कि पूजा में दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग करें या उत्तरावर्ती शंख का प्रयोग करें। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि शंख का महत्व क्या है पूजा विधि में। धर्म शास्त्रों के अनुसार शंख बजाने से भूत प्रेत अज्ञान रोग दुराचार पाप दूषित विचार और गरीबी का नाश होता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार शंख बजाने से हमारे फेफड़ों का व्यायाम होता है, श्वास संबंधी रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। पूजा के समय शंख में भरकर रखे गए जल को सभी पर छिड़का जाता है क्योंकि शंख के जल में कीटाणुओं को नष्ट करने की एक अद्भुत शक्ति होती है। साथ ही शंख में रखा पानी पीने से स्वास्थ्य लाभ होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत के लिए ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। शंख में कैल्शियम फास्फोरस और गंधक के गुण होते हैं जो उसमें रखे जल में आ जाते हैं। तो इतना सब कुछ होता है शंख में। अब इसी शंख की शक्ति को और हम बढ़ाते हैं एक प्यारे से मंत्र से जो कि है हनुमान जी का, ओम नमो भगवते अंजनेय महाबलाय नमः। अर्थात मैं अंजना के पुत्र महाबलशाली भगवान हनुमान को नमन करती हूँ तथा उनके समक्ष समर्पण करती हूँ। मान्यता है कि इस मंत्र के जप से असाध्य रोग नष्ट हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं महा आरती यानी महाबली की आरती।

श्रोताओं, इतना कुछ आज हमने सुन लिया, जाना आपके अपने शो पहली किरण में आपकी आरजे आकांक्षा के साथ में पूजा विधान के बारे में। अभी चलते चलते आपसे हम एक और बात पे चर्चा कर लेते हैं। कई दफा होता है ना कि हम सोचते हैं कि कहाँ हो घर का मंदिर, तो आइए जानते हैं कि घर का मंदिर कहाँ होना चाहिए। वैसे तो घर के मंदिर पर विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन शास्त्र अनुसार घर में मंदिर का निर्माण ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के कोने में होना चाहिए और मंदिर ठोस आधार यानी समतल जमीन पर रखा होना चाहिए। उत्तर पूर्व में संभव ना हो तो आप उत्तर या पश्चिम में भी मंदिर बनवा सकते हैं, लेकिन मंदिर के नीचे कोई दराज ना बनवाएं। घर में मंदिर के ऊपर ध्वजा का चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। जगह ना हो तो घर की छत पर भी ध्वजा लगाई जा सकती है। तो अभी हम बढ़ेंगे एक और आरती की ओर, जो कि है हम सभी की सबसे प्यारी, हाँ, गो माता की। कहते हैं ना कि गो माता के शरीर में 33,000 करोड़ यानी 33,000 कोटि देवताओं का वास माना जाता है। इनके श्री पग जहाँ भी पड़ते हैं वो जमीन अपने आप में ही माना जाता है कि गंगा का वहाँ पे उद्गम होता है, क्योंकि इनके खुर से ही गंगा का उद्गम माना गया है। सर्व काम दूधे देवी सर्व तीर्थी भीषेचिनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यम नमोस्तुते। ये मंत्र गाय की महिमा का वर्णन करता है, जिसमें कहा गया है कि सभी तीर्थ उनमें निवास करते हैं, यानी हमारी गौ माता में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास माना जाता है।

अभी आप सुन रहे थे आपका अपना पसंदीदा शो जिसका नाम है पहली किरण, जो लेके आई थी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। अभी आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दे मुझे और मिलते हैं आपसे इसी शो के नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है कि पूजा विधान अब आपका उत्तम तरीके से होता रहेगा। राधे राधे, जय श्री राम, जय जिनेंद्र, अल्लाह हाफिज़।

0: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञान स्थली बीट्स नॉन स्टॉप, जहाँ गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञान स्थली 89.6।

क्या बात है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और आज सावन वाली फुहारों वाली बारिश लगातार हो रही है और आप ट्यून कर चुके हैं 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो फिलहाल आरजे अदनान आपके साथ मौजूद हैं आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। सो चलिए भाई इस गाने को ज़रा मुकम्मल तौर पर सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं, फिर बताते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे यानी थर्सडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे आखिर क्या है जो आपके लिए खासम खास बन करके आया है मॉर्निंग वाले शो

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: सुभैया, आज का थर्सडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट क्या कह रहा है? चलिए, आपको बेसब्री से इंतजार होता है इस थॉट का और हमको भी आप तक साझा करने का। सो आज का ये स्पेशल सा थॉट जो है वो क्या स्पेशल सी बात लेकर के आया है और किन बातों को कहने वाला है, क्योंकि बहुत छोटे से लफ्ज़ों में बहुत बड़ी और गहरी बातें कह जाते हैं ये थॉट्स। सो चलिए बताते हैं आज का क्या है थॉट ऑफ द डे।
3: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan.

आज का थॉट कहता है कि जिंदगी की जो मीनिंग है, यानी जिंदगी का जो अर्थ है, वो है अपनी प्रतिभा को खोजना। जी हाँ, यानी अपनी उस प्रतिभा, उसने गिफ्ट को खोजना जो प्रकृति ने दिया है, और जीवन का उद्देश्य है उसे दूसरों के साथ में साझा करना। वाह, कितनी बड़ी बात कहती ना, कितनी आसानी से। हाँ, सो जीवन का अर्थ है अपनी प्रतिभा को खोजना, और जीवन का उद्देश्य है उसे दूसरों के साथ में साझा करना। भाई, जिंदगी में हमको हमारा टैलेंट क्या मिला है, हमारा गिफ्ट जो नेचर ने हमको दिया है, उसको खोजते रहना कि हमारे अंदर क्या क्या है, क्या क्या है, तलाशते रहना। और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है उसी प्रतिभा को दूसरों के साथ साझा करना, ये उद्देश्य बनाना। यानी दो ही चीज़ तो मेन होती है कि भाई लाइफ की मीनिंग क्या है, और लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइफ का एम्बिशन क्या है, यही हम बात करते हैं। और सच में जिसको नहीं पता, बस यूं ही चलता रहता है, लेकिन जो खोज में निकल जाता है वो इस चक्कर में सब कुछ खोज लेता है, यानी काफ़ी कुछ देख लेता है, समझ लेता है। सो इसी कड़ी में आज का थॉट ऑफ द डे कहता है कि भाई जीवन का जो अर्थ है वो अपनी प्रतिभा को खोजना है। अब आप में क्या प्रतिभा है ये आप बेहतर जानते हैं, और अगर अभी नहीं जानते हैं तो कोई देर थोड़ी ना हुई है। जीवन का तो जो है अर्थ वो खोजना ही है, तो अर्थ तो पूरे जीवन भर हम खोजते ही रहेंगे, तो कभी देर नहीं होने वाली। सो चलिए आज से ही शुरू करिए। और जहाँ तक बात रही कि भाई जब मिल जाए अर्थ तो क्या करना है, जी हाँ, अगर मिल जाए या मिल चुका है तो उद्देश्य साफ है, सीधा है, क्या, दूसरों के साथ में साझा करना। सो आप भी साझा करिए अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को। जैसे मान लीजिए आपके पास टैलेंट है लिखने का, आप लफ्ज़ों के जादूगर कहलाते हैं, आप जो कुछ देखते हैं आँखों से वो लिख देते हैं कलम के ज़रिए, और आपके शब्द लोगों को पसंद आते हैं, उनके दिल तक जाते हैं या उनकी अनकही बातों को कह देते हैं, तो ये आपकी प्रतिभा है, वो आप खोज रहे हैं, और साथ ही आप लोगों से साझा कर रहे हैं, ये उद्देश्य है, क्योंकि नेचर ने आपको ये तोहफा दिया है। किसी को तोहफा दिया है कहीं कुछ बनाने का, क्रिएट करने का। कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोगों की हेल्प के लिए बाहर आ जाते हैं, है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करते हैं, जिस भी चीज़ में हाथ लगाते हैं पूरी ईमानदारी से करते हैं। सो ऐसे बहुत सारे आपके अंदर टैलेंट्स हैं, ये आपके जीवन का अर्थ है, ये मीनिंग है कि आपका जीवन जो है वो इन टैलेंट्स से भरा हुआ है, और उद्देश्य है कि इसी टैलेंट को हमें लोगों के साथ में साझा करना है। क्योंकि आप जब लिख रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए तो लिख नहीं रहे हैं, लोग भी उसको पढ़ रहे हैं। आप जब बोल रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए तो बोल नहीं रहे हैं, आप जब बना रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए तो बना नहीं रहे हैं, उसको लोग भी देख रहे हैं, है ना। तो यही है खूबसूरत सा जीवन, इसका यही अर्थ है, और यही इसका उद्देश्य है कि आपके अंदर का जो तोहफा है, आपके अंदर का जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उसे लोगों तक पहुँचाना, उसे साझा करना, अपनों के साथ साझा करना, गैरों के साथ साझा करना, आसपास के लोगों के साथ साझा करना। आई होप कि आज का ये थॉट ऑफ द डे अपने आप में खुद, यानी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद ही बयां कर रहा है खुद को, और आप समझदार तो हैं, यस। सो जाहिर है आप समझ गए होंगे कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या कहना चाहता है और इसके मायने क्या हैं। चलिए, बहुत अच्छी सी बात है, इसी बात पर एक बेहतरीन सा आपको सॉन्ग सुना देते हैं, क्योंकि मौसम भी लगातार लाजवाब बना। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आज हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही है। अगर अभी तक नहीं उठे और बाहर नहीं आए और हवाओं को नहीं फील किया, तो फटाफट से उठिए, हवाओं को फील करिए, घर का दरवाज़ा नॉक कर रही हैं हवाएं, ठक ठक ठक ठक।

0: हाँ जी, सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो, क्या नस्ते 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, क्योंकि आप लोग ने मैसेजेस भेज दिए हैं 89.6 एफएम के एप्लीकेशन की चैट पर। जी हाँ, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं, आप हमको ट्यून कर चुके हैं फ्रिक्वेंसी पर, आप हमको ट्यून कर चुके हैं रेडियो गार्डन पर, और साथ ही साथ आप सीधे सीधे सुन रहे हैं 89.6 एफएम के एप्लीकेशन से। सो यस, उसी एप्लीकेशन पर आपको ऑप्शन मिलता है चैट का, और उसमें जो कुछ लिखते हैं लाइव आपके फेवरेट आरजे, इस तक आपकी एक एक बात पहुंच जाती है। तो चलिए भाई, देखते हैं चैट बॉक्स पर क्या कुछ लिख भेजा है आपने।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो चैट बॉक्स पर आ गए हैं और देखते हैं भाई क्या क्या मैसेजेस आए हैं इस शो में। सबसे पहले जो मैसेज आया है वो आया है गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू का, आपको भी गुड मॉर्निंग। महेंद्र देपन राजस्थान से लिखते हैं सुप्रभात, सुप्रभात आपको भी, और लिखते हैं कि हर दिन एक नई शुरुआत है, ईश्वर की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे, आप पर भी बना रहे। और साथ ही साथ इसके बाद अनूप जी हमारे लिखते हैं कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता, ये तो बस अपनी अपनी समझ है, कोई कोरा कागज़ भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब भी नहीं समझता। क्या बात है, बड़े दिन बाद आए और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आपने एंट्री ली है। थैंक यू सो मच अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में, और आपको भी आ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। साथ ही साथ आपने लिखा है वाह सर, नाइस थॉट ऑफ द डे एज ऑलवेज, मजा आ गया सुनकर, सुपर मोटिवेशनल थॉट, थैंक यू सो मच कि आपको ये थॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड हमारी सविता जी ने सबसे पहले सुप्रभात के साथ कई सारे फ्लावर्स भेज दिए हैं। तो भैया जब बारिश होती है और फ्लावर्स भी आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब ये फ्लावर्स जैसे ही बारिश होगी तो चैट

बॉक्स पे भी बूंदे पड़ने के साथ ही ये भी खिल उठने वाले हैं, लेकिन दरअसल ये खिल उठते हैं आपकी स्माइल से। और देखिए मुस्कुरा रहे हैं आप। ऑलराइट, सो सविता जी ने उसके बाद लिखा है कि आज का सुविचार बहुत खूबसूरत लगा, हम आज भी खोज रहे हैं अपनी जिंदगी का मतलब। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, और मैं खुद भी खोज रहा हूँ फिलहाल। स्टूडियो में भी काफ़ी देखा, मिल ही जाएगा। इसके बाद जो मैसेज आया है वो हमारी आशु मिश्र जी का लखनऊ से आया है, लिखा है सुप्रभात सर जी। सुप्रभात, आपको भी आपका भी स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, और आपने भी ट्यून कर लिया है गुड मॉर्निंग गोंडा शो। यस, इसके अलावा आप कार ड्राइव करते हुए अपने 99.6 एफएम को सुन रहे हैं, आप किचन में काम करती हुई सुन रही हैं अपना ज्ञानस्थली एफएम, इसके अलावा आप जो है लेटे लेटे बैठे बैठे नाश्ता करते हुए भी सुन रहे हैं गोंडा एफएम 99.6 एफएम। और ये देखिए भाई, हमारे अनूप जी ने लिखा है कि पसंद तो सर आप भी हैं जो इतने अच्छे थॉट्स लाते हैं, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच। और हम तो हमेशा से साथ हैं, और हमें ये भी लगता है कि आप भी परमानेंट जो है वो साथ रहने वाले हैं अनूप जी, ये आपको वादा करना होगा। थैंक यू सो मच इस खूबसूरत से कॉम्प्लीमेंट के लिए, इस मैसेज के लिए। और देखिए बात ही बात में चैट बॉक्स तक आ गई है हमारी गीता श्रीवास्तव जी गोंडा से ही, आपने भी लिखा है गुड मॉर्निंग आरजी से, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। सो फैमिली के मेंबर्स जो है वो लगातार गैदर्ड हो रहे हैं, आते जा रहे हैं, और चैट बॉक्स पर आप आ जाते हैं तो हमको ये दिख जाता है कि भाई आपने लिखा क्या है। चलिए ऐसे ही एंजॉय करते रहेंगे, क्योंकि आज तो आपको आपकी सिटी की अपडेट भी मिलने वाली है, इसलिए आप बने रहिए। और इतनी सारी बातें, इतनी सारी हैरान कर देने वाली बातें, इतनी सारी खुशियों को लाने वाली बातें, सब कुछ हम लाए हैं, लेकिन बात यह ना कि अगर आप साथ हैं तो, यानी ये सब कुछ है जो आप तक पहुँचाना है, जो काफ़ी हैरान करेगा, आपको सोचने पर मजबूर करेगा, और साथ ही साथ एक चेहरे पे स्माइल देके जाएगा। और जैसा कि हमारे अनूप भाई ने कह दिया है, प्रॉमिस आई विल ऑलवेज विद यू, थैंक यू सो मच। वही वाली बात, अगर तुम साथ हो तो फिर क्या बात हो।

हाँ जी, अगर तुम साथ हो तो फिर क्या बात हो। और इसी में देखिए भाई, आप लोगों को सॉन्ग काफी ज्यादा पसंद आया है। चैट बॉक्स पर आए हुए आपके रिएक्शंस बता रहे। फिलहाल सनी भी आ गए हैं। सनी, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में, और साथ ही साथ आपको भी आ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सो यस माय डियर फ्रेंड्स, अब जस्ट इसके बाद जब वापस आ रहे हैं तो गोंडा की अपडेट लेकर के आ रहे हैं, तो आपको अब आज पता चलने वाला कि आज क्या कुछ होने वाला, कौन कौन सा इवेंट है, कहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, और कहाँ किसका सिलेक्शन हुआ है, और क्या क्या कुछ होने वाला है आपके काम का। ये सब कुछ बता रहे हैं आपके मॉर्निंग वाले जॉक आरजे अदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, जो कि आपको सुनने को मिलता है हर मॉर्निंग रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। और वैसे भी कहते हैं कि जिंदगी को खुशनुमा बनाना है तो हर उस शख्स को, हर उस शय को अपना लो जो तुम्हें अपनापन वाला फील दे। फिलहाल आप दे रहे हैं। हाय दो पखी, अरे भाई आप भी गाइए ना जिंदगी। यस yes!

0: नहीं नहीं इंतजार नहीं करना, अब तो हम बताने वाले हैं ना।
1: तुम्हें प्यार कब तक ना
0: है, प्यार तो हमेशा आपको करना ही पड़ेगा, इसका तो हम पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। सो चलिए वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। आज आप सोच रहे हैं कि भाई आरजी अदनान इतना चहक क्यों रहे हैं, जाहिर है मौसम मौसम मौसम। सो चलिए फिलहाल वक्त हो गया आपको सिटी की अपडेट से रूबरू कराने का और बताने का कि भाई क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ चलने वाला है अपने शहर गोंडा में।
2: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो भाई आपको बता देते हैं क्या क्या अपडेट आ रही है सिटी में से। सो यस ऑफ कोर्स, सबसे पहले जो अपडेट आ रही है वो है आईटीआई में अब 7 तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो गोंडा में ही राजकीय और जो निधि औद्योगिक है, यानी प्राइवेट आईटीआईज जो हैं जिसे हम कहते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उसको बढ़ा करके 7 अगस्त फ़िलहाल कर दिया गया। आज 6 है, कल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं। और अगर आप गार्जियन या पेरेंट हैं, यानी आप माता पिता हैं, तो आप अपने बच्चों को बता सकते हैं या अपडेट दे सकते हैं। 2 दिन और बचे हैं, आज का और कल का। सो पहले ये जो लास्ट डेट थी ये 4 अगस्त तक ही थी, यानी परसों तक ही थी। और कम से कम इसके लिए एज जो है वो 14 साल, और 8th जो है पास आउट या फिर हाई स्कूल पास आउट जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सामान्य और ओबीसी वर्ग के 300 रुपये हैं जो बच्चे हैं, एसएसटी के लिए 250 रुपये, और महिला सभी महिला जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 100 रुपये जो है वो आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। दूसरी जो अपडेट है वो पूरे महीने चलने की बात बताई जा रही है, बिल समाधान शिविर। जी हाँ, सो बिजली उपभोक्ताओं की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए विद्युत सबस्टेशन में पूरे अगस्त महीने तक विशेष बिल समाधान शिविर जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। और उपखंड अधिकारी मुकेश कुमार और अवर अभियंता ने बताया है कि बिजली बिल में किसी भी तरह की खराबी या विसंगति या कोई भी प्रॉब्लम है तो लोग उपखंड अधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर उसका सोल्यूशन करा सकते हैं, और विशेष शिविर पूरे अगस्त महीने चलाने की बात सामने आ रही है। सो अगर आपके भी बिजली के बिल में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इस विशेष शिविर में जा सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। एनसीसी भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई अपडेट आ रही है। सो शहीद आज़म सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में बुध की बात करें, यानी कल की, तो उसको कहीं ना कहीं एनसीसी भर्ती परीक्षा जो है स्थगित कर दी गई थी जो कल होने वाली थी। और जो वहाँ के शिक्षक हैं उन्होंने बताया कि पहले 5 अगस्त को ये परीक्षा थी, अब एनसीसी की भर्ती परीक्षा 10 अगस्त को होगी। सो कंडैलगंज के कन्हैया लाल इंटर कॉलेज में एनसीसी की भर्ती परीक्षा जो है वहीं पे की जाएगी, लेकिन ये जो है अब 10 तारीख में की जाएगी। इसके अलावा अगली जो अपडेट आ रही है वो गोंडा में ही फर्म का पंजीकरण कराने को लेकर के आ रही है। जी हाँ, चलिए हम आपको पूरी अपडेट इसकी देते हैं। सो देवी पाटन मंडल के गठन में करीब 3 दशक के बाद मुख्यालय में जो सहायक रजिस्ट्रार फर्म या सोसाइटी या चिट्स का जो कार्यालय खुल गया है, सो अब मंडल के लोगों को फर्म और संस्थाओं को उसके रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके नवीनीकरण के लिए अयोध्या के चक्कर फिलहाल अब नहीं लगाने पड़ेंगे। सो जो सहायक रजिस्ट्रार हैं उन्होंने बताया है कि जानकी नगर मोहल्ले में सत्यदेव सिंह मार्ग पर कार्यालय ने काम करना शुरू कर दिया है, और सूरज होटल के पास मौजूद कार्यालय में कामकाज से जुड़े ज़्यादातर जो दस्तावेज हैं वो अयोध्या से आ चुके हैं, बाकी बचे रिकॉर्ड्स भी जल्दी ले आए जाएंगे। और कार्यालय में रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण का काम शुरू कर दिया गया है, और जल्द ही जो विवादित मामले उनकी सुनवाई भी यहाँ से शुरू कर दी जाएगी। सो ये जो है फिलहाल अगली अपडेट थी। इसके अलावा यूरिया से जुड़ी हुई अपडेट आ रही है जिसकी किल्लत लगातार सामने आ रही है। सो इटियाथो की जानकी नगर साधन सहकारी समिति में खाद का जो है वो प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। आपको हम बता दें कि इटियाथोक ब्लॉक में मौजूद जानकी नगर साधन सहकारी समिति में यूरिया की कमी से किसान परेशान है। 4 दिन पहले समिति में यूरिया बांटी गई थी, लेकिन खाद का स्टॉक खत्म होने से कई किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ा है। सो बी पैक्स धानेपुर से 500 और माधवगंज समिति से 245 बोरी खाद बांटी गई। माधवगंज समिति पर आदित्य राम वर्मा और राजेश और रामहेत ने, यानी जो लेने वाले किसान थे, उन्होंने बताया कि सुबह से वो लाइन में थे फिर भी खाद नहीं मिली। और धारेपुर में 500 बोरी बंटने के बाद कई ऐसे किसान थे जिनको फिलहाल खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके अलावा अगली जो अपडेट आ रही है वो छात्रवृत्ति से जुड़ी हुई आ रही है। सो छात्रवृत्ति में लापरवाही करने पर 590 स्कूल्स को जो है वो चेतावनी दी गई है। सो छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में लापरवाही बरतने वाले जो माध्यमिक विद्यालय हैं उसके खिलाफ DIOS ने सख्त रुख अपनाया है, और ज़िले के करीब 590
जो स्कूल संघ को अंतिम चेतावनी जारी करते हुए 6 अगस्त की रात 12 बजे तक छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रोफाइल मास्टर डेटा लॉक करने का निर्देश दिया गया है। सो निर्धारित समय सीमा के अंदर काम पूरा नहीं करने वाले जो प्रिंसिपल्स हैं उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने की कार्रवाई भी की जाने की बात सामने आई है। DIOS ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का फ़ायदा वक्त से ढंग से उपलब्ध कराया जाना है। सो सभी जो स्कूल्स हैं वहाँ पर छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रोफाइल मास्टर डेटा लॉक करने का अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बार बार निर्देश देने के बावजूद भी ज़िले के कक्षा 9 और 10, 11 और 12 में संचालित होने वाले 590 विद्यालय ने अभी तक प्रोफाइल मास्टर डेटा लॉक नहीं किया है और ज़िला लेवल पर कई समीक्षा बैठकें आयोजित की गई, प्रधानाचार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन फिलहाल काम नहीं हुआ है, जिसको लेकर के 590 स्कूल्स को जो है वो लास्ट चेतावनी दी गई कि भाई आज यानी 6 अगस्त की रात के 12 बजे तक जो है वो पोर्टल पर जो भी डेटा है वो लॉक कर दिया जाए, फीड कर दिया जाए। तो उससे जुड़ी हुई ये जानकारी हमने आप तक बता दी है। अब चलते हैं आपको अगली अपडेट की तरफ लेकर के। सो अगली अपडेट जो आ रही है वो दरअसल आ रही है सुबह 10 बजे सिद्धि विनायक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिपरा बाजार में परिषदीय स्कूल को जो शिक्षक हैं उनको निपुण भारत मिशन के तहत ट्रेनिंग दी जाने वाली है। आज सुबह 11 बजे ज़िला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र में सिलाई ट्रेड के जो अभ्यर्थी हैं उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। सुबह 11 बजे से ही सर्किट हाउस में राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से जन सुनवाई का आयोजन किया जाना है। एम्स स्कूल में DPT का टीकाकरण सेशन आज सुबह 11 बजे से चलाया जाना है। इसके अलावा फातिमा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन की मौजूदगी में परिचर्चा का आयोजन आज दोपहर 2:30 बजे से किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ नए स्टूडेंट्स का स्वागत भी हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय पॉलिटेक्निक और में कल यानी के बाद आज बृहस्पतिवार को नए स्टूडेंट्स का छात्र छात्राओं के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम मौजूद किया गया है। कार्यक्रम में कई सारी शाखाओं के विद्यार्थियों का स्वागत करके संस्थान की जो शैक्षणिक प्रशासनिक अनुशासनात्मक व्यवस्था है उनसे चिर परिचित कराया गया। सो फिलहाल इसके अलावा आपको हम ले चलते हैं अगले ऑफकोर्स अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट आ रही है वो है प्लेसमेंट ड्राइव में 60 स्टूडेंट्स ने फिलहाल उनका सिलेक्शन हुआ है। सो शहर के ही महाविद्यालय में बुधवार को ICICI बैंक के सेल्स रिलेशनशिप मैनेजर SRM पद के लिए ओपन कैंपस सिलेक्शन प्लेस ड्राइव का आयोजन किया गया। सो पहले फेज में 60 स्टूडेंट्स ने सफलता प्राप्त की है। NIT प्राइवेट लिमिटेड और स्वास्थ्य एजुकेशनल सर्विस के मदद से आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव में महाविद्यालय सहित आसपास के संस्थानों में बड़ी नंबर्स में छात्र छात्राओं ने हिस्सा भी लिया था। इसके अलावा एक जो है वो थोड़ा सा चिंता की बात ये कि लगातार कुत्तों के एक सप्ताह में 935 लोगों को काटा है। सो मेडिकल कॉलेज में रोज़ 100 से ज़्यादा लोग लगवा रहे हैं ARV। सो आपको बता दें बारिश और उमस भरी गर्मी के चलते ज़िले में जो कुत्ते हैं वो ज़्यादा हमलावर फिलहाल हो गए हैं। सो इससे कुत्ते के काटने से मामले भी इसके तेज़ हो गए हैं और पिछले एक हफ्ते में 935 लोगों को जो है वो शिकार बने हैं कुत्तों के बाइट का। सो मेडिकल कॉलेज के ARV कक्ष में रोज़ 100 से ज़्यादा लोग ARV की डोज लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। सो कुत्तों के हमले से ज़्यादा शिकार बच्चे और बुज़ुर्ग हो रहे हैं। हर दिन तकरीबन 15 से 20 गंभीर मामले आ रहे हैं जिसमें गहरे घाव और खून निकलने और एंटी रेबीज सीरम देना पड़ रहा है। बाकी मरीजों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया जा रहा है। सो कल भी यूनिट में भारी भीड़ थी और बताया गया कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। सो ऐसी सिचुएशन में मान ली अगर कोई कुत्ता काट लेता है, बाइट कर देता है, तो आपको क्या करना है पहले तो आप इस बात को ज़रा गौर से सुनिए। सो कुत्ता काटने पर किन किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले तो घाव को धो लेना है हल्के गुनगुने पानी से और साबुन का इस्तेमाल करना है वहाँ पर उस घाव को धोने के लिए गुनगुने पानी से। इसके अलावा साफ़ कपड़े की मदद से जो आपका ब्लीडिंग हो रही है उसको कम करने की कोशिश करनी है और डॉक्टर की सलाह पर रेबीज़ का इंजेक्शन भी लगवाना है। कुत्ते के काटने से
जैसे लालिमा, सूजन, दर्द, बुखार, इस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। और घाव पर आपको मिर्च, तेल, हल्दी ये सब नहीं लगाना है, आपको सीधे डॉक्टर के पास जाना है, यानी आपके पास में जो भी नियर बाई स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे आपको पहुँचना है और जा कर के आपको बता कर सारे सिनारियो, जो मिल रही दवाएँ हैं, मिल रहे ट्रीटमेंट को आपको लेना है। सो आई होप कि अब आप समझ गए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन खुदा नखास्ता आपके साथ आती है तो आपको क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए। फ़िलहाल ये कुछ ज़रूरी जानकारियाँ रही जो कि उद्योग से, कैंपस प्लेसमेंट से, प्रशिक्षण से जुड़ी हुई थी, और साथ ही साथ आपको अवेयर करने के लिए भी कुछ बातें थी। आई होप कि आपके लिए ज़रूर काम की रही होंगी। फ़िलहाल चलते हैं अब अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, वापस से आएंगे आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि बातों का इंतज़ार हम कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे कहनी है और आपसे बतानी, इसलिए आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहे अपने 89.6 FM पर, क्योंकि यही तो है कोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हाँ जी, सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञान स्थली 9.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान। सो चलिए भाई, अब हमने कहा था ना कि आने के बाद आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको सुन करके आप भी हैरान होने वाले हैं, प्लस आप भी कहने वाले हैं वाह क्या तरकीब लगाई है। सो पहला हम आपको बता रहे हैं कि अहमदाबाद के पहले ट्री इंटीग्रेटेड ग्रीन बस स्टॉप के बारे में। इसे बिना पेड़ काटे रिसाइकल्ड मटेरियल्स, ग्रीन रूफ और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ में तैयार किया गया है। सो क्या है अहमदाबाद का पहला ट्री इंटीग्रेटेड ग्रीन बस स्टॉप? यानी बस स्टॉप के बारे में तो आपने काफ़ी सुना है, लेकिन ऐसा कौन सा बस स्टॉप है जिसे हम कह रहे हैं ट्रीन इंटीग्रेटेड ग्रीन बस स्टॉप? चलिए आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में मॉर्निंग जॉक आर जे अदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम पर।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोडा विद योर फेवरेट आर जे अदनान।

0: हाँ जी, तो आपको ले चलते हैं अहमदाबाद के पहले ट्री इंटीग्रेटेड ग्रीन बस स्टॉप के पास में। जैसा कि हमने बताया कि दरअसल इसे बिना पेड़ काटे रिसाइकल्ड मटेरियल्स, ग्रीन रूफ और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ में तैयार किया गया है। सो इसमें क्या कुछ है, दरअसल इसकी अगर आप खूबसूरती देखेंगे, यानी देश के इस अनोखे टी इंटीग्रेटेड ग्रीन बस स्टॉप को, तो आप कहेंगे कि वाह क्या बात है। दरअसल एक पुराने पेड़ को बिना काटे उसी के चारों तरफ खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया। अगर आप ये इंटरनेट पर डालते हैं तो आपको इसकी तस्वीर भी सामने दिखाई देगी। ये हुआ क्यों? जाहिर सी बात है, जिस पर्यावरण की हम बात करते हैं बचाने को, उसी को ध्यान में रखते हुए इसे बेहतर बस शेल्टर यानी रिसाइकल्ड कंस्ट्रक्शन वेस्ट CND, प्राकृतिक ठंडक के लिए ग्रीन रूफ, सोलर पैनल और LED लाइट्स और स्मार्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। सो ये पहल ना सिर्फ जो वहाँ पे पैसेंजर्स हैं उनको छाया और राहत देती है, बल्कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को पर्यावरण के अनुकूल बनाने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल भी पेश करती है। यानी आज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे ट्री इंटीग्रेटेड बस स्टॉप्स की या सार्वजनिक स्थानों की। हम ऐसे बहुत सारे स्थान देखते हैं जहाँ पर सीधे सीधे शेल्टर्स बने होते हैं, लेकिन अगर आप अहमदाबाद के इस पहले ट्री इंटीग्रेटेड बस स्टॉप को देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, आपका मन जो है वो खुश हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस पर्यावरण को बचाते हुए हम बात करते हैं, कई बार डेवलपमेंट के नाम पर हम देखते हैं कि पेड़ों की कटाई हो ही जाती है और लग नहीं पाते हैं उस तरह से, वो भी वो पेड़ जो सालों साल पुराने हैं, 20 साल, 50 साल, यानी हम 20 और 50 साल पीछे चले जाते हैं अगर उस पेड़ को काट देते हैं। सो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए, यानी पेड़ को भी कोई नुकसान ना हो और ग्रीन रूफ भी बना दिया जाए, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी हो और लाइट के लिए सोलर पैनल भी हो, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस मिलकर के एक परफेक्ट ट्री इंटीग्रेटेड बस स्टॉप बना देते हैं। हालांकि आप इसको अगर डालेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको साफ इसकी कई सारी इमेजेस नज़र आने वाली और आप कहने वाले वाह क्या बात है, क्या इंजीनियरिंग का ज़बरदस्त नमूना पेश किया गया, और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगा, क्योंकि मुझे पता है ना आप भी ग्रीनरी पसंद करते हैं, हम भी ग्रीनरी पसंद करते हैं यार, पसंद कितनी मिलती जुलती है ना। यस, क्यों? क्योंकि शायद ग्रीनरी ही के एक पार्ट हम भी हैं, यानी हम भी इसी मदर नेचर के ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है, इसीलिए हमको ज़्यादा अच्छा लगता है प्राकृतिक चीज़ों को देखने में, आसपास रहने में और उन चीज़ों को फील करने में, और इसीलिए ये आपको ग्रीन इंटीग्रेटेड बस स्टॉप काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसके अलावा जब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टाइम आकर के, तो एक ऐसी बात करने वाले हैं जो सोचने पर मजबूर कर देगा। यानी हम दो भागों में तो बढ़ जाते हैं, महिला और पुरुष। क्या होता है जब कोई इससे इतर होता है? क्या वो अपराधी होता है या वो समाज से बहिष्कृत होता है, या हमारे लिए वो कोई मायने नहीं रखता और मांगने आए या कुछ कहे तो हम कहते हैं लो ये लोग बड़े ख़राब होते हैं। चलिए, एक ऐसी रियल लाइफ की स्टोरी है जब बेटे के गे होने के बाद भी माँ बाप ने उसका साथ दिया और किस तरह से उसको सपोर्ट किया, उस तरफ भी ध्यान हमको ज़रूर देना चाहिए, जिस तरफ अक्सर हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ध्यान देने की अब ज़रूरत है बहुत। फिलहाल आइए इस गाने को एंजॉय करते हैं, वापस से आते हैं, बताते हैं रियल लाइफ स्टोरी।
1: प्यार कैसे होता है?
0: तो चलिए भाई, आंखें खुली हो या बंद हो, इस गाने को आप एंजॉय जरूर कीजिए।

को लेकर के एग्जाम्पल देते हैं। उसी थीम पर बेस्ड बिग बॉस सीजन 20 स्टार्ट हो रहा है। सो फटाफट से आप भी कमेंट करके बताइए कि बॉलीवुड की ऐसे कौन सी एक जोड़ी है जिसका नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है और उसी थीम पर अब बिग बॉस का अगला सीजन आ रहा है। फटाफट से दिमाग के घोड़े दौड़ा दीजिए और इस सवाल का जवाब दीजिए, कौन सी ऐसी थीम है जिस पर बिग बॉस का अगला सीजन 20 आ रहा है। बिग बॉस लेकर के बॉलीवुड की वो जबरदस्त जोड़ी के बारे में और उस पर पूरी तरह से बेस्ड होने वाला है। जरा सोचिए और बताइए और देखते हैं कि भाई आपका अंदाजा आखिर कितना ज्यादा सही होने वाला है।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450 944 999।
7: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
8: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
7: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
8: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
7: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
9: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: हाँ जी, सो सवाल बड़ा ही पेचीदा था और जवाब और भी ज्यादा सीधा। मैंने पूछा था आपसे कि भाई जो लोग बिग बॉस देखते हैं वो जरा बताएं कि आखिर कौन सी जोड़ी के नाम पर आ रहा है सीजन 20, और देखिए ना आपने जवाब भी दे दिया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भाई किसने किसने और क्या जवाब दिया है आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो भाई सबसे पहले जो जवाब दिया है वो आशु जी ने लखनऊ से दिया, शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी। ओके, एंड रावण जी आप असली रूप में आए। करण अर्जुन की जोड़ी शायद, बोला है गीता श्रीवास्तव जी ने। जन्नत जुबैर और फैसल शेख, माही या नियाशमा। जन्नत जुबैर और फैजू नियम निया शर्मा, करण अर्जुन। ओके सो ऑलराइट, बहुत बढ़िया। मतलब आप लोग काफ़ी अपडेटेड हो यार, मतलब मज़ा आ गया आप लोगों के रिस्पॉन्सेज देख करके। सो वैसे बहुत सारी जोड़ी आपने बता दी, जन्नत जुबैर, फैजू, माही, नियाशमा, है ना, और क्या कहते हैं, शाहरुख खान और काजोल। लेकिन दरअसल आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर है वो है करण अर्जुन। जी हाँ, सो करण अर्जुन थीम पर आ रहा है बिग बॉस सीजन 20, यानी अगला जो सीजन बिग बॉस का आ रहा है वो करण अर्जुन थीम पर आ रहा है। और इसके बारे में भी हम आपको बता दें कि आज से ठीक एक महीने पहले यानी 6 सितंबर सलमान खान की रियलिटी शो बिग बॉस 20 शुरू होगा। और हाल ही में रिलीज़ हुए इसके टीज़र में सलमान खान ने कहा कि जो करण अर्जुन में हुआ था वो अब दोबारा होगा। इसके बाद से ही ये चर्चा शुरू हुई कि सलमान ने आखिरी करण अर्जुन का जिक्र क्यों किया। साल 2015 में जब दिलवाले के प्रमोशन के दौरान शाहरुख खान सलमान खान ने बिग बॉस 9 का मंच साझा किया था, तब दोनों ने अपनी हिट फिल्म के यादगार पल दोबारा से जिए थे। सो बता दें थीम पर चल रहा है काम। शो से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि इस बार करण अर्जुन का जिक्र सिर्फ एक डायलॉग तक मौजूद नहीं रहेगा बल्कि इस पूरे सीजन का कॉन्सेप्ट होगा। सो शो के 20वें सीजन में जो मेकर्स हैं उन्होंने रीबर्थ यानी पुनर्जन्म की थीम पर काम कर रहे हैं और इसी के इर्द गिर्द सीजन की प्लानिंग की जा रही है। हालांकि इन दावों पर कोई अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। सो पहला ट्विस्ट जो है, साथ आएंगे क्या शाहरुख और सलमान, ये सवाल होता है। सो बता दें कि जो मेकर्स हैं उन्होंने सीजन में स्पेशल एपिसोड की तैयारी कर रहे हैं। कोशिश है कि किसी भी तरह से शाहरुख और सलमान को एक बार फिर से बिग बॉस के मंच पर साथ लाया जाए, दोनों एक खास एपिसोड में साथ नजर आ सकते हैं। चर्चा है कि इसी मंच से शाहरुख की फिल्म किंग से जुड़ा दूसरा ऐलान भी किया जा सकता है। दूसरा ट्विस्ट क्या है, पुराने कॉन्सेप्ट्स को मिलेगा सेकेंड चांस। सो इस बार कई पुराने और जो चर्चित कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी भी वापसी हो सकती है और कंटेस्टेंट्स को मिल सकता है चांस। ऐसे चेहरे जिन्होंने एक सीजन में खूब सुर्खियां बटोरी लेकिन ट्रॉफी से चूक गए, उनकी जर्नी अधूरी रह गई, प्लानिंग सिर्फ उनकी वापसी की ही नहीं बल्कि उन्हें सेकेंड चांस देने की भी हो सकती है। तीसरा ट्विस्ट क्या हो सकता है, नेहा कक्कड़ और यूसुफ पठान जुड़ेंगे। सो सूत्रों की माने तो पुनर्जन्म की थीम वाले सिर्फ पुराने खिलाड़ियों तक मौजूद नहीं रहेगी, कंटेस्टेंट्स के सिलेक्शन भी इसी सोच को ध्यान में रखते हुए किए जाने की बात भी जो है वो सामने आ रही है। जी हाँ, सो कहीं ना कहीं इसी बीच में सिंगर नेहा कक्कड़ और क्रिकेटर यूसुफ पठान का नाम भी सामने आया है। माना जा रहा है कि नेहा के लिए ये एक नई शुरुआत हो सकती है, वहीं यूसुफ पठान के लिए क्रिकेट से बाहर एक नई पहचान बनाने का मौका भी हो सकता है। चौथा ट्विस्ट क्या है, सो शुरुआत से ही कंटेस्टेंट्स को दो बड़े गुटों में बांटने की योजना है। इससे पहले हफ्ते में जो है वो गेम ग्रुपबाजी और टकराव तेज हो सकते हैं, ऐसे में पहले ही हफ्ते घर में जंग छिड़ने के जो है वो आसार फिलहाल नजर आ रहे हैं। एंड फिलहाल महेंद्र ने बोला है कि जो करण अर्जुन में हुआ था वो होगा बिग बॉस में तथास्तु। यस ऑफ कोर्स, देखने वाली बात है कि भाई ये नई थीम के साथ जो मेकर्स ने बनाया है इसमें क्या कुछ होने वाला है। बट आपके रिस्पॉन्सेज सच में बहुत ही जिंदा दिल थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग से, सो थैंक यू सो मच टू एवरी वन जिन्होंने रिस्पॉन्सेज आ करके दिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसी के साथ अब हम चलते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ। और भाई देखते हैं कि अगला म्यूज़िकल ब्रेक जो है वो आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है और साथ ही साथ आपको क्या बताने वाला है। एंड आने के बाद आपको ले चलने वाले हैं जिस सच्ची बात को लेकर के मैंने कहा था कि भाई अब इस पे ध्यान देने वाली बात है। सो चलिए, क्या है वो ध्यान देने योग्य बात, क्या है वो बात जो हम आपसे कहना चाहते हैं और वो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बात। ये सब कुछ जानने वाले हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, क्योंकि यही है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।

0: अरे भाई झब्बू।
1: यस सर।
0: जरा एक सवाल का जवाब दो।
1: यस सर।
2: खड़े हो जाओ।
1: खड़े हो गई।
0: ये बताओ कि उसने आत्महत्या कर ली और उसे आत्महत्या करनी पड़ी, इन दोनों में क्या अंतर है?
1: बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल। पहले वाले का मतलब वो कुंवारा था, दूसरे वाले का मतलब वो मैरिड है।
0: अरे वाह।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: मेरा बेटा गे है कोई अपराधी नहीं। जी हाँ, ये वर्डिंग दरअसल एक पेरेंट्स की है, एक माँ बाप की है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला और उनके बेटे के साथ ऐसा क्या है, आइए बताते हैं आपको।
1: Now you're listening, Good Morning Kota with your favorite RJ Khan.

जब बात बहुत ज़्यादा जस्टिस की होती है, जब बात आती है लोगों के स्वतंत्र होके जीने की, जब बात आती है हर शख्स के सम्मान की, तो हम कहीं ना कहीं महिलाओं के बारे में, पुरुषों के बारे में बहुत बात करते हैं। हमसे रह जाता है तो एक और एस्पेक्ट, वो होता है महिला और पुरुष से हटकर। जी हाँ, दरअसल महिलाओं और LGBTQ+ कम्युनिटी के सम्मान के लिए आवाज़ उठाने वाली भारतीय हाई कोर्ट की पहली फीमेल चीफ जस्टिस के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके बारे में जान करके आपको काफ़ी ज़्यादा हैरानी होने वाली है। इनका स्टेटमेंट भी आपको हम बता देते हैं कि इन्होंने बोला क्या था कि मेरा बेटा गे है कोई अपराधी नहीं है। ये सिर्फ एक माँ की आवाज़ नहीं थी, बल्कि ये वो शब्द थे लीला सेठ के, भारत के किसी हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। इन्होंने पूरी जिंदगी यही सिखाया कि कानून का काम लोगों को सजा देना नहीं है, उनके अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना है। कहीं ना कहीं कानून से हम सभी लोग जोड़ के देखते हैं कि सजा दिया जाए, फलाने को सजा दिलवा दिया जाए, धमाके को सजा दिलवा दिया जाए, लेकिन उससे पहले, उससे ज्यादा प्यार जो काम होता है, जो प्रायोरिटी का काम होता है, वो होता है जो नागरिक हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वो चाहे जो हो, महिला हो, पुरुष हो, गे हो, कोई भी हो, उन सभी के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना। सो दरअसल अगर हम इनके बारे में बताएं तो 1930 में लखनऊ में पैदा हुई लीला सेठ ने कभी नहीं सोचा था कि वो वकील बनेंगी। इंग्लैंड की एक ट्रैवल के दौरान इन्होंने कानून की पढ़ाई सिर्फ इसलिए चुनी क्योंकि इसमें रोज क्लास जाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन यही एक फैसला आगे चल करके भारतीय न्याय व्यवस्था का इतिहास बदल दिया। 1958 में लीला सेठ लंदन में बार परीक्षा में टॉप करने वाली पहली महिला बनी। एक वरिष्ठ वकील ने उनसे कहा, जाइए अब शादी कर लीजिए। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, शादी तो मेरी पहली ही हो चुकी है। फिर उन्होंने अपने काम से साबित कर दिया कि औरतें किसी से भी कम नहीं होती हैं। उस दौर में ज़्यादातर लोगों को लगता था कि महिला वकील सिर्फ महिलाओं से जुड़े मामले ही लड़ सकती हैं, लेकिन लीला सेठ ने ये सोच ही बदल दी। उन्होंने संविधान, टैक्स और आपराधिक कानून जैसे मुश्किल मामलों में हाथ लिए और अदालतों में अपनी अलग जगह बनाई। फिर दौर आया 1978 का, जब ये दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला जज बनी। फिर 1991 में भारत की किसी हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। इन्होंने जिन कानूनी बदलावों का समर्थन किया उसकी वजह से बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार मिल सका, यानी इससे पहले तक जो है वो बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार नहीं था। 2012 की बात करें तो दिल्ली गैंगरेप के बाद पूरा देश बदलाव की मांग कर रहा था। ऐसे वक्त में लीला सेठ जस्टिस वर्मा समिति का हिस्सा बनी। समिति की सिफारिशों के आधार पर महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा से जुड़े कानूनों में बदलाव किए गए। जब धारा 377 के तहत समलैंगिक रिश्तों को फिर से अपराध माना गया, तब लीला चुप नहीं रही। इन्होंने खुलकर कहा, मेरा समलैंगिक बेटा कोई अपराधी नहीं है। वो मानती थी कि हर इंसान को अपनी पसंद के इंसान से प्यार करने का पूरा अधिकार है और इसके लिए किसी को भी अपराधी ठहराया जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो जिंदगी के आखिरी पड़ाव में भी इन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। 86 साल की उम्र में अपनी बॉडी मेडिकल रिसर्च के लिए दान कर दिया। वो सिर्फ ऐतिहासिक फैसले नहीं बल्कि इंसानियत, समानता और साहस की ऐसी मिसाल छोड़ गई जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा इंस्पायर करती रहेंगी। दरअसल ये कहानी है लीला सेठ जी की, जिनके बारे में हमने बताया। कोई भी हो, जब हम बात सिर्फ अपनी करते हैं तो हमको ये सोचना होगा कि इस जहां में, इस पूरी दुनिया में, कहीं भी, किसी भी कोने में, किसी भी जंगल में, किसी भी गाँव में, किसी भी बिहार में, किसी भी बिहार में, किसी भी शहर में, किसी भी कमरे के चार दीवारी के अंदर कोई महिला, पुरुष या कोई भी हो, हर किसी के सम्मान होना चाहिए। हर कोई इंसान है और हर किसी के अपने राइट्स हैं। और ये बात लीला सेठ ने खुल करके पूरी जिंदगी इस बात का समर्थन करती रहीं और इसको लेकर ही आगे चलती रहीं। यूं ही नहीं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े नियम कानून बदल दिए। जी हाँ, दरअसल ये रही लीला सेठ की कहानी, जो फिलहाल अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन
जाने से पहले उन्होंने बहुत कुछ कह दिया जो शायद हर शख्स नहीं कह पाता। समाज की डर से या सोचता है कि लोग जज कर लेंगे, या सोचता है मेरा ही कौन सा मामला है, मुझे क्या मतलब। इन सारी चीज़ों से इतर एक इंसानियत की बात जो आपको फील कराती है कि आप जिंदा हैं और आप अपनी बातों को कह देते हैं। यही बात थी लीला सेठ जी में। कैसी लगी फिलहाल ये रियल लाइफ की स्टोरी, जिसने कानून भी बदला और जिसने इंसानियत को भी तरजीह दी और जिसने कानून के बारे में सही बताया कि कानून सज़ा देने के नहीं बल्कि समान नागरिकों का समान अधिकार देना और उनका सम्मान करना है।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज, गोंडा।
4: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
6: अरे सुना?
7: क्या?
6: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
7: वाओ!
6: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।

0: तो भाई कुछ मैसेजेस और कुछ कंटेंट्स आ गए हैं आपके लिए, तो चलिए पहले मैसेजेस पढ़ देते हैं चैट बॉक्स पर आए हुए आपके, और साथ ही साथ उसके बाद चलते हैं बताने के लिए कि किसने कहां से और क्या कुछ लिख भेजा है मॉर्निंग वाले जॉक आरजे अदनान के पास गुड मॉर्निंग हुड्डा शो में।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

मुस्कुराहट गुम है बत्ती के साथ, ये जो है कंप्लेंट प्लान सविता दुबे जी की। दरअसल उनके तरफ लाइट नहीं होगी जहां तक मुझे लग रहा है, और सच में जब लाइट नहीं होती तो सारा काम रुक जाता है। हमारी प्रीति जी आ गई बहराइच से, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। कुत्ता काटने पर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पर अगर गोंडा का अपडेट चाहिए तो गुड मॉर्निंग गोंडा में अदनान सर को सुनना पड़ेगा बेशक। थैंक यू, आपको सॉन्ग पसंद आया, बहुत शुक्रिया बादशाह। हेलो, एंड आशु जी लिखती हैं, दोस्ती कोई तलाश नहीं, ये तो रब का खास तोहफा है। दोस्ती वो नहीं जो जान पहचान से हो, दोस्ती वो है जो दिल की पहचान बन जाए। सुख में साथ हंसना आसान, मगर दुख में साथ निभाना असली पहचान है। ना खून का रिश्ता, ना रिवाज का बंधन, फिर भी रिश्ता हर दिल से अनमोल है। थैंक यू, इरफान शाह मौजूद हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। इसके बाद जो है अगला मैसेज आप लोगों ने कहा, बहुत सुंदर पेड़ विचार बचाने का, थैंक यू सो मच। महेंद्र ने भी बोला है कि अच्छी पहल है, ये ना केवल यात्रियों को छाया राहत देती है बल्कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को पर्यावरण अनुकूल बनाने का एक बेहतरीन एग्जांपल भी पेश करती है। बिल्कुल बेशक, थैंक यू सो मच। और उसके बाद हमारा सवाल, आप लोग का जवाब। मिश्र ऑप्टिकल से आप मौजूद हैं अजय जी, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। नगेश्वर फ्रॉम मध्य प्रदेश, गुड मॉर्निंग नगेश्वर, आपका वेलकम करते हैं। एंड चलिए अब आप लोगों के भेजे गए कंटेंट को लेते हैं और बताते हैं कि भाई क्या कुछ आपने लिख भेजा है और क्या है जो आप तक हम पहुंचाने वाले हैं आज के मॉर्निंग वाले शो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि शायद अब आप जो है वो इसलिए तैयार है कि कहीं ना कहीं अलग अलग सा जो कंटेंट मिलता है और सभी में अलग अलग एक फीलिंग होती है, यानी जो कुछ आप लिखते हैं वो बहुत ही ट्रू होता है और वो हम तक आता है। सो सबसे पहले चलते हैं आज आकाश जी की तरफ, जो कि नवदीप वेस्ट बंगाल से लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि आज पायल का बर्थडे है और इसी के ऊपर एक शायरी पेश करना चाहता हूँ। रास्ते गर हो मुश्किल तो हर बार मुस्कुराकर चलना तुम, अर्ज है। गर रास्ते में आए मुश्किल तो हर बार मुस्कुराकर चलना तुम, आंधियाँ लाख हैं मगर हमेशा आगे बढ़ना तुम, और मंजिल खुद झुक जाएगी देखना इन हौसलों के सामने, कि मंजिल खुद झुक जाएगी इन हौसलों के सामने, बस अपने सपनों पर हर पल में अडिग रहना तुम। क्या बात है, आई प्रे फॉर एवरीवन। आज दुनिया भर में जितने भी सारे बच्चों का जन्म हुआ उन सभी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आज के बाद दुनिया से दुख दर्द नफरत सब मिट जाए और चारों ओर अमन और शांति की बातें हों। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, सेंडिंग माय वर्चुअल हग्स टू द होल यूनिवर्स मिस्टर आकाश। क्या बात है, एक तो आपकी दुआओं का भाई अंदाज बड़ा निराला है, थैंक यू सो मच। आपको भी वर्चुअल हग मेरी तरफ से भी, थैंक यू सो मच मिस्टर आकाश फ्रॉम नवदीप वेस्ट बंगाल। इसके बाद गुंजन जौहरी जी लिखती हैं, जन्मदिन सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक नए जीवन का अध्याय शुरुआत है। बीते कल की हर सीख को साथ लेकर चलो और आने वाले कल को अपनी मेहनत से खूबसूरत बनाओ। रास्तों में चाहे कितने भी तूफान आए, हौसलों के दीप कभी बुझने ना पाए। जो सपने आंखों में सजाए हैं तुमने, वो एक दिन मेहनत से सच हो जाए। हर गिरना तुम्हें मजबूत बनाए, हर संघर्ष तुम्हें नई पहचान दिलाए। कभी खुद पर विश्वास का मत होने देना, क्योंकि मेहनत करने वालों की किस्मत भी बदल जाती है। तुम्हारी मुस्कान हमेशा बनी रहे, चेहरे पर खुशियों की रोशनी सजी रहे। सफलता तुम्हारे कदम चूमे हर पल और जिंदगी का हर खुशियों से भरा रहे। नई उम्मीदों के साथ नया सफर शुरू करो, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का जुनून रखो। आसमां भी झुक जाएगा तुम्हारे हौसलों के आगे, बस अपने कर्मों पर हमेशा विश्वास रखो। और जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, ईश्वर आपको लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य, अपार सफलता और जीवन की हर खुशी दे, ऐसा कहना है गुंजन जौहरी जी का भी पायल जी को लेकर के। थैंक यू सो मच, क्योंकि पायल जी भी हमारी एक ऐसी लिसनर हैं जो लगातार अपने कंटेंट्स भेजती हैं। इसके बाद यामिनी चौहान जी लिखती हैं, आज फिर मैंने एक कप चाय बनाई, उसमें चीनी कम थी मगर यादें हमेशा की तरह ज्यादा थी। मैंने पहला घूंट पिया तो लगा किसी पुराने मौसम ने मेरा नाम लेकर पुकारा हो। कुछ रिश्ते चाय की तरह होते हैं, धीरे धीरे उतरते हैं रूह में और फिर उम्र भर होठों पर अपनी गर्माहट छोड़ जाते हैं। अजीब बात है, चाय खत्म हो जाती है पर उसके साथ बिताया हुआ एक पल कभी खत्म नहीं होता। वाह क्या बात है, ग्रेट यामिनी चौहान जी, बहुत उम्दा। प्रेम पत्र लिखा है हमारे

हाथों तक पहुंच पाए, मेरे अधूरे सपनों को तेरी मंजिल मिल जाए, तू पढ़े तो हर शब्द मुस्कुरा उठे, तेरी आंखों में मेरे ख्वाब सजा उठे। मैंने चांद से तेरे लिए उजाला मांगा है, सितारों से तेरा नाम का हवाला मांगा है, हर दुआ तेरा ही जिक्र रहता है, मेरा दिल बस तुझ में ही बसता है। अगर कभी ये गुलाब मुरझा भी जाए तो समझना मेरा प्यार कभी ना मुरझाए, दूरी चाहे कितनी भी बढ़ जाए, दिल तेरा नाम लेने न भूले। ये प्रेम पत्र मेरी रूह की आवाज़ है, तेरे बिना हर मौसम अधूरा साज है, तू मिले तो हर गम मुस्कुराने लगे, सूने रस्ते भी गुनगुनाने लगे। मेरी हर सुबह तुझसे शुरू हो जाए, हर शाम तेरी बाहों में खो जाए, बस इतनी सी ख्वाहिश मेरे दिल की है, तेरी मोहब्बत ही मेरी बंदगी है। इस पत्र को संभाल कर अपने दिल में रखना, मेरे हर एहसास को अपनी धड़कन में रखना, जब भी याद आए इसे चुपके से पढ़ लेना, और हर बार मुझे अपना कह देना, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रेम पत्र नहीं, ये मेरी पूरी जिंदगी का इजहार है। क्या बात है कुंदन राज दत्त और फिनिशल जी फ्रॉम पूर्णिया बिहार, बहुत ही सुंदर, बड़े ही जज्बातों को लेकर आया है आपका प्रेम पत्र। थैंक यू सो मच हम तक साझा करने के लिए। और जज्बात की लहर भेजा है हमारी बबीता जी ने, क्या लिखती हैं। जज्बात की लहर जब साहिल तोड़ बहती है, खामोशियों की बस्ती भी फिर बातें कहती हैं, दिल के हर एक जख्म का हिसाब कौन रखे, वक्त की धूल हर कहानी चुपके से रहती है, कुछ ख्वाब किनारों तक आकर लौट जाते हैं, कुछ उम्मीदें तूफानों में भी रोशन रहती हैं, रिश्तों की डोर नाजुक है संभाल कर चलना, एक छोटी सी गलती उम्र भर चुभती रहती है, मंजिल मिले न मिले सफर रुकना नहीं चाहिए, हिम्मत की शमा अंधेरों में भी जलती रहती है। क्या बात है भाई, जिंदगी में इंस्पायर करती हुई ये आपकी कविता बड़ी ही खूबसूरत है बबीता जी, थैंक यू सो मच। एंड सुजीत शुक्ला आपका भी स्वागत है, वेलकम है, साथ ही आपने सभी को अप्रिशिएट किया है, और आपने गुंजन जी के बारे में, यामिनी जी जी के बारे में, और दत्ता जी के बारे में, और साथ ही साथ बबीता जी के बारे में भी आप लिखने वाले, थैंक यू सो मच। सभी लोगों ने बहुत आउटस्टैंडिंग लिखा है और हम तक पहुंचाया है, क्योंकि इसकी जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है, लेकिन हम हर बार यही कहते हैं कि ये जज्बात है, तारीफ से कहीं ज़्यादा मायने रखता है, इसको समझ लेना और दिल में उतार लेना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लिखने वालों के जज्बात होते हैं। फिलहाल आज का शो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, फिलहाल आरजे अदनान को दीजिए इजाज़त, और सुनते रहिए अपना 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, कोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त समता। गांव की गूंज की अपार सफलता के बाद एक और एपिसोड हम सभी मिलकर ला रहे हैं। इस बार एपिसोड का जो नाम है वो है सावन। तो भाई सावन क्यों ना हो, क्योंकि सावन चल भी रहा है और सावन में इस बार होने वाली है बहुत सारी मस्ती, यानी मेहंदी लगेगी, झूले होंगे और बारिश की फुहार। तो बारिश की फुहार में भाई गीतों के साथ में हम तो भिगोने के लिए तैयार हैं। आप भी आइए साथ में और बहुत ज्यादा एंजॉय करिए हम सभी के साथ में गांव की गूंज का ये नया एपिसोड सावन। क्या गुनगुना रही हो श्वेता?
3: अरे कुछ नहीं समता दीदी, बस यूं ही।
2: मुझे पता है श्वेता, सावन जो चल रहा है उसी की तैयारी तुम कर रही हो, है ना?
3: तो क्यों ना एक सावन गीत ही सुनवा दीजिए।
2: तो क्यों नहीं, अभी सुनवा देते हैं।

0: अरे सभी ये किस गीत की बात कर रहे हैं? बड़ा मधुर गीत था अभी
1: ये गीत। बदरिया बरसे शाम नहीं आए, अच्छा लगा।
2: अब ये भी पूछने की बात है, चलिए इसी बात पर हम सब सावन की बहार में झूला झूल लेते हैं।

0: अरे श्वेता, रोको रोको रोको, झूले पर ना मुझे बहुत चक्कर आ रहा है।
1: क्या समता दीदी, सावन में ही तो पेड़ों पे झूलों का आनंद उठाने को मिलता है।
2: चलिए चलिए श्वेता दीदी, हम और आप झूले का आनंद उठाते हुए इस फुहार का भी आनंद उठाएंगे।
0: अरे देखो देखो, बारिश भी आ गई है और साथ में किरण दी के इस गीत का भी आनंद ले रहे हैं हम लोग।

0: वाह, जब भी गांव आते हैं तो मजा ही आ जाता है। साथ में ये सावन और सावन में पेड़ों पे पड़े हुए झूले, क्या बात है।
1: चलो श्वेता, मोनिका, बारिश का मजा लें और उसमें भीग के ना बहुत आनंद आने वाला है।
2: अरे अरे संभल के, कहीं फिसल ना जाओ। बच्चों, गांव में चिकनी मिट्टी भी होती है।

0: उई माँ, देखो मैं फिसल गई। किरण दी आप सही कह रही थी।
1: अच्छा श्वेता चलो, यहाँ पास में ही भोले बाबा का मंदिर भी है और साथ में पार्वती माँ भी विराजमान है।
2: अच्छा, और कहा जाता है कि सावन में भोले बाबा और पार्वती माता से जो मांगो मिल जाता है।
0: तो फिर तो मैं भी मंदिर चलूंगी।
3: अरे बच्चों, पहले सभी जाओ और अपने भीगे कपड़े तो बदल लो।
4: हाँ हाँ, चलो चलो, चलो।

0: वाह किरण दीदी, बड़ा मनमोहक दृश्य था मंदिर में।
1: हाँ सच में। अरे अरे सब बाहर आओ जल्दी जल्दी।
2: क्या क्या हो गया?
0: अरे किरण दी कुछ नहीं, आराम से आइए आप। ये समता दीदी भी ना, मोर दिख गया इनको, वो भी सावन में।

0: वाह श्वेता, मेहंदी तो बड़ी अच्छी लग रही है तुम्हारे हाथों में।
1: पता है आपको, किरण दीदी ने सिल बट्टे पे पिसवाई है हम सभी के लिए,
2: तो लो सभी लगा लो।
1: अरे कोई मुझसे भी पूछेगा, मुझे तो बाजार की मेहंदी से अच्छी तो ये सिल की पिसी हुई मेहंदी अच्छी लगती है।
2: मगर ध्यान रहे, कोई भी जल्दी मत करना धोने की।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है।

कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20%।

0: की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही और लाभकारी। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। जी हां, आपने ट्यून करके रखा हुआ है अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। पिछले दो कार्यक्रमों में हमने गर्भावस्था के दौरान खून की कमी यानी कि एनीमिया, उसकी पहचान, जांच, IFA, MMS, पोषण तथा मध्यम तथा गंभीर एनीमिया में IVFCM जैसे उपचार विकल्पों के बारे में बात की। लेकिन आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है, बच्चे के जन्म के बाद माँ का क्या? क्या प्रसव के बाद कमजोरी होना हमेशा सामान्य है? क्या खून की कमी प्रसव के बाद भी बनी रह सकती है और इसका असर माँ और नवजात शिशु दोनों पर कैसे पड़ सकता है? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सेहतिया सिंह जी और हमारी टीकन भाभी। सेहतिया सिंह जी, अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद कमजोरी होना तो सामान्य बात है, क्या ये सही है?
1: देखिए आरजे, परसों के बाद शरीर को आराम और रिकवरी की जरूरत होती है, इसलिए कुछ थकान महसूस होना सामान्य हो सकता है। लेकिन अगर कमजोरी लगातार बनी रहे, चक्कर आज आए, सांस फूलने लगे, रोजमर्रा का काम मुश्किल लगे या महिला बहुत ज़्यादा थकी हुई है महसूस करे, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
0: यानी ये खून की कमी का संकेत भी हो सकता है।
1: बिल्कुल, और यही कारण है कि परसों के बाद भी माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है।
0: टीकन देवी जी, क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को इस बात का महत्व समझा सके?
2: बिल्कुल, हमारे ही इलाके की शबाना की कहानी सुनिए। शबाना ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद भी शबाना को लगातार कमजोरी रहती थी। वो जल्दी थक जाती थी, बच्चे को गोद लेकर ज्यादा देर खड़ी भी नहीं रह पाती थी। घर वालों ने कहा, अभी अभी बच्चा हुआ है, थोड़ा समय तो लगेगा। लेकिन जब स्वास्थ्य कर्मी ने घर आकर हालचाल पूछा और आगे जांच की सलाह दी, तब पता चला कि उसे एनीमिया है।
0: फिर क्या हुआ?
2: उसे स्वास्थ्य केंद्र से उचित सलाह मिली, परिवार ने भी उसका सहयोग किया और धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर हुई। वो अपने बच्चे की देखभाल अधिक आराम से कर पाई।
0: यानी प्रसव के बाद भी कमजोरी को भी गंभीरता से लेना चाहिए।
2: बिल्कुल।
0: सेहतिया सिंह जी, प्रसव के बाद एनीमिया का असर केवल माँ पर पड़ता है या बच्चे पर भी?
1: माँ और बच्चे दोनों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। अगर माँ लगातार कमजोर रहेगी तो उसकी रिकवरी प्रभावित हो सकती है।
0: और बच्चे के संदर्भ में?
1: जब माँ स्वस्थ रहती है तो वह अपनी नवजात शिशु की देखभाल बेहतर तरीके से कर पाती है, इसलिए माँ का स्वास्थ्य और बच्चे का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
0: यानी स्वस्थ माँ स्वस्थ परिवार की नींव है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या प्रसव के बाद भी जाँच करवानी चाहिए?
1: हाँ, अगर स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर सलाह दें या महिला में कमजोरी और अन्य लक्षण बने रहें तो जांच करवाना जरूरी है।
0: यानी प्रसव के बाद स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क खत्म नहीं होना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं। गर्भावस्था के दौरान मिली सलाह और प्रसव के बाद की देखभाल दोनों मिलकर अच्छे स्वास्थ्य परिणाम देते हैं।
0: टीकन देवी जी, शबाना की कहानी सुनकर एक बात समझ आती है कि कई बार महिला खुद भी अपनी परेशानी को नजरअंदाज कर देती है।
2: बिल्कुल, प्रसव के बाद अक्सर महिला का पूरा ध्यान बच्चे पर चला जाता है। वो सोचती है कि पहले बच्चे की जरूरतें पूरी हो, अपनी तकलीफ बाद में देखेंगे। लेकिन यही सोच कई बार परेशानी बढ़ा देती है।
0: यानी माँ खुद को सबसे आखिर में रख देती है।
2: जी हाँ, हमारे समाज में ये बहुत आम बात है। अगर बच्चा रो रहा हो, घर का काम हो, मेहमान आ रहे हो, तो महिला अपनी कमजोरी, चक्कर या थकान के बारे में बताने से भी हिचकती है। कई बार उसे लगता है कि लोग कहेंगे कि वो शिकायत ज्यादा कर रही है।
0: लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल नहीं। बच्चे की देखभाल जितनी जरूरी है, माँ की भी देखभाल उतनी ही जरूरी है।
0: सेहतिया सिंह जी, प्रसव के बाद महिला के जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, क्या ये भी उसकी सेहत को प्रभावित कर सकता है?
1: बच्चे के जन्म के बाद महिला की दिनचर्या पूरी तरह बदल जाती है। रात में कई बार उठना पड़ता है, आराम कम हो जाता है, शरीर परसों से उभर रहा होता है और साथ ही नवजात शिशु की देखभाल की जिम्मेदारी भी होती है।
0: यानी ये समय केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
1: बिल्कुल, इसलिए इस समय परिवार का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर महिला को आराम का समय मिले, उसकी बात सुनी जाए और उसकी जरूरतों का ध्यान रखा जाए तो उसकी रिकवरी बेहतर हो सकती है।
0: टीकन देवी जी, क्या परिवार कभी अनजाने में ऐसी बातें कह देता है जिससे महिला अपनी परेशानी बताने से बचने लगती है?
2: हाँ, ऐसा अक्सर होता है। जैसे कोई कह देता है, हमारे समय में भी ऐसा होता था, थोड़ी कमजोरी तो सामान्य है, इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। सुनने में तो ये बातें सामान्य लगती हैं, लेकिन इससे महिला अपनी समस्या बताना बंद कर सकती है।
0: यानी उसकी बात सुनना भी देखभाल का हिस्सा है।
2: बिल्कुल, अगर महिला बार बार कह रही है कि उसे कमजोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं या वो पहले जैसा महसूस नहीं कर रही है, तो उसकी बात को गंभीरता से लेनी चाहिए।
0: सेहतिया सिंह जी, क्या प्रसव के बाद स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क बनाए रखना जरूरी है?
1: बिल्कुल, कई लोग सोचते हैं कि बच्चे का जन्म हो गया है, अब स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। परसों के बाद भी स्वास्थ्य कर्मी की सलाह घर पर मुलाकात और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है।
0: यानी माँ की देखभाल की कहानी प्रसव पर खत्म नहीं होती?
1: बिल्कुल नहीं, वास्तव में परसों के बाद का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण जितना गर्भावस्था का समय है।
2: और मैं सभी परिवारों से कहना चाहूंगी कि जब घर में नया बच्चा आता है तो केवल बच्चे की खुशियां मत मनाइए, बल्कि उस माँ का भी पूरा ध्यान रखिए जिसने उसे जन्म दिया है। उसकी सेहत, उसका आराम, उसकी जरूरतें भी परिवार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
0: सचमुच स्वस्थ माँ ही नवजात शिशु को सबसे अच्छा सहारा दे सकती है। टीकन देवी जी, इस समय परिवार की भूमिका क्या होती है?
2: परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार पूरा ध्यान बच्चे पर चला जाता है और माँ की जरूरतें पीछे छूट जाती हैं। लेकिन परिवार को याद रखना चाहिए कि माँ की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है।
0: परिवार क्या कर सकता है?
2: सबसे पहले तो माँ को पर्याप्त आराम मिलना चाहिए, इसका ध्यान रखें। दूसरा, उसे समय पर पौष्टिक भोजन मिले। तीसरा, अगर स्वास्थ्य केंद्र जाने की जरूरत हो तो परिवार उसका साथ दे। चौथा, अगर कोई दवा या पूरक खुराक दी गई हो तो उसे नियमित रूप से लेने में उसकी मदद करें। और सबसे जरूरी बात, उसकी कमजोरी या परेशानी को नजरअंदाज ना करें।
0: बहुत ही महत्वपूर्ण बात। सेहतिया सिंह जी, पिछले कार्यक्रम में हमने IFA, MMS और IVFCM के बारे में बात की थी। क्या प्रसव के बाद भी डॉक्टर की सलाह का पालन करना जरूरी है?
1: बिल्कुल, हर महिला की स्थिति अलग होती है, इसलिए आगे की देखभाल, दवाओं या पूरक खुराक के बारे में सलाह माननी चाहिए जो स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर दें।
0: यानी अपने मन से दवा बंद या शुरू नहीं करनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य केंद्र की सलाह सबसे महत्वपूर्ण है।
0: दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ है कि बच्चे के जन्म के बाद माँ की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके स्वास्थ्य को पीछे छोड़ दिया जाए।
2: अगर प्रसव के बाद भी कमजोरी बनी हुई है, चक्कर आते हैं या शरीर पहले जैसा नहीं लग रहा, तो इसे सामान्य मानकर टालिए मत।
1: समय पर जांच, सही सलाह और उचित देखभाल से माँ की रिकवरी बेहतर हो सकती है, और जब माँ स्वस्थ होगी तो बच्चे की देखभाल भी बेहतर तरीके कर पाएगी।
0: चलते चलते आज के कार्यक्रम की चार महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। पहली, प्रसव के बाद भी खून की कमी बनी रह सकती है। दूसरी, लगातार कमजोरी या चक्कर को नजरअंदाज कतई ना करें। तीसरी, जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। और चौथी, माँ को पौष्टिक भोजन, आराम, परिवार का पूरा सहयोग दें।
2: माँ की सेहत पर ध्यान देना है, बच्चे के भविष्य पर ध्यान देना है,
1: और समय पर पहचान तथा उचित देखभाल माँ और बच्चे दोनों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम ला सकती है।
0: इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम से मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है सब पूछने लगते हैं, अच्छी खबर कब आएगी? लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपतियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए?
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 9125707093 और 9696746006। कपड़ा

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मेनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है
3: आरजे अंशिका।
2: जी हाँ, और हाँ जी, हम आ गए हैं आपके अपने शो यानी आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है
1: सुन सहेली।
2: तो सुन सहेली में हम दोनों लोग आ गए हैं, हम दोनों ने बहुत अच्छी अच्छी अभी बातें की, गपशप किया, बिस्किट खाया, चिप्स खाई एंड पानी पिया
3: और कुछ नहीं किया,
2: बातें शाते की
3: और भी कुछ किया,
2: आटा किसी को डांस किया,
3: हाँ
2: तो, की
3: तो मेन तो आप बताइए।
2: तो
3: बताया
2: हम आ रहे हैं उस पे, आ रहे हैं लिसनर्स, बता दूं कि आज हमारे कॉलेज में यानी कि हमारे पीजी कॉलेज, हमारे नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज में आज है बच्चों का सत्र शुरू यानी कि आज है ओरिएंटेशन डे फर्स्ट ईयर का, और फर्स्ट ईयर के ओरिएंटेशन यानी उनके वेलकम डे के दिन आज मैं थी बहुत खुश, इसीलिए मैंने बच्चों के लिए आज किया अपनी एक परफॉर्मेंस, छोटी सी परफॉर्मेंस दी, डांस किया। अच्छी गाउस की बात कर रहे हैं,
3: छोटी सी परफॉर्मेंस डांस किया, कैसे बता रही है मैम, देखिए
2: तो क्या बताना है उसमें, मतलब
3: छोटी सी परफॉर्मेंस में, मतलब वो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, और हमारे यहाँ तो है भी,
2: पता नहीं क्या कर गए हम, मुझे खुद नहीं पता है। और
3: अरे अब आप क्या कर गई, ये तो आप देखने वालों से पूछिए।
2: रायता फैला दिया और सब लोग बटोर रहे हैं।
3: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रायता तो बिल्कुल ही नहीं था और मस्त जबरदस्त लाजवाब
2: दही बड़ा था,
3: दही बड़ा भी नहीं था,
2: दही की कोई चीज थी
3: बहुत अच्छी, मतलब जो भी था वेरी वेरी गुड एक्सीलेंट, मतलब वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, और मैंने तो पहली बार देखा।
2: अच्छा हाँ जी, आपने तो पहली बार देखा ना,
3: और वो रूप, मतलब मुझे ये लग रहा था कि मैम कहाँ छुपा के रखती हैं, रोज तो ऐवे ही ऐसे ही आती हैं मैम, और आज मैम ने मेकअप किया हुआ था, बिंदी लगाई हुई थी और बहुत बहुत अच्छी लग रही थी, चूड़ियाँ भी पहनी हुई थी। मैं जब आई तो मैंने कहा अरे मैम आज अपनी चूड़ियाँ पहनी है, तो हमारी मैम तैयार नहीं होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो फिर ऐसी लगती हैं कि फिर जो देखेगा,
2: होती हूं तो फिर मैं होती हूं, फिर
3: जो देखेगा वो देखता रह जाएगा। और आज तो ऐसा था कि वैसे तो सब मैम को कहते ही हैं, नो डाउट कि आप हम सबको नचा, तो ऐसा था कि वैसे तो सब मैम को कहते ही हैं, नो डाउट कि आप हम सबको नचाती हैं, तो आज नचाने वाली हैं जिन जो हैं हमारी मैम, उन्होंने डांस किया, तो जब नचाने वाली नाचेंगी तो कैसी लगेंगी आप सब समझ सकते हैं। बहुत प्यारा परफॉर्मेंस दिया था मैम ने, बहुत अच्छा लगा, और ऐसी अगर मतलब परफॉर्मेंसेज हों तो हम सोच रहे हैं कि हर प्रोग्राम में एक मैम की परफॉर्मेंस जरूर हो।
2: बिल्कुल, बस यही अब काम रह गया है ना,
3: क्यों ये तो अच्छी बात है ना, इससे अच्छा फील होता है, पता है ये वो जैसे आप कहती थी जैसे हम लोग चिढ़ाते नहीं है बड़े बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग तो इससे यंग फील होता है, फिर बड़े बुजुर्गों वाली फीलिंग नहीं होती। देखिए आप सभी ने आपको बोला ना कि मैम आप कितनी अच्छी लग रही हैं, कितनी मतलब अच्छे से रेडी हुई हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं, और स्टूडेंट्स में अगर आप खड़ी होती वहाँ पे तो कोई पहचान नहीं पाता कि
2: तो हम लोगों ने बहुत सारे रील्स भी बनाई है, वो तो सभी लोग कहते हैं कि आप टीचर्स के बीच में खड़े होते हो तो आप मतलब बच्चों
3: टीचर नहीं लगते,
2: तो आप टीचर नहीं लगते, तो ये मेरे ऊपर रहमो करम है मेरे भोले बाबा, मेरे शिव रूप, मेरे बाबा साईं का, जिनका जिनके कारण से मैं एक पत्ता भी नहीं हिल, मतलब मेरी जिंदगी का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और ओवरऑल आज का दिन मैंने नहीं किया, मुझे करवाया गया, और पता नहीं किस रूप में करवाया गया, आई डोंट नो। देखते हैं ना कि देखो ईश्वर में आस्था रखना ये अलग बात
3: जी,
2: ईश्वर में विश्वास रखना ये भी बहुत आसान है, लेकिन ईश्वर को हर जगह पाना और उनका हाथ पकड़ करके आपको हर कदम पर ले जाना, ये आपकी एक बहुत बड़ी मिसाल होती है, और जो मैं करती हूँ। जब मैंने डांस शुरू किया तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं पीछे हाथ जोड़ करके मैंने अपने अपने गुरु, अपने ईष्ट को याद किया, मैंने कहा आप संभालना, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। अंशिका मैं बताऊं कि लाइट चली गई बीच में, क्योंकि मुझे ना एक वो मिल गया रिलैक्स के लिए,
3: थोड़ा सा रिलीफ हो गया था,
2: मिल गया, बट वो मेरे लिए एक शगुन होता है लाइट जाना, मेरे बच्चों के डांस में नहीं गई, मेरे में गई, चलो वो अच्छा है, पर मेरे लिए बहुत बड़ा एक टीका लगता है कि मतलब ओवरऑल बेस्ट एंड बेस्ट होने वाला है। तो ये तो थी आज की दिन की शुरुआत, क्योंकि आज वाकई में ओरिएंटेशन के दिन मज़ा आ गया, हमारे नए नए बच्चे आए बहुत ही ब्यूटीफुल से, सब लोग आज ड्रेस में थे, और कल हमारा है फाउंडर डे यानी हमारी डॉक्टर कृष्णा मैम का बर्थडे के दिन हम लोग उन्हें फाउंडर डे के रूप में मनाते हैं, तो कल भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है कल भी। तो इन दो दिनों के बाद में सैटरडे को क्लासेस होंगी हमारी जो कि वो कृष्णल है, एंड कम अप यानी कमिंग अप जो मंडे आने वाला है उस दिन से हमारा सत्र, हमारा नए कॉलेज का सत्र शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही एक्साइटेड हैं हम लोग भी कि फटाफट बच्चे आएँ और हम अपने क्लासेस शुरू करें। देन आज के शो की ओर चलते हैं, अब हम रुक करते हैं। और आज का शो आप सभी को पता है कि आज है थर्सडे, और थर्सडे यानी गुरुवार। तो गुरुवार के दिन हम लेकर के आते हैं
3: सीनियर सिटीजन्स के लिए, आज उनकी कुछ हेल्थ पे बात करें।
2: इसीलिए कहें कि आज हम इतना अच्छे से हम क्यों पेश आ रहे हैं, सीनियर सिटीजन। I am also senior citizen. क्या?
3: अभी यही, अगर आधे घंटे नहीं, हाँ थोड़ी देर पहले आपने देखा होता तो आई एम अ सीनियर सिटीजन ये कोई मानता नहीं, फिर मुझे इंट्रोड्यूस कराना पड़ता, लोग मुझसे कहते आपकी छोटी बहन बहुत अच्छी लग रही है, फिर मुझे कहना पड़ता हाँ मेरे साथ है ना बहुत अच्छी लग रही है, आई नो वेरी वेल। तो वो वाला सीन था, और अब यहाँ बैठ के मैम बता रही है आई एम अ सीनियर सिटीजन।
2: नहीं देखो, दिल तो बच्चा है जी, ठीक, बॉडी तो ब्यूटीफुल सी होती है, सभी को आपको मैनेज करना आता है, ठीक, बट हमारी जो एज होती है वो तो होती है ना,
3: वो तो
2: बट उसका जो इफेक्ट होता है ना वो बुजुर्गों पे असर नहीं डालना चाहिए, मतलब एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है, हमेशा से दिल को बच्चा ही रखना चाहिए।
3: तो ये वही वाला सीन है, उम्र बचपन दिल बचपन, वो वाला नहीं, अरे मैं
2: बोल दी ना,
3: अरे मैं आपको थोड़ी ना कह रही,
2: नहीं ठीक है बोल,
3: अरे मैम अब गुस्सा ना होइए, अब गुस्सा ना होइए,
2: हम नहीं बोलेंगे। चलिए लिसनर, हम दोनों लोग बात करते हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी। हम लोग सुजीत जी आ गए हैं, और नहीं अभी हमारे

0: और चलिए फटाफट शुरू करते हैं, विश कर देते हैं इस प्यारे से मौसम को एक साथ एक ही फ्रेम में, हम दोनों लोग एक ही फ्रेम में क्या बोलेंगे,
1: शुभ दोपहरिया।
0: तो अंशिका हमको रास्ता दीजिए।
1: अरे मैम आप सीरियस रहे, रास्ता मांगेंगी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर सीरियसली मेरा मूड नहीं बनेगा।
0: देखो तुमने हमको आज जो पोयम में जो पहली लाइन है ना उसमें भी देखो यही है, झुर्रियों से भरे, देखा।
1: अरे तो झुर्रियों से भरे औरों के लिए था।
0: अच्छा औरों,
1: ये जो मैंने अभी लाइन बोली उम्र बचपन दिल बचपन, ये भी औरों के लिए था। आप सब कुछ अपने ऊपर क्यों लेती हैं? आप अच्छी अच्छी चीजें अपने ऊपर लिया करिए, किसी की अच्छी सी तारीफ, किसी की अच्छी सी बातें, किसी की क्यूट वाली बातें, आप क्यों मेरा कहा कुछ भी आप अपने ऊपर अप्लाई मत
0: करो। अभी तुमको मैंने बताई। अच्छा सच्ची बताओ मजा आया सुन के ही नहीं आया था
1: मैम?
0: अभी तो मैंने आधी बताई
1: नहीं, बहुत मजा आया, आधी बहुत जबरदस्त थी, पूरी पता नहीं क्या होगी। खैर वो हम ऑफ माइक जाएंगे, पूरी बात की तरफ जानेंगे लिसनर, क्योंकि वो हमारी टॉक है, हम अपनी टॉक से शेयर नहीं करते।
0: तो फटाफट प्यार भरे रास्ता दे एंड देन हम अपनी पोयम शुरू करें और उसके बाद आज के प्रोग्राम
1: तो करते हैं एक नई शुरुआत। कर रही है एक नई शुरुआत कुछ नई अदाओं के साथ, कोई प्यारा सा दिल में है, पर कुछ कहने की बात नहीं है, और हो रही है बहुत ही प्यारी इस बरसात, ये प्रेम की बरसात। तो चलिए हम भी करते हैं प्यारी सी कविता की शुरुआत आपकी अपनी आरजेस समता के साथ।
0: वाह बहुत ही बढ़िया,
1: शुक्रिया। इसे कहते हैं मूड बदलना।
0: मूड बदलना, अभी मेरा मूड बदला हुआ था, मैं छेड़ रही थी तुम्हें।
1: अरे कोई बात नहीं, आप मुझे
0: छेड़ो ना,
1: अब आप मुझे छेड़ेंगे, चलिए कोई बात नहीं।
0: चलो
1: और भी कुछ था लास्ट वाला,
0: सागर किनारे,
1: नहीं नहीं उससे भी लास्ट वाला,
0: तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई।
1: बहुत ये मैं यहाँ ये ढूंढ रही ये मिल गया।
0: सारे सॉन्ग्स का सिलेक्शन मैंने ध्यान में रख करके किया गया था।
1: I know very well, खास तौर से लास्ट वाला।
0: और पहला वाला तो गाना था कि खोलूंगी ना अब मैं किवड़िया, किसी और के लिए था, अब नहीं किवाड़ खोलूंगी।
1: अरे वो किवाड़ क्या, वो क्या बोलते हैं वो जब दरवाजा पुराना हो जाता है ना, तो उसमें
0: चेंज कर देना चाहिए, एल्बम का लगवाना चाहिए।
1: हाँ मस्त वाला, आजकल वाला, न्यू जनरेशन ऑटोमेटिक जो रिमोट से बंद होता है।

0: बिल्कुल 100 में 200%, 300%, 400%, 500% उससे भी आगे
1: आए,
0: आइए
1: काम पे आए अब
0: जी।
1: झुर्रियों से भरे ये चेहरे अनुभवों की खुली किताब है, इनकी आंखों में थमे हुए कल के सुनहरे ख्वाब है, जीवन की हर धूप छांव को इन्होंने हंसकर झेला है, इनके कदमों की आहट में यादों का सुंदर मेला है, ये घर की वो मजबूत नींव हैं जो हर तूफान को सहती है, इनके होठों से सदा दुआ और मीठी सीख ही बहती है, इनका साया है तो घर में हर पल त्योहार सा लगता है, इनके बिना तो सारा आंगन सूना और उदार सा दिखता है, बचपन को उंगली थाम कर इन्होंने ही चलना सिखाया, सही और गलत का अंतर हर मोड़ पर हमें बताया, आज वक्त है हम लौटाएं इन्हें वो प्यार वो सम्मान, इनके चेहरे की मुस्कान ही होनी चाहिए हमारी शान। एग्जैक्टली, इनके चेहरे की होनी चाहिए प्यारी सी ये।
0: मत भूलो इनके योगदान को, ये देश और समाज का गौरव है, इनके जीवन की बगिया का हम सब ही तो सौरभ है, आओ मिलकर शीश झुकाएं इनके चरणों में वंदन करें, इनके पावन आशीर्वाद से अपने जीवन को हम चंदन करें, इनके पावन आशीर्वाद से अपने जीवन को हम चंदन करें।
1: वाओ,
0: बिल्कुल बहुत ही प्यारी पोयम और बहुत ही प्यारी हमारी मैम, जैसे वो हैं वैसे ही वो पोएट्रीज भी लाती हैं, वैसी लाइंस भी लाती हैं जो सीधा दिल को छू जाती है,
1: दिल पे वार करती है।
0: क्या बात है, वार, प्यार, इश्क, विश्क, जब ये होता है ना तो फिर क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है
1: ना, मंजूरे आज प्रेमियां होते हैं। अच्छा, प्रेमियों का होता है तो जो मंजूरे वही होगा जो दो प्रेमी चाहेंगे ना।
0: समझ में आया मुझे आजकल समझ में आ रहा है।
1: तुम्हें इज्जत मिलेगी, प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, जो डायलॉग नहीं था अमिताभ जी का, सब मिलेगा। ठीक है,
0: सब में बहुत कुछ।
1: चले अब हम चलते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
0: यस, तो आज आते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ की तरफ, जो कि ये है, ईश्वर में हमेशा विश्वास रखना, बुरे समय में भी उस पर हमेशा आस्था रखना, क्योंकि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि ईश्वर को आपकी चिंता हो, अगर मन में सच्ची भक्ति होगी तो ईश्वर आपकी चिंता करेंगे, और अगर मन में भक्ति नहीं होगी तो आपको चिंता करनी पड़ेगी, इसलिए ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी चिंता करना चाहते हैं या ईश्वर को अपनी चिंता करने पर मजबूर करना चाहते हैं। मन में विश्वास जिसके लिए भी हो हमेशा अडिग हो, चाहे आप जिस भी भगवान को मानते हो, ये नहीं कहा जाता कि किसी एक की, जिसकी भी आप पूजा करते हैं उस पर हमेशा ये विश्वास रखिए कि समय कितना भी कठिन होगा लेकिन अगर वो आपके साथ है तो आप पार कर लेंगे, और अगर वो नहीं है और सारी दुनिया है तब भी पार नहीं कर पाएंगे।
1: हाँ, ये तो है।
0: क्या होता है ना मैम कि जब हमारा अच्छा समय चलता है तो हम भगवान को कभी थैंक यू नहीं कहते।
1: हाँ।
0: कि आपने बहुत अच्छा टाइम दिया, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन जरा सी मुश्किल आती है हम तुरंत
1: तो हम घबरा जाते हैं।
0: हाँ, तुरंत कहना शुरू कर देते हैं, अरे भगवान ने मेरे भाग्य में सब लिखा है, मुझे ही सारी तकलीफें। कोई बात नहीं, हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी तकलीफें हों, लेकिन उन बहुत सारी तकलीफों से निकल कर जब आप जाएंगे तो आप इतने मजबूत बनेंगे कि आगे फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कहते हैं ना कि मुसीबतें या तो इंसान के साथ दो सिचुएशन करती हैं, या तो उसे बिखरा देती हैं
1: या तो उसे निखरा देती हैं।
0: बिल्कुल, निखार,
1: या तो उसे बिखार देती है या तो उसे निखार देती है,
0: और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि सोने को भी आग में तपना पड़ता है तब वो जाकर के कोई नेकलेस बनता है, और किसी एक बहुत ही खूबसूरत शायर ने भी कहा था कि जब तक सोने की तरह आप जलेंगे नहीं तब तक निखरेंगे कैसे, और जब तब निखरेंगे तो जो चमक होगी ना वो सबकी आंखों में, यहाँ तक कि जिसने आपको तकलीफ दी है उसकी आंखों में भी चुभेगी।
1: हाँ।
0: तो हमेशा वो सोना बने कि जिसकी चमक आपको, जो प्यार करते हैं, जो चाहते हैं, उनकी आंखों में आपकी चमक प्यार बनकर चमकनी चाहिए, लेकिन जो आपसे थोड़ा दूर रहते हैं या आपको पसंद नहीं करते हैं उनकी आंखों में वो चमक चुभनी चाहिए, आप नहीं, आपकी चमक चुभनी चाहिए।
1: तो चलिए यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे सीधे सीधे, अभी हम लोग इट्स ब्यूटीफुल से सॉन्ग को लेकर सुनेंगे, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को, देन आप नया आज हमारा एक टॉपिक है हम उस पर भी बात करेंगे, बस हम योग है

आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
6: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता और साथ में है
7: RJ अंशिका।
6: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के टॉपिक की ओर, जो कि सीनियर सिटीजंस के लिए स्पेशली होता है।
7: तो आज हमारे पास टॉपिक ये है कि भाई खाना होता है तो आपको खाना भी पड़ता है। और अगर खाने की मात्रा जो होती है वो ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, ये आज हम आपको बताएंगे।
6: तुम्हारे साथ भी होता है?
7: नहीं, मेरे साथ तो नहीं होता।
6: तुम जितना खा लो?
7: नहीं, जितना नहीं, मतलब मैं लिमिट में खाती हूँ। मैं लिमिट में खाती हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे 2 से 4 चीजें आप खा लीजिए, लेकिन लिमिट में खाएंगे तो नुकसान नहीं होगा, ज्यादा खाएंगे तो नुकसान।
6: हाँ।
7: कौन ज्ञान दे रहा है?
6: ये भी है, ये भी तो हम सोच रहे थे तब से भाई, तो हम बहुत गंभीर सोच विचार में थे कि ये ज्ञान कौन बांट रहा है,
7: कौन दे रहा है। ये भी आप देखें, मैं मैम का ये फेस देख के समझ, अब मुझे आ गई है टेलीपैथी कि मैं फेस देख के समझ जाती
6: हूँ। हाँ, वही हम देख रहे थे कि ये ज्ञान कौन बांट रहा है,
7: कि मैम गंभीर है, गुस्से में है। वैसे गुस्से में अब नहीं होती है, मतलब टच वुड
6: कहो ना।
7: अच्छा, कहे ना। अच्छा, ऐसा भी होता है? अच्छा चलो, नहीं कहेंगे भैया, क्योंकि कहने से फिर वो कहते हैं ना,
6: क्योंकि हमने आपको डांट के मारा नहीं था, बस वो डांट वो मार वाली थी। अच्छा, डांट के इतना ज्यादा जैसे लोहे को तपा करके अब मैंने वो तैयार कर दिया है, तो अब मैं क्यों ही गुस्सा करूंगी।
7: एक वजह और है कि अब मैं गुस्सा नहीं करूंगी।
6: अरे चलो, वो कोई वजह नहीं
7: है,
6: गुस्सा मत दिलाओ हमको।
7: आ रही है आपको?
6: नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रही है।
7: नहीं आ गुस्सा मैम, गुस्सा
6: नहीं आ रही है। चलो फटाफट
7: सीधे में जाइए,
6: सीधे हम
7: आजकल मैम वो रोल वाले में, जलेबी रोल वाले।
6: जलेबी बहुत सीधी होती है ना। हेलो अनुष्का जी, हेलो अनुष्का जी एंड आशु जी, मोस्ट वेलकम एंड शुभ दोपहर आपका।
7: वैसे सुन सहेली में कुछ भी हो सकता है। सुन सहेली में 2 सहेलियां अगर हैं तो जलेबी सीधी भी हो सकती है, कलाकंद गोल भी हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो आपको
6: रसगुल्ले हैं वो ट्रायंगल रूप में हो सकते हैं,
7: हम कुछ भी कर सकते हैं।
6: बर्फी है वो गोल हो सकती है,
7: हम कुछ भी कर सकते
6: हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल,
7: वी डू एवरीथिंग।
6: हाँ,
7: कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी
6: जी।
7: तो फिलहाल कुछ भी में ये करते हैं कि खाना, इसलिए सबसे पहले बताया क्योंकि अभी मुझे ये बताना है कि खाने से समस्याएं क्या क्या होती हैं जो कि हमारे सीनियर सिटीजन को ज्यादा परेशान करती है। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे लीवर प्रॉब्लम की। और लीवर प्रॉब्लम आजकल मैं बता दूं कि 100% में से मैम 90% या 95% ऐसे सीनियर सिटीजन्स होते हैं कि जिनको लीवर की प्रॉब्लम होती है। और सीनियर सिटीजन्स तो हम सिर्फ नाम लेते हैं मैम, आप सर्वे को देखेंगे तो उसमें ये बताया जाता है 45, 50 या उससे भी अबव के या उससे नीचे के बच्चों को हो रही है।
6: बच्चों को भी हो रही
7: है आजकल, बच्चों को
6: फैटी लीवर, फैटी लीवर इट मींस कि लीवर की प्रॉब्लम है,
7: लीवर की प्रॉब्लम है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे वजह बताएंगे और वजह के साथ कुछ ऐसे लक्षण भी बताएंगे कि जिनसे आपका ये फैटी लीवर आप पहचान सकते हैं, और बाद में कैसे ठीक करना है वो भी बताएंगे।
6: ओके,
7: लेकिन कैसे ठीक करना है वो मैं नहीं बताऊंगी,
6: मैं बताऊंगी, लेकिन क्या है पहले आप शुरू करें।
7: जी, तो सबसे पहले जैसे लीवर की प्रॉब्लम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि सबसे पहला कारण आपको बताया, गलत खान पान। और गलत खान पान में पता है सबसे ज्यादा क्या नुकसान करता है? आपको सबसे ज्यादा नुकसान करता है बहुत ज्यादा चर्बी वाला जो हम तेल घर में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, तो जैसे उसमें लिखा होता है ना पैकेट पे इतना इसमें फैट है, तो अगर हम ज्यादा फैट वाला यूज करते हैं तो उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमेशा कम फैट वाली ही चीजों को यूज करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है कि जितना हो सके उतना अगर आप सब्जी बना रहे हैं यूज कर रहे हैं तो उसमें सरसों का तेल यूज करें, क्योंकि सरसों के तेल में फैट नहीं होता है। आप जितना भी खाएंगे ना आपकी बॉडी आपका लीवर उसको अब्सॉर्ब नहीं करता है, और रिफाइंड ऑयल हम खाते हैं या कोई भी ऑयल खाते हैं तो वो हमारा लीवर अब्सॉर्ब करता है, और जितना लीवर ऑयल को अब्सॉर्ब करता है उतना ही ज्यादा उसे ब्लड को सर्कुलेट करने में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिससे कि लीवर खराब होने की समस्याएं हो सकती है। इसलिए लीवर में कभी भी चर्बी को जमा नहीं होने देना चाहिए, फैट नहीं होने देना चाहिए। दूसरा कारण आता है कि शुगर, जैसे जिन्हें भी डायबिटीज है, डायबिटीज की वजह से भी आपके लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आपको मीठा मना है तो मीठा ना ही खाएं। दूसरा एक कारण ये भी होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उनमें भी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे अहम कारण आता है हमारा कि हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं। आपकी बीमारी सबसे ज़्यादा तभी बढ़ती है जब आप उसे इग्नोर करते हैं, इसलिए कभी अपनी बीमारी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब बताते हैं कुछ शुरुआती लक्षण आपको जो कि होते हैं, जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि आपको लीवर की प्रॉब्लम है या नहीं है। ऐसे कुछ लक्षण हैं: लगातार थकान महसूस होना। लगातार थकान महसूस होने का मतलब है कि आप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद ले रहे हैं, प्रॉपर उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सारे काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा थकान फील हो रही है। हर टाइम सुस्ती महसूस होना कि अगर 5 मिनट के लिए भी हम शांत बैठ जा रहे हैं तो हमें नींद आ रही है, जैसे ऐसे झपकी फील हो रही है।
6: अच्छा,
7: वैसा वाला।
6: अच्छा, वैसा नहीं होता।
7: हाँ, तो आपको नहीं होता है और लोगों के लिए, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके लीवर में ही है। कई लोग इसे ये मान लेते हैं कि हम थकते बहुत ज्यादा है ना, तो आप अपने मन से ये सोचिए कि आप करते क्या हो, कितना करते हो कि आप थक जाते हो। देखिए, जैसे घर के बड़े बुजुर्गों में ये होता है कि हाँ उनमें तो उम्र का असर होता है, लेकिन अगर बच्चे जल्दी थक रहे हैं तो उनमें भी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा कारण होता है, ये सबसे अच्छा कारण होता है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको है या नहीं है, भूख कम लगना, खाना देखते ही जी अजीब सा हो जाना, बिल्कुल भी खाने का मन ना करना। अगर अचानक से आपकी भूख बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे आपको खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है और आपको वो जैसे जी मचलाता है, उल्टी लगती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके लीवर को धीरे धीरे आपके खाने को पचाने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए प्रॉपर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए आपको हर वक्त आपका पेट भरा भरा महसूस होता है। देखिए, ये डिपेंड नहीं करता है कि हम कितना खाते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, अरे मेरी तो इतनी डाइट है, मैं तो 4 खा लेती हूँ, मैं तो 3 या मैं 2, जो भी है आपकी डाइट, लेकिन प्रॉपर 3 टाइम खाना खाना ही चाहिए।
6: हाँ, पहले थोड़ा सा खाओ, हाँ, कम खाओ, लेकिन खाना चाहिए।
7: सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया, दोपहर में लंच किया या नहीं किया जैसा भी है, और फिर आपने शाम को डिनर किया, शाम को स्नैक्स लिए 5 बजे 6 बजे जो भी टाइम है, तो वो होना चाहिए। अगर आप अपनी प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, और ये धीरे धीरे लीवर की ओर इशारा करता है। तीसरा लक्षण होता है कि आपकी पसलियों के ठीक नीचे लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा पेन महसूस होना,
6: हमेशा
7: रेगुलर डेली रूटीन में आपको फील होता है हल्का हल्का पेन, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हो कि अरे दवाई खा लेंगे ना, कहीं चोट लग गई होगी, होगा कुछ होगा, तो इसका ये नहीं करना है, क्योंकि लगातार पसलियों के नीचे अगर आपके लेफ्ट हिस्से में पेन,
6: मतलब ये वाला,
7: हाँ ये वाला, अगर पेन हो रहा है तो इट मींस कि हो सकता है कि आपको लीवर की प्रॉब्लम हो। एक बार टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, पहले से भी ना मान ले, मतलब बहुत लोग ये होता है कि दर्द हो रहा है तो लीवर खराब है, पहले से भी नहीं मान लेना है, टेस्ट कराना है पहले। और दूसरी चीज़ होती है कि बिना किसी बात के अगर आपकी स्किन पे एलर्जी हो रही है, हथेली के बीचों बीच आपको खुजली या दाने हो जाते हैं, तो इससे भी ये हो सकता है कि आपको लिवर की प्रॉब्लम हो, ये भी एक सिम्टम्स होते हैं। कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं जो कि बता देते हैं आपको। एक सिम्टम्स ये होता है कि हर वक्त आपको ये महसूस होना, जैसे कुछ लोगों को महसूस होता है ना कि एक भ्रम महसूस होना, जब हमारी ब्लड के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारी माइंड तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब हमें इस तरह के भ्रम महसूस होते हैं। इसलिए अगर आपको भी भ्रम वाली कंडीशन फील होती है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है लिवर के ही कारण से। क्योंकि हमारा माइंड जो होता है वो हमारी फिजिकल बॉडी से जुड़ा होता है। जब आपके बॉडी में फिजिकली कोई प्रॉब्लम होगी तो वो धीरे धीरे आपको मेंटली भी इंडिकेट करने लगेगा। मेंटली इंडिकेट करने का मतलब है कि कुछ नहीं भी कोई कह रहा है फिर भी आपको वो चीज़ सुनाई दे रही है। या हम उल्टा सुन लेते हैं कई बार कि किसी ने खाना कहा तो हमें गाना सुनाई दिया या ऐसा कुछ, तो वो कहीं ना कहीं सिम्टम्स होते हैं। तो इन सिम्टम्स को आप ज़रूर ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन करें। इस बीमारी को, बीमारी कह लें या एक कंडीशन कह लें, उसे कभी भी अपनी बॉडी में ना आने दें। अपना बहुत ख्याल रखें क्योंकि ख्याल रखना इम्पॉर्टेंट होता है। कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर।
6: एग्जैक्टली,
7: तो वो रखना चाहिए।
6: बिल्कुल। और इसी बीच नागेश्वर जी एंड प्रीति जी आ गई हैं एंड दोनों को नमस्कार एंड शुभ दोपहर।
7: शुभ दोपहर।
6: आप इसका जो प्रिकॉशन है, मतलब इसका निवारण जो है, ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो हम आपको बताएंगे लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
7: तो आइए लिसनर्स, चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
2: गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता और साथ में है
5: RJ अंशिका।
4: जी हाँ, तो चलिए अभी जो कि प्रॉब्लम के लिए बात हो रही थी, लीवर प्रॉब्लम के लिए, अब उसका निवारण मैं आपको बता देती हूँ।
5: निवारण
4: आपको पता ही है कि मैं ठीक करने का जो जिम्मा है अंशिका ने मुझे दे रखा है।
5: लेकिन सॉन्ग बहुत अच्छा था, जिस दिन तेरी मेरी, बहुत प्यारा सॉन्ग था, किसी को डेडिकेट करने का मन था।
4: जी चले
5: चले,
4: तो कैसे ठीक और सुरक्षित रखा जा सकता है उसके लिए सबसे पहले तो आप उनके लक्षणों को जानें, ठीक है? तो मेडिकल जांच और डॉक्टर की सलाह जरूर से करते रहें अगर लक्षण आपको तुरंत दिखें तो, या गैस्ट्रोएलोजिस्ट को से आप जरूर मिलें, जो कि आपको अगर पेट में गैस रहती है, ठीक है? और LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट और वायरल मार्कर टेस्ट जरूर करवाएं। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी पेन किलर या पैरासिटामोल कभी ना खाएं, क्योंकि ये दवाएं बीमार लीवर को और बुरा असर डालती हैं। और सबसे अच्छा है कि अगर आपको आराम कर रहे हैं, यानी कि आपको अगर रिकवरी के लिए शुरुआती दिनों में बुजुर्गों को पूरी तरह आराम करने दें, क्योंकि लीवर को खुद ठीक करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। एग्जैक्टली। और खान पान में आप बदलाव कर सकते हैं, जैसे कम वसा यानी कि लो फैट और आसानी से पचने वाला भोजन ही आप खाएं, जैसे दलिया, खिचड़ी, उबले आलू, तेल, घी, मसालेदार और बाहर का खाना पूरी तरह से आप बंद कर सकते हैं। उल्टी और पेट खराब के कारण शरीर में पानी की कमी ना होने दें, उन्हें नारियल पानी, ORS का घोल या नींबू पानी जरूर से देते रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि पानी को हमेशा उबाल कर दें। अगर आपके यहाँ RO है तो RO पानी दें, अगर नहीं है तो पानी को उबाल कर छान लें। और बरसात के दिनों में तो खास करके ये फिल्टर पानी जरूर भी देना चाहिए, क्योंकि जो वायरस होता है वो जल्दी नहीं मरते हैं।
5: जी मैम।
4: बुजुर्गों के लिए पानी को कम से कम 20 मिनट तक उबालें और फिर उन्हें ठंडा करके उन्हें पानी पीने के लिए। यदि बुजुर्ग को पहले से कोई लिवर की बीमारी जैसे फैटी लिवर या सिरोसिस है तो डॉक्टर से सलाह किए बिना उन्हें कोई भी प्रकार का टीका आपको नहीं लगाना है। तो कहा जाता है ना कि अगर हम प्रकॉशन पे रहें, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दें, मीठा कम खाएं, क्योंकि वैसे भी 45 के बाद में क्या होता है, हर किसी को अपनी सेहत के लिए ये थोड़ा सा जागरूक हो जाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि हर किसी को आज के युग में ना ये छोटे छोटे प्रकॉशंस अगर आप लोग करके चलेंगे तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आप आगे चल करके नहीं होगी। तो हमेशा से जैसा अभी अंशिका ने बताया कि मैं अंशिका जब कोई भी मतलब बताती है ना सिम्टम्स तो मैं अपने ऊपर लेती हूँ, उसका भी एक पता है एक ये अच्छा रीजन होता है अंशिका, क्योंकि हम उस क्या कहते हैं रीजन को मैच कर पाते हैं।
5: जी मैम।
4: सामने वाले जो आप बता रहे हो हम मैच कर पाते हैं कि कहीं हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है ना। जैसे अभी आपने बताया कि लेफ्ट साइड पेन होना है पसलियों के नीचे,
5: जी।
4: तो मतलब उसके लिए जो पेन किलर है डॉक्टर्स, अभी मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स जो कि अगर आप उनसे सलाह लेकर के ही खाएं, कोई भी पैरासिटामोल या पेन किलर कभी नहीं खाना चाहिए, खास करके पेट के दर्द को लेकर के कभी नहीं खाना चाहिए। मतलब मुझे तो लगता है कि पेन किलर पेट दर्द के लिए बिल्कुल भी हानिकारक है, वो तो आपको बिना डॉक्टर की सलाह लिए आपको खाने ही नहीं चाहिए। अगर आपको डॉक्टर दे रहे हैं तब तो बेस्ट है, अपने आप से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो मैं क्या बात करती हूं अंशिका कि अगर हम सिम्टम्स को मैच करते हैं ना, तो इससे हम कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के श्योर हो जाते हैं
5: जी।
4: लेकिन अंशिका हंसती है मेरे ऊपर।
5: नहीं मैं
4: अच्छा तुम बताओ, तुम भी करती हो कि नहीं करती हो?
5: करती हूं।
4: सिम्टम्स मैच करती हो ना?
5: करती हूं।
4: देखा दांत निकाल के हंस रही है, करती ये भी है।
5: लेकिन मैं आपको इसलिए मतलब मैं नहीं करने देती हूँ कि फिर ये ना हो जाए कहीं एक दो भी अगर लिसनर्स मैच हो जाता है ना तो फिर मैम को ये
4: ऑलमोस्ट सभी का मैच होता है।
5: हाँ।
4: क्या और ये वाला तो मैच सबका होता है कि थोड़ा काम किया हो थकावट।
5: हाँ।
4: ये सबका मैच होता है।
5: सबका मैच किसी होता
4: है। आजकल के खान पान में इतनी पौष्टिकता नहीं है जिसको ओवरऑल बिल्कुल बैटरी चार्ज रहे, ऐसा नहीं।
5: अभी बैटरी डाउन हो सकती
4: है। अब जैसे तुम दोपहर में बैठी हो, तुम्हें भूख लगेगी और अगर कुछ खा ले तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। अब यहाँ बैठी हो शो के बाद में हम लोग घर जाते हैं तो कितनी मतलब आलस लगती है कि कोई काम करने का मन नहीं करता।
5: नहीं लेजी तो फील।
4: हाँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम अपने पॉजिटिव थिंग को अगर रखते हैं ना तो बड़ी से बड़ी बीमारी जो होती है ना वो ठीक हो सकती है।
5: वाह।
4: हाँ।
5: ये
4: नागेश्वर जी कह रहे हैं फेफड़ों के नीचे जो दर्द रहता है वह भी लीवर का दर्द हो सकता है।
5: नागेश्वर जी
4: तो ये तो कभी कभी मुझे पड़ता है।
5: कहाँ पे मैम? फेफड़ों के नीचे जैसे बोल रहे हैं ना। नहीं तो वो कभी कभी पता है क्यों हो जाता है नागेश्वर जी से, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने अभी अभी आपको जब बताया था तब बताया था कि एक बार टेस्ट करवाना चाहिए, अपने मन से वो कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना
4: चाहिए। और वो कंटिन्यूअसली वो बोल रही है कि अगर हो
5: डेली रूटीन का पेन होता है। कभी कभी तो मुझे भी होता है, मैं किसी दिन मैम बकेट उठा लेती हूँ जब पानी से भरी हुई तो मुझे भी वहाँ पे फिर पेन होने लगता है, तो इसका मतलब क्या है कि।
4: और कभी कभी अंशिका मैम तो डरा देती है सिम्टम्स बताकर।
5: अब डराना नहीं है, प्रिकॉशन देखे, डर अच्छी चीज होती है। जैसे भी मैम ने बताया ना आपको कि जब हम कंपेयर कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम उस सिचुएशन में हैं या नहीं, तो कई बार डर अच्छी चीज होती है। अब आप बताइए, आप हॉस्पिटल जाएं, एडमिट हो, ट्रीटमेंट कराएं, उससे अच्छा है ना कि हम लक्षणों से थोड़ा डरे और पहले से ही प्रिकॉशन करें। ये अच्छी बात है।
4: बस वही वही वही
5: वही
4: जहाँ जा रहे हैं, जिस तरफ ये लाइन जा रही है बहुत ही सही लाइन जा रही है जो कि अभी अंशिका ने बताया कि प्रिकॉशन इज द बेस्ट। क्योंकि हम सबकी आजकल बच्चों को भी कहा जाता है अंशिका कि मीठा कम उन्हें देना चाहिए और क्योंकि आगे चल करके उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सेम थिंग है कि अगर हम थोड़ा सा अपने लिए ध्यान रखते हैं, मीठा कम खाते हैं, और वैसे भी आजकल सभी लोग इतने जागरूक हैं कि अपनी हेल्थ को लेकर के वो लोग कॉन्शियस रहते हैं, मीठा कम खाना और बाहर की तली भुली चीजें नहीं खाना। बहुत लोग ऐसे हैं कि उनका गुजारा ही नहीं होता है बाहर का जब तक वो ना खाए, है ना। तो काफी लोग ऐसे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट हाँ ये है कि आजकल सभी लोग मतलब हैं जागरूक अपने प्रति। बट अगर किसी को लगता है कि हाँ ये चीजें प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टरों की सलाह जरूर से लें। तो चलिए अंशिका यहाँ पर लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे आज कुछ पौधों को बात।
5: हाँ।
4: पौधों को लेकर के बात करनी।
5: आज हम पौधों को लेकर के बताने वाले हैं, लेकिन क्या बताने वाले हैं वो अभी नहीं बताएंगे।
4: तो कब बताएंगे?
5: एक प्यारे से सॉन्ग के बाद में बताएंगे।
4: सॉन्ग सुनना है क्या?
5: हाँ।
4: ओके, तो चलिए भाई हम सॉन्ग सुना देते हैं इनको और आप लोग भी सुने, और तब तक के लिए हम आएंगे बस छोटू से म्यूजिकल ब्रेक।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ओ आर एस और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
6: की आज समता और साथ में हैं
7: RJ अंशिका।
6: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हमारे आज के दूसरे टॉपिक। तो भाई, हम अपने वादे के मुताबिक 2 से 3 के बीच में आपको सुनाते हैं 2 प्यारे गाने जिसमें गीता जी ने लिख के भेजा है। नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच गीता जी एंड शुभ दोपहरिया। लेट से आने के लिए माफ कर दिया, कोई बात नहीं, माफ कर दिया। एंड महेंद्र जी आ गए हैं, और कैसे हैं महेंद्र जी? और नागेश्वर जी लिख रहे हैं कि आजकल के बच्चों को डायरिया से बचा लेंगे लेकिन मोबाइल से कैसे बचा?
7: नहीं, वो जैसे कहते नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हम बचाव नहीं करना चाहते। हाँ। तो हमारा फोन कुछ ऐसा ही है। पहले क्या होता था कि पहले एक बहुत अच्छी लाइन होती थी, अमिताभ जी की होती थी, तुम्हें जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अब उसमें एक परमानेंट आप साथी जोड़े, तुम्हें जीने के लिए चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान
6: और मोबाइल,
7: और मोबाइल में डेटा।
6: डेटा
7: इतना दुख, मैम इतना दुख, अगर कोई आपका अपना, मतलब आई मीन टू से कि कोई आपका फ्रेंड घर से चला जाता है तो उतनी तकलीफ नहीं होती है
6: जितना अगर मोबाइल इधर उधर हो जाए तो।
7: नहीं, जितना कि आप रात में अगर अपना मनपसंद कोई वीडियो या कुछ देख रहे हो और अचानक डेटा खत्म हो जाए तब।
6: हाँ,
7: अरे यार ये क्या हो गया, और तब दोस्त भी नहीं अच्छा लगता है। देखिए, आपके आपके मोबाइल का डेटा खत्म हो, आप कुछ देखना चाहते हो और उसी वक्त आपके दोस्त का फोन आए तो यही आता है, अरे रखो यार, बहुत दिमाग परेशान है। और जब कोई पूछता है क्यों परेशान हो, मेरे मोबाइल का डेटा खत्म हो गया है।
6: बिल्कुल,
7: इससे भी बड़ी कोई परेशानी हो सकती है?
6: एग्जैक्टली, ऐसा ही होता है, सेम टू सेम। तो फिर हम लोग उसको रात में रिचार्ज करते हैं, 25 रुपए वाला, 22 रुपए वाला, मिडनाइट,
7: किसी भी तरीके से,
6: किसी भी तरीके से उसको रिचार्ज करके हम लोग चलाते हैं आधा घंटा एक घंटा। और उसके बाद, क्योंकि कहते हैं ना कि आदत जो होती है ये बहुत बड़ी वाली खराब चीज होती है, तो ऐसे ही किसी सामानों की, मोबाइल की या किसी भी इंसान की आदत नहीं लगानी चाहिए।
7: नहीं, इंसान की आदत लगानी चाहिए,
6: अच्छे इंसान,
7: अच्छे इंसान, बेटर वाइब्स वाले, अच्छे वाले, इनोसेंट वाले, क्यूट वाले, उनकी आदत लगानी चाहिए
6: जी।
7: जो थोड़े वो क्या कहते हैं, जैसे एक जो अच्छी प्रवृत्ति नहीं होती उनकी नहीं लगानी चाहिए,
6: उनके नहीं, जो अच्छे वाले इंसान है उनकी आदत लगाना जरूरी होता है जी।
7: तो चलिए अब आते हैं कि अभी तक हमने गार्डनिंग की बात नहीं की, तो आज हम आपको बताएंगे सीनियर सिटीजन के लिए गार्डनिंग थेरेपी क्या होती। सबको लगता है कि क्या ही करना होता है, एक अच्छा सा पॉट खरीदा, कोई भी एक प्लांट खरीद लिया, थोड़ी उस पे मेहनत की और बस प्लांट लग गया और इजली उसमें फ्लावर्स आने लगे, ऐसा हमें महसूस होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब आप प्लांट्स के साथ होते हो तो आपकी हीलिंग पावर दोगुनी नहीं बल्कि 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम प्लांट्स पे, मैम कभी जब प्लांट्स लगाते हैं तो कितना सॉफ्ट लाइक फील होता है,
6: बहुत
7: कितना अच्छा फील होता है।
6: हमें तो लगता है कि हम जैसे अपने बच्चों की केयर करते हैं ना, वैसे ही प्लांट्स की रखनी चाहिए। धूप, ज्यादा धूप नहीं, ज्यादा पानी नहीं, और मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने घर के प्लांट्स की देखभाल ऐसे ही करती हूँ।
7: तो आज हम आपको ये बताएंगे कि मेंटल फिटनेस होती है, ये हमेशा माना जाता है कि अगर 10 से 20 मिनट भी आप अपने देते हैं अपने प्लांट्स को, तो इससे आपकी माइंड में सेरोटिन और एंडोमॉर्फिन जो हार्मोन्स होते हैं वो श्रावित होते
6: हैं, वो इंक्रीज होते हैं, और
7: ये सबसे हैप्पी हार्मोन्स माने जाते हैं। एंडोमॉर्फिन भी तब जाकर के उसका श्राव होता है जब हम कुछ बहुत हैप्पी वाली न्यूज सुन लेते हैं और हम बहुत ज्यादा अचानक चेयर अप हो जाते हैं। वैसा ही होता है जब आप अपने प्लांट्स के साथ रहते हैं।
6: ओके।
7: ऐसा होता है और एक कंडीशन में और होता है, जब आप अपने किसी पसंदीदा पर्सन के साथ होते हैं तब भी ऐसा होता है, और अगर आप अपने पेट्स के साथ हैं तब भी।
6: तुमने अपने मन से जोड़ा है अभी?
7: नहीं नहीं, है मेरे पास, है मेरे पास सबूत है।
6: अच्छा अच्छा,
7: मैं बिना सबूत के बात नहीं करती।
6: जी, जी, जी।
7: लेकिन आप अपने पेट्स के साथ होते हो ना तो भी आपको बहुत चेयरफुल फील करता है, और ये मैं आपको बिल्कुल मेरे ऊपर किया हुआ बता सकती हूँ, क्योंकि जब मैं ब्लैकी के साथ होती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ, तो मुझे यही मन करता है कि अब इतनी देर कोई डिस्टर्ब ना करे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। फिर वो चाहे 10 बार अपने पीछे घुमाता है लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगता है। इस तरह आप अपने पसंदीदा इंसान के साथ।
6: एग्जैक्टली गीता जी, आपने भी सही लिखा है कि मेरा डाटा खत्म हो जाता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत ऑनलाइन पेमेंट में होती है। कहीं जाओ तो एग्जैक्टली, और मुझे तो लगता है कि जिन लोगों को मोबाइल से पे करने की आदत है ना, तो उनको क्या कहते हैं कि ये फिर बहुत, मतलब मेरी तो बहुत ही आदत पड़ गई है कि अगर मुझे 5 रुपए भी कभी करने होते हैं, 10 रुपए भी करने होते हैं तो मोबाइल उठाया और वट से कर दिया। बट ये बहुत ही आदत ठीक भी है, मतलब सेफली आप पेमेंट कर सकते हैं, पर उसका थोड़ा सा ध्यान भी रखने वाला होता है, मतलब थोड़ी सी हमें प्रिकॉशन भी ज़रूरी होती है उसके लिए।
7: बिल्कुल मैम, एक बात और बता देती हूँ कि जिन भी सीनियर सिटीजन्स को या फिर सीनियर सिटीजन्स के अलावा कई बार ये यूथ्स में भी देखा जाता है कि जिन्हें बहुत ज्यादा भूलने की आदत है।
6: हाँ।
7: देखिए बड़े बुजुर्गों में तो ये अल्जाइमर बन जाता है सीधे सीधे, लेकिन यूथ्स में ये अल्जाइमर नहीं होता, लेकिन अल्जाइमर की शुरुआत होती है अगर वो अपने दिन में 3 से 4 चीजें भूलने लगे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो इससे आपकी याददाश्त भी अच्छी होगी।
6: हाँ।
7: क्योंकि आपको याद होता है ना कि पौधे में पानी डालना है, ये करना है, तो इससे आपकी याददाश्त बेहतर होती है। दूसरी चीज़ होती है कि अगर कोई भी पौधे सीनियर सिटीजन्स अपने हाथों से लगाते हैं और उसे बढ़ता हुआ देखते हैं तो उनमें नई पॉजिटिविटी आती है। जैसे कि होता है ना कि 20 से पौधा निकला फिर पौधा बड़ा हुआ, तो वो डे बाई डे उसे देख रहे हैं तो उनके अंदर एक नई एनर्जी आ रही है कि अभी तक हमारी लाइफ जो है वो एंड नहीं हुई है, हम भी इसी की तरह कुछ भी लाइफ में नया जब हम चाहें तब हम कर सकते
6: हैं,
7: इसलिए उनको एक नई शुरुआत होती है। और अकेलापन हमेशा दूर होता है, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो इससे आपका अकेलापन दूर होता है, क्योंकि धीरे धीरे हम पौधों से बातें करने लगते हैं। अगर आपने कभी अपने पौधे से बात की हो, किसी की बुराई की हो या किसी की कोई अच्छी बात कही हो, क्योंकि मैं तो ब्लैकी से बहुत सारी बातें करती हूँ, बड़े वो फ्लावर नहीं है, वो अच्छा सा पेट है मेरा, लेकिन मैं उसके साथ बहुत बातें करती
6: हूँ। पौधों में भी जान होती है, लेकिन ये तो पूरी एक जान है ना आपका ब्लैकी,
7: वो तो
6: बहुत अच्छे से समझते हैं,
7: वो जान निकालता है हम लोगों की, पता है वो जान है नहीं, वो जान निकालता है, जब अपने पे आता है तो सारी हम लोगों की जानें निकाल लेता है, लेकिन फिर भी मतलब है बहुत प्यारा है और सुनता है बड़े मन से। आपको पता है जब कोई बात करो तो सुनता है, इतनी प्यार से बैठ के ऐसे ऐसे देखता है।
6: तो क्यों कहा जाता है कि जानवरों को समझ बहुत होती है,
7: बहुत होती है, जैसे लगता है, मेरे यहाँ पापा बोलते हैं कि जैसे लगता है दुनिया की सारी जो है वो इनको समझ में भी आती है, तो ऐसा ही होता है आपके प्लांट्स के साथ भी। और दूसरी चीज होती है कि जब हम फूलों के रंग, खुशबू या उन्हें देखते हैं तो इससे हमारे 5 senses जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और जब हमारे 5 senses पूरे के पूरे एक्टिव रहते हैं तो हमें कभी भी मेंटली कोई भी कंडीशन ऐसी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो तो इसके लिए आपको अपने फ्लावर्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, यानी गार्डनिंग थेरेपी जरूर लेनी चाहिए, फिर चाहे वो यूथ्स हो या सीनियर सिटीजन्स।
6: एग्जैक्टली,
7: दोनों को।
6: एक महेंद्र जी का मैसेज आया है अंशिका कि, लेकिन मेरे वाले बच्चों को मोबाइल की लत कम है क्योंकि हम दोनों, यानी वो और उनकी वाइफ, बच्चों के सामने बिल्कुल नहीं देखते हैं मोबाइल, जब उनके आसपास बच्चे होते हैं तो वो उतना ही यूज करते हैं जितना उनको काम होता है, इसीलिए उनको ये आदत नहीं होती बच्चों। तो ये बेस्ट ऑन बेस्ट आदत है आपकी, मतलब मैं तो बहुत ही, मुझे तो सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, बट सही बात है कि पेरेंट्स की भी गलती होती है कि हम हमेशा से 24 घंटे ना, आप पता है जी का, हम लोगों की भी आदत है,
7: हैबिट हो
6: गई है, अगर हम खाली बैठे हैं इट मींस मोबाइल में ही घुसना।
7: हाँ।
6: मोबाइल ही देखनी,
7: कहीं ना कहीं वो एक हैबिट हो गई है, क्योंकि हाँ। आप देखेंगे कि मुझे होता है 100% हर किसी को वो हैबिट है कि 2 मिनट भी अगर आप दो दोस्त ही क्यों ना बैठे हो लेकिन आपस में बात करने की बजाय
6: एक मेरे रूम में जैसे मम्मी मैं और ट्विंकल बैठते हैं ना, तो ये कल का मंजर है, हम तीनों के हाथ में मोबाइल था और जबकि हम सब लोग साथ में बैठे हुए हैं तो मतलब एट लास्ट हम लोग को बैठ के बात करनी है, मम्मी और हम तो रख देंगे मोबाइल, लेकिन ट्विंकल बोल दिया मतलब उसके हाथ में मोबाइल है, अब लगता है कि हाँ तीनों लोगों के हाथ में मोबाइल, तो मुझे तो लगता है कि एक कोई वीडियो बना के मैं इसको वायरल कर दूं कि एक कमरे में 3 से 4 लोग बैठे हैं बट सभी के हाथ में मोबाइल है, वो आपस में बात करने के बजाय मोबाइल में घुसे हुए हैं।
7: बिल्कुल। और घर में ही ये होता है कि अरे आपको ये काम था तो मुझे व्हाट्सएप कर देना चाहिए, घर में ही होता है, घर में दो इंसान मौजूद है,
6: घर में ही कॉल जाती है एक रूम से दूसरे रूम तक
7: कि हेलो हो तो हाँ मैं रूम में हूँ मैं आ रही हूँ, अरे आपको ये काम था तो मुझे व्हाट्सएप कर दो ना, बात करनी है, अगर दो लोगों को कुछ डिस्कस भी करना है व्हाट्सएप मैसेज कर दो हम बाद में पढ़ लें, तो ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा आप बातें करें, पुरानी वाली वाइब, पहले तो हम लोग एक साथ लूडो खेलते थे एंजॉय करते थे बट अब वो नहीं, अब सब
6: नहीं, नहीं बहुत बार मैंने ये चीजें गौर करी हैं। खैर
7: चलिए अब प्यारे से सॉन्ग की तरफ चलते हैं क्योंकि ये हमारा एंडिंग, आई थिंक एंडिंग वाला सॉन्ग होगा, सुनेंगे एंजॉय करेंगे इस सॉन्ग के, उस पार आएंगे आपसे बाय शाय बोलने के लिए।

एग्जैक्टली इतना ब्यूटीफुल सा सॉन्ग चल रहा है ना कि मेरा तो मन नहीं कर रहा है कि आज मैं गाने को चेंज करूँ। आज क्योंकि आज अच्छा वाला दिन भी है और अच्छी सी शुरुआत भी की थी। तो चलिए हम मिलेंगे आपसे कल दोपहर पे सेम डे सेम प्लेस पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं पशुओं को।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो ना जाएं, और अकेले आप कभी हो भी नहीं सकते हैं क्योंकि मैं आ गई हूँ, यानी कि आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, जो कि आप सभी का बहुत ही ज़्यादा स्वागत करती है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम में, जो कि है कॉल ट्यून गोंडा, जहाँ आप कॉल करते हैं, अपनी फरमाइशें देते हैं और हम आपको आपकी फरमाइशों को सुनाते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हैं नागेश्वर जी, और नागेश्वर के बाद हैं गीता जी। तो गीता जी एंड नागेश्वर जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कॉल ट्यून गोंडा में। और इसी के साथ हमारे जो भी लिसनर हमें चैट बॉक्स से सुन रहे हैं उनका भी, फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं उनका भी, और रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है कॉल ट्यून गोंडा में। तो आइए अब चलते हैं सीधे और बढ़ते हैं हमारी पहली फरमाइश की तरफ, देखते हैं कि हमारी पहली फरमाइश किसकी है। तो हमारी पहली फरमाइश है मोहम्मद शाकिर जी की। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद शाकिर जी के सॉन्ग को, और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार। लेकिन एक बात और बता दूँ कि हमारे जो भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं और अपनी फरमाइश को हम तक पहुँचाना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं करना है, फटाफट से फ़ोन उठाना है, डायल करना है 6393316429 और अपनी फरमाइश को हम तक पहुँचा देना है। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद शाकिर जी के सॉन्ग को।

गीत ये गाते हो, बंसी बजाते हो, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश थी मोहम्मद शाकिर जी की। आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ जो कि है सुनील कुशवाहा जी की। तो आइए सुनते हैं सुनील जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आपसे इस फरमाइश के उस पार, सुनिए और इन्जॉय करिए।

मुसाफिर आने वाले नहीं फिर जाने वाले, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश थी सुनील कुशवाहा जी की। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है अनन्या मिश्रा जी की। तो आइए सुनते हैं अनन्या जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार।

0: बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि अनन्या मिश्रा जी की फरमाइश थी, पहले खुशियां देता है फिर खुशियों के जाल में खुद फंसाता है। तो आइए चलिए सुनते हैं अब अगला सॉन्ग जो कि फरमाइश है रईस जी की। तो आइए सुनते हैं रईस जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए सुने और इन्जॉय करें और बने रहें अपने पसंदीदा प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा में।
1: हाँ मैं देखता हूँ दादी, मेरे साथ आइए।
2: And for you, my lovely,

बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश थी रईस जी की। तो आइए बढ़ते हैं कभी खुशी कभी गम मूवी का बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है राजू टेलर जो कि हमें हथियागढ़ से सुनते हैं। तो आइए बढ़ते हैं राजू जी की फरमाइश की तरफ, सुनते हैं राजू जी का सॉन्ग और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए सुने और इंजॉय करें।

मेरी मोहब्बत हो। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है मिश्रा ऑप्टिकल। तो आइए सुनते हैं मिश्रा ऑप्टिकल जी के सॉन्ग को, और इसके बाद मिलती हूँ आपसे अगली फरमाइश के साथ। तब तक के लिए बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम क्वालिटी उन गुणा में, सुनिए बहुत ही प्यारे प्यारे सॉन्ग्स को और इन्जॉय करिए।

क्या तुम्हें पता है, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो की है ईशान जी की। तो आइए सुनते हैं ईशान जी के सॉन्ग को, इसके बाद मिलती हूँ आपसे अगली फरमाइश के साथ। तब तक के लिए सुने, इंजॉय करें और बने रहें अपने सबसे फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में, और मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ। और साथ ही साथ में एक बार और बता दूं लिसनर्स कि अगर आप भी, हमारे जो भी लिसनर हमें सुन रहे हैं वो भी कॉल करना चाहते हैं और अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए फटाफट से फ़ोन उठाइए, डायल करिए 6393316429 और अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचा दीजिए। आइए सुनते हैं ईशान जी के सॉन्ग को।

सजना आन मिलो सजना, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश थी ईशान जी की। तो आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है मोहम्मद मुशीद जी की। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद मुशीद जी के सॉन्ग को और उसके बाद मिलूंगी आपसे अगली फरमाइश के साथ। तब तक के लिए सुने और इंजॉय करें।

बिल्कुल, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े कर कर मुस्कुरा कर चल दिए। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश थी मोहम्मद मुर्शीद जी की। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है सुरेंद्र यादव जी की। तो आइए सुनते हैं सुरेंद्र जी के सॉन्ग को।

बहुत ही प्यारा सा भजन हे भोलेनाथ, शिव जी को याद करें और शिव की वंदना करें भोलेनाथ के लिए, बहुत ही प्यारा सा भजन। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि अगली फरमाइश है जवाहर लाल जी की। तो आइए सुनते हैं जवाहर जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे इस फरमाइश के उस पार।

जुदा अपने दिलवर से होने लगी है, मोहब्बत मोहब्बत रोने लगी है। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है मुमताज़ अंसारी जी की। तो आइए सुनते हैं मुमताज़ अंसारी जी के सॉन्ग को।

इश्क है क्या एक रोग बुरा, बहुत ही प्यारा सॉन्ग जो कि फरमाइश की थी मुमताज अंसारी जी ने। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उससे पहले चलते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे साथ हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जो कि जुड़े हुए हैं। तो यहाँ मुझे दिख रही है नीना जी, नीना जी के साथ में नागेश्वर जी, और नागेश्वर जी के साथ हैं के गुप्ता जी जो कि हमें तिरंगा कॉम्प्लेक्स से सुनते हैं। लिख रहे हैं आरजे अंशिका जी, नमस्ते। नमस्ते के जी, कैसे हैं आप? साथ में उन्होंने गुड आफ्टरनून भी लिखा है। और इसी के साथ सुरेंद्र यादव जी लिख रहे हैं थैंक यू अंशिका जी, यू वेलकम सुरेंद्र जी। और इसी के साथ नागेश्वर जी, अनोखी जी, अनोखी जी, नागेश्वर जी, फिर से अनोखी जी हमारे साथ हैं। और इसी के साथ हमारे सभी लिसनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। तो जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, उनका बहुत बहुत थैंक यू है। तो आइए अब चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है अगली फरमाइश हमारी रमेश कुमार जी की, जो कि हमें महाराष्ट्र से सुनते हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं रमेश कुमार जी के सॉन्ग को।

बिल्कुल आके इधर देखो ना चेहरा क्या देखते हो, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि अगली फरमाइश है दुर्गा जी की। सो दुर्गा जी के भाई का आज बर्थडे है और इसलिए उन्हें सुनना था बर्थडे सॉन्ग, तो आइए इन्जॉय करते हैं ये बहुत ही प्यारा सा बर्थडे सॉन्ग जो कि दुर्गा जी ने डेडिकेट किया है अपने भाई को।

आज तेरा हैप्पी बर्थडे, ये हैप्पी बर्थडे सॉन्ग जो कि फरमाइश थी दुर्गा जी की। अब आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है उस्मान जी की। तो आइए सुनते हैं उस्मान जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए सुने और इन्जॉय करें।

दिल करता है साजन ओ मेरे साजन, तू शायर है मेरी शायरी, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि था साजन मूवी का। तो आइए अब चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि अगली फरमाइश है धर्मेश त्रिपाठी जी की। तो आइए सुनते हैं धर्मेश जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए सुने, इंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा में।

0: वाह अवतार साहब वाह, मजा आ गया, बड़े गजब का शेर था।
1: लेकिन अवतार साहब एक बात समझ में नहीं आई, जिससे इज्जत शौबान पर यह बेवफाई भरा शेर।

तेरी बेवफाई का शिकवा करूं, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हम फरमाइश है नागेश्वर जी की। तो आइए सुनते हैं नागेश्वर जी के सॉन्ग को, और इसी के साथ चैट बॉक्स में मैं देख रही हूँ सनी पांडे जी आ गए हैं। सनी पांडे जी बहुत लिख रहे हैं, नाइस सॉन्ग, बहुत थैंक यू। और इसी के साथ तिरंगा कॉम्प्लेक्स से के जी, बहुत सारे आपने इमोजीज भेजे हैं, उसके लिए भी थैंक यू। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है नागेश्वर जी की।

बड़ी है प्यारी। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। ये फरमाइश थी नागेश्वर जी की। तो हमारी अगली फरमाइश है रितेश जी की, जो कि हमें मालवीय नगर से सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं रितेश जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार्ट के लिए। सुने, एंजॉय करें और बने रहें आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा में।

थैंक यू सो मच। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और साथ ही साथ में मौसम बहुत ही प्यारा है तो उसे एंजॉय करते रहिए, और मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में। स्टे ट्यून्ड।

0: जिंदगी का आनंद उठाना बहुत जरूरी है क्योंकि जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती है। जी हाँ, और फिलहाल वक्त हो चुका है 5 यानी कि समय हो चुका है आपके अपने शो खेत खलियान का। मैं हूँ आपकी आरजे आयुषी और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट इरफान सर, और साथ ही साथ जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम आते हैं लाइव लेके आपके साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और एक गेस्ट जो कि आपकी सारी समस्याओं का निवारण करते हैं। भाई आज इसी परंपरा को निभाते हुए एक गेस्ट हैं हमारे पास जिनका नाम है डॉक्टर कल्याण सिंह, जो कि शोध छात्र हैं बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा से। तो मैं उनका स्वागत करती हूँ हमारे शो में। सर आपका स्वागत है। जी सर, तो सर आप, मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में एक जो है इंट्रोडक्शन दे दें छोटा सा कि आप कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं और क्या समस्या लेकर आए हैं आज।
1: सभी किसान भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर कल्याण सिंह, शोध छात्र सब्जी विज्ञान विभाग, उद्यान महाविद्यालय बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा से आप सभी के समक्ष

0: किसानों के बड़े ही लोकप्रिय कार्यक्रम खेत खलिहान में समसामयिक विषय खरीफ मौसम में सब्जियों की खेती तथा उनका समसामयिक प्रबंधन विषय पर हम सभी किसान भाइयों से अपने महत्वपूर्ण सुझावों के साथ आज उपस्थित हूँ। अतः मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि आज के इस परिचर्चा में आप सभी अवश्य भाग लें और अपने महत्वपूर्ण सवालों को मेरे साथ साझा करते हुए इसके प्रभावी निराकरण एवं निदान हेतु आप अवश्य उपस्थित हों।
1: जी, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छे से अपने बारे में समझाया। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि देखिए, जितने भी किसान भाई सुन रहे हैं, इस बीच चल रही है खरीफ की, जो है हम लोग बुआई कर रहे हैं, और जो लोग सब्जियां बोते हैं, सब्जियां उगाते हैं, उनके लिए तो भैया आज का विषय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाला है, क्योंकि सर खरीफ के बारे में काफ़ी सारी जानकारी जो है हमें देने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कोई समस्या है तो वो भी आप सर से पूछ सकते हैं, ये आपका बोनस पॉइंट रहता है खेत खलिहान में हमेशा की तरह। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 6393316429, मैं फिर से रिपीट करती हूँ 6393316429। और उससे भी अच्छी बात यह है कि आप हमारे साथ चैट बॉक्स में भी कनेक्ट कर सकते हैं, और चैट बॉक्स में आ करके भी आप अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, और सर और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं का निवारण करने में। तो सर, सबसे पहले मैं तो आपसे यही पूछना चाहूँगी कि ये जो खरीफ का मौसम होता है, जो सब्जियाँ चल रही हैं, हम लोग उगा रहे हैं, उसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लगाई जाती हैं, जो प्रमुखता से?
0: सबसे जो महत्वपूर्ण बात खरीफ में है, सभी किसान भाई इससे भली बात अवगत हैं कि खरीफ सीजन में, खरीफ सीजन प्रायः जून से लेकर के और सितंबर तक का जो महीना है वो खरीफ के अंतर्गत लिया जाता है। और खरीफ के मौसम में चूँकि तापमान रबी के तापमान के अपेक्षा ज़्यादा रहता है
1: जी।
0: और साथ ही साथ बारिश एक बहुत बड़ी समस्या के साथ साथ किसानों के लिए गंभीर चुनौती भी होती है। अतः यह अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है कि किसान भाई खरीफ में कौन कौन सब्जियों का चुनाव करें, और चुनाव करने के साथ साथ उनको किस तकनीकी के साथ उगाएं, जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन के साथ साथ कम लागत में उनको अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि खरीफ मौसम में किसान भाई सब्जियों की कौन कौन सी खेती करें। तो अगर हम सब्जियों को मोटे तौर पर विभाजित करें तो पौधरोपण, अर्थात जिनके नर्सरी में जिनके बीज उगा करके जिनकी रोपाई की जाती है, उस वर्ग के अंतर्गत टमाटर, बैंगन
1: जी,
0: मिर्च तथा शिमला मिर्च की खेती प्रायः जो है, जिनकी पौध जून जुलाई के महीने में डालने के बाद जब पौध 30 से 35 दिन की हो जाती है तो उसको मुख्य खेत में हम उसका पौधारोपण करते हैं। दूसरी जो विभाजन है वह जिनका बीज के द्वारा प्रवर्धन होता है, उस वर्ग में प्रायः तीन सब्जियों के मुख्य समूह हैं। पहला, लता वर्गीय सब्जियां, जनरली जो कुकुरबिटेसी समूह से संबंध रखती हैं, अर्थात लौकी, करेला, तुरई, खीरा, ये कुकुरबिटेसी वर्ग की सब्जियां हैं जिनकी बुआई प्रायः, जिनका प्रवर्धन किसान भाई बीज को मुख्य खेत में बुआई करके आसानी से करते हैं। जो तीसरा प्रमुख विभाजन है वह जड़ वाली सब्जियां, प्रायः अगस्त का महीना चल रहा है, मूली और गाजर की जो अगेती किस्में हैं, जो उच्च तापमान के प्रति सहनशील भी हैं, उनकी खेती हम मध्य अगस्त से लास्ट अगस्त के बीच में बुआई करके अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और जो तीसरा मुख्य विभाजन है वह गोभी वर्गीय सब्जियां, जिनमें प्रमुख रूप से फूल गोभी, पत्ता गोभी और जो एक अन्य विभाजन है पत्ती वाली सब्जियां जिनमें चौलाई की खेती, अगेती खेती करके किसान भाई अधिक से अधिक आय जो है उसको बाजार में बेच करके प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, तो ये तो आपने बता दिया कि कौन कौन सी सब्जियां होती है, कैसे होती हैं, लेकिन सर मेरा भी एक पर्सनल डाउट था आपसे कि जैसे ये अभी फ़िलहाल आप कह रहे हैं खरीफ का मौसम चल रहा है, साथ ही साथ बरसात भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कहीं ये जो मिट्टी होती है इससे हमारे पौधे, हमारी जो सब्जियां होती हैं वो ख़राब ना हो जाए, तो आप मुझे बताइए कि अगर कोई इंसान खरीफ के जो है सब्जियां जो है उसे उगा रहा है तो उसे कौन कौन सी सावधानियां जो है वो बरतनी चाहिए और किन किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए।
0: बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जब भी किसान भाई खरीफ के मौसम में सब्जी की खेती करने जाएं,
1: जी,
0: उसके पहले कुछ विशेष सावधानियां तथा तकनीकी है जिनको अपना करके ही हम इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो सबसे पहला बिंदु है मृदा का चुनाव अर्थात भूमि का चुनाव। खरीफ के मौसम में प्रायः दोमट तथा बलुई दोमट जिसमें के जीवांश पदार्थ की प्रचुरता हो और साथ ही साथ जिसमें पानी लगने की संभावना बिल्कुल भी ना हो अर्थात जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो,
1: जी,
0: यानी कि हमें गहरे भूमि वाले खेतों का चुनाव नहीं करना है।
1: अच्छा,
0: प्रायः जमीन से 6-8 सेंटीमीटर ऊंची भूमि अर्थात 20-25 सेंटीमीटर जमीन से उठी हुई भूमि जिसमें कि पानी लगने की कोई संभावना न हो, जिसमें अगर बरसात होती भी है तो दो घंटे के बाद उसमें से जल का निकास आसानी से किया जा सके। प्रायः ऐसी भूमियां जो है वो बरसात के मौसम में सब्जियों की खेती के लिए उपयुक्त होती है।
1: अच्छा,
0: जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि बुआई की विधि, हम सब्जियों को किस तरीके से खरीफ के मौसम में बुआई करें जिससे कि रोग एवं कीटों का प्रकोप कम से कम हो और साथ ही साथ जो फल बने उनमें सड़न कम से कम हो जिससे कि किसानों को बाजार भाव, बाजार मूल्य ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि हम विधि क्या अपनाएं, किस तरीके से खेती करें जिससे कि बरसात के मौसम में बारिश होने के कारण किसानों को नुकसान न हो। अगर हम लता वर्गीय सब्जियां जैसे कि करेला, लौकी, नेनुआ, तुरई की अगर हम बात करें तो किसान भाई जमीन से 20-25 सेंटीमीटर जो ऊंची उठी जो खेत हों उनमें 2-2.5 मीटर की दूरी पे रो बना लें या नाली में अगर हम इसकी खेती करते हैं। जनरली हम बरसात के मौसम में रो को 2.5 मीटर की दूरी पे रो टू रो और उसमें 1.5 मीटर की दूरी पे पौध लगाएं और लगाने के बाद जब लताएं बढ़ने लगें तो उसमें हम वर्षा ऋतु में प्रायः मचान विधि का उपयोग करते हैं। किसान अपने खेतों में रस्सी की सहायता से बांस को 5-5 या 10-10 मीटर की दूरी पे गाड़ करके उसके ऊपर एक मचान नुमा संरचना बनाए।
1: अच्छा, जैसे हम घर में माताएं बहने बनाती हैं कपड़े फैलाने के।
0: जी
1: लिए।
0: जी
1: अच्छा,
0: जी अच्छा। जी जी
1: जी जी
0: तो मचान पे बनाने से सबसे जो मुख्य लाभ किसान को होगा कि लताएं जमीन के संपर्क में नहीं आएंगी और उन लताओं पे जो पुष्प तथा परागण की क्रिया के पश्चात जो फल बनेंगे वो भूमि के संपर्क में नहीं रहेंगे जिसके कारण वर्षाकालीन सब्जियों में जब फल भूमि के संपर्क में अधिक आर्द्रता के कारण उनके संपर्क में जब नहीं रहेंगे तो फलों में सड़न तथा उन पे रोग एवं कीटों का प्रकोप कम से कम होगा। अतः किसान भाई अगर लता वर्गीय सब्जियों की खेती अगर वर्षा कालीन या खरीफ सीजन में कर रहे हैं तो प्रायः मचान विधि का उपयोग अवश्य करें। वहीं अगर हम जड़ वाली सब्जियों जैसे कि अगेती मूली और अगेती अगर गाजर की फसल लेना चाह रहे हैं तो किसान भाई समतल भूमि में बीजों की बुआई न करते हुए प्रायः मेड़ों पर बुआई करें। 60 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ पे 1 से 1.5 सेंटीमीटर गहरे मूली तथा गाजर के बीजों को प्रायः 10 सेंटीमीटर जो पौध टू पौध की दूरी नियंत्रित करके बुआई करें, जिससे कि जो जड़ का विकास होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और वर्षा होने के कारण उसमें किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी।
1: जी सर, ये तो आपने बताया, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे पास एक कॉलर हैं जिनका बहुत मतलब इनका एक रिक्वेस्ट है जो आप प्लीज़ देखें और इसे देखिए आप सॉर्ट आउट प्लीज़ करने की कोशिश करिए। हेलो।
2: हेलो जी, नमस्ते।
1: जी नमस्कार इंद्रपाल जी, कहाँ से सुन रहे हैं आप हमें?
2: सीतापुर जिला।
1: अच्छा, सीतापुर में क्या समस्या थी आपकी, बताइए प्लीज।
2: लौकी लगाए था, उसमें लता बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और फली नहीं आती, मतलब लौकी नहीं लगती है, फूल भी आए।
0: जी जी किसान भाई, आपको आपका जो प्रश्न है वो अत्यंत ही प्रासंगिक है। जनरली जो लता वर्गीय सब्जियां होती हैं उनमें एक प्रमुख समस्या जो फलत की है वो एक प्रमुख समस्या है। जब बरसात के मौसम में, चूँकि हर 7 से 15 दिन के अंतराल पे या कभी कभी 2 से 3 दिन के अंतराल पे वो बारिश लगातार होती रहती है, जिसके कारण स्वाभाविक है कि लताएं जो है बढ़ती जाती हैं, उसमें पुष्प तो आते हैं लेकिन उसमें वो फल में परिवर्तित नहीं हो पाती हैं। प्रायः जो लौकी में जो फूल लग रहे होंगे उसमें जो फूल आने के बाद तुरंत फूल गिर जा रहे होंगे वो अधिकांशतः जो है वह नर पुष्प हैं।
2: अच्छा जी।
0: और जब नर और मादा जो पुष्पों का जो अनुपात है वो जब संतुलित होगा तभी जाकर के उसमें फलत आएगी। और इसके लिए जो हम आपको निदान भी बताएंगे, चूँकि जब थोड़ा बारिश कम होगी और तापमान थोड़ा साफ होगा, तापमान थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो निषेचन की क्रिया जो है अच्छे से होगी। अगर आपको फलत जो है ज़्यादा फूल गिर रहे हैं तो इसके लिए आप को मैं कुछ पादप वृद्धि नियामक जो दवाएं हैं जिसको आप प्रयोग करके उसका प्रभावी तरीके से निदान कर सकते हैं। अगर आपको मादा फूलों की संख्या बढ़ानी है तो उसमें आप एक प्लानोफिक्स दवा आती है जिसको चेरी टोमेटो चेरी प्लस के नाम से जानते हैं, उसकी 20 से 50 ppm 20 से 50 ppm अर्थात जो है 20 ppm की मात्रा जो है वो आप उपयोग करके और उस पर प्रभावी तरीके से निदान पा सकते हैं। अगर इसके अलावा आप इथरेल जो हार्मोन होता है, इथरेल हार्मोन्स जिसकी कि 100 ppm मात्रा का उपयोग करके आप मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ा करके इस पर प्रभावी तरीके से निदान पा सकते हैं। इसके लिए आप जो कृषक सेवा केंद्र होगा, आपके बगल का जो कृषक सेवा केंद्र होगा उससे ये दवाएं आपको आसानी से मिल जाएंगी और इसका प्रयोग करके आप इस पर प्रभावी तरीके से निजात पा सकते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
1: थैंक यू सो मच इंद्रपाल जी, आपने कॉल किया और साथ ही साथ आशा करती हूँ कि आपकी सारी समस्याएं दूर हो चुकी होंगी। और दोस्तों, जैसे ही अभी इंद्रपाल जी की समस्या का निवारण सर ने बताया है, वैसे आप भी कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सर यानी कि हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो आपके लिए मौका अच्छा है अपनी सारी समस्याओं का हल करने के लिए। जी हाँ, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक क्योंकि भाई बारिश बहुत अच्छी हो रही है, और चाय पीते हैं और चाय पीते पीते सुनते हैं कि आखिर ये खरीफ की खेती में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों का हम लोग बुआई को कैसे करें और उसका देखभाल कैसे करें। तब तक के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इन्जॉय करिए बहुत ही प्यारा सा गाना, गाने के बाद आएंगे और बात करेंगे इस बहुत ही अहम मुद्दे पर। आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर है हमारा 6393316429, मैं फिर से रिपीट करती हूँ 6393316429।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटीमेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब भाई। वो शो चल रहा है आपका खेल कल्याण, मैं हूँ आपकी आरजे आयुषी और आज हमारे साथ गेस्ट के रूप में है डॉक्टर कल्याण सिंह जो कि पीएचडी स्टूडेंट हैं बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा से। और मैं आपको बता दूँ कि आज ये बात कर रहे हैं खरीफ के मौसम में जो सब्जियाँ होती हैं खेती उसकी समस्याएँ और उसके निवारण के बारे में। अभी तक हमारे एक दो कॉलर हैं जिन्होंने ऐसा बताया है, कई समस्याओं का जिक्र भी किया है और सर ने उनकी समस्याओं का हल भी बताया है। भाई मौका अच्छा है, जल्दी से आइए हमारे चैट बॉक्स में, साथ ही साथ हमें कॉल करके भी आप समस्याएं अपनी बता सकते हैं। चलते हैं आज के शो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के लिए मैं बात करती हूँ हमारे को होस्ट से जिनका नाम है इरफान सर, क्योंकि उनके भी मन में कई सारे सवाल हैं जो कि उन्हें पूछने हैं, तो चलते हैं उनके पास।
1: जी तो हमने सर काफ़ी सवाल पूछ भी लिए और मैम ने भी पूछा। अब सर हम जानना चाहेंगे, आते हैं सर अगले सवाल पर कि लता वाली सब्जियाँ की खेती एवं उसका प्रमुख किस्में और उत्पादन जो विधि है वो क्या है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई बहनों के मन में सवाल होगा कि ये लता वाली सब्जियां हैं क्या और इसकी खेती जो है वो कैसे होती है, इसकी प्रमुख जो किस्में हैं उत्पादन है वो कैसे है सर। जी
2: सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि लता वर्गीय सब्जियों में प्रायः जो है आपका करेला है जिसकी अर्का बहार किस्म काफ़ी किसानों के लिए उपयुक्त है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो आता है लौकी, लौकी के लिए काशी आई बी आर की जो किस्म है, और दूसरी जो तरोई है उसके लिए काशी खुशी काशी दिव्या जो आई बी आर वाराणसी से जो विकसित प्रजाति हैं वो किसानों के लिए अत्यंत ही उपयुक्त हैं। वहीं अगर लता वर्गीय सब्जियों में हम बात करें कि परवल की कौन सी उन्नतशील किस्में हैं, तो अगर हम परवल की बात करें तो काशी अलंकार, स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण रेखा यह किस्में अत्यंत ही महत्वपूर्ण और उन्नतशील किस्में हैं जो किसानों के लिए काफ़ी उपयुक्त हैं। अब हम बात करते हैं कि उनका उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं।
0: जी सर बिल्कुल, आप हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि हमारे पास एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं उनका आप निवारण करिए। हेलो
3: हेलो दीदी नमस्ते।
0: जी सर अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम विजयपाल यादव, ललहुआ लखीमपुर खीरी से बोल रहा
0: हूँ।
3: सबसे पहले आपको इरफान सर जी को, डॉक्टर साहब को मेरा सादर नमस्ते।
1: नमस्ते, नमस्ते सर, नमस्ते। और आप लखीमपुर खीरी से हमारे बहुत नियमित श्रोता हैं सर, कि आप सुनते हैं खेत खलियान, आपको बहुत अच्छा लगता है, तो सर हम जाएंगे कि अपना सवाल हमारे डॉक्टर साहब तक बताइए।
3: सर जी अच्छा तो लगता है, लेकिन यदि हो सके तो इसको हफ्ते में दो दिन करवा दीजिए तो और अच्छा रहेगा।
1: जी बिल्कुल, आपके जो वो है आप चाह रहे हैं कि इसको दो दिन कर दिया जाए, लेकिन बिल्कुल ये भविष्य में दो दिन कर दिया जाएगा, लेकिन हम चाहेंगे कि सर आज के सवाल बता दीजिए आप।
3: जी मेरा सवाल ये तुरई के पेड़ हैं
1: जी,
3: पौधे मतलब हैं, और उनकी लंबाई बहुत बढ़ती जा रही बराबर में, लेकिन उसमें फूल आते हैं और वो फूल की वो जो होती है क्या नाम, वो गुंडी बोलते हैं इनको, वो भी आती है और उसमें फल बहुत कम निकल रहे हैं
1: जी।
3: तो इसके लिए जो है हमें कोई उपाय बताइए कि या तो उन पौधों को हटा दें दोबारा बोएं, और या कोई दवाई बताए जिससे मतलब उसका सुधार हो जाए।
1: बिल्कुल, तो सर इन्होंने जो बताया समस्या सर हम चाहेंगे सर
2: किसान भाई मैं फसल कौन सी है आपकी?
3: तरोई की डॉक्टर साहब, तरोई।
2: जी जी, जनरली जो तरोई है वो कुकरबिटेसी ग्रुप में आती है, जिसमें कि आपका लौकी से लेकर के और तरोई बहुत सारी सब्जियां हैं। उसमें एक प्रमुख जो आपका जो प्रश्न है कि उसमें लता बढ़ती जा रही है परंतु उसमें फलत नहीं आ रही है।
3: फलत नहीं आ रही सर।
2: जनरली सामान्यतः होता क्या है कि उसमें नर और मादा फूल दोनों का जब अनुपात जब संतुलित होगा तो ही परागकण और निषेचन की क्रिया के पश्चात जो है फल बनेंगे। तो जो फूल गिर जा रहे होंगे वो प्रायः जो है नर पौधे हैं, नर पुष्प हैं, और जब नर पुष्पों की संख्या ज़्यादा है और मादा पुष्पों की संख्या कम है, इसी कारण जो है उनमें संतुलित निषेचन की क्रिया नहीं हो पा रही। यह प्रायः दो तरीके से नियंत्रित होती है, एक तो तापमान और मौसम, इस समय बारिश ज़्यादा हो रही है और तापमान जो है वो थोड़ा सा कम है, तो ज्यों ही तापमान बढ़ेगा तो उसमें जब नर और मादा पुष्पों का अनुपात जब संतुलित होगा तो उसमें निषेचन की क्रिया होगी और फलत होगा। अगर आप इसको पादप वृद्धि नियामक के द्वारा इसे इसका निदान चाहते हैं तो इथरेल हार्मोन या प्लानोफिक्स, जिसको कि हम किसान भाई प्राय चेरी प्लस के नाम से जानते हैं, उसकी 20 से 50 पीपीएम मात्रा चेरी प्लस की, या इथरेल हार्मोन जिसकी कि 100 से 150 पीपीएम जो आपके किसान सेवा केंद्र पे आसानी से उपलब्ध होगा, उसको लेकर के और उसका घोल बना करके आप अगर उसका छिड़काव करते हैं तो उसमें मादा और नर पुष्पों का जो अनुपात है वो संतुलित होगा और फलत ज्यादा से ज्यादा आएगी। अगर ज्यादा बढ़ रही है, अगर मात्रा चेरी प्लस की 20 से 50 पीपीएम का पार्ट पर मिलियन, यानी कि प्रति एमएल प्रति लीटर, अगर तो इसके इस हिसाब से जो है उसका प्रयोग करें। अगर लताएं अत्यधिक बढ़ रही हैं तो जो लताओं का अग्र सिरा है, प्रायः 3G कटिंग एक तकनीकी है जो कुकरबिटेसी में यूज होता है कि लताओं का अग्र भाग थोड़ा सा हम कट कर देते हैं, लेकिन अगर आपने बड़े पैमाने पे खेती की है तो यह उतना संभव नहीं है कि हर लताओं को आप जो है उसका अग्र सिरा कट कर सकें। तो उसके लिए आप पादप वृद्धि नियामक जो हमने दवाएं बताया है उसको आप उपयोग करके इससे निजात पा सकते हैं।
1: तो ये हमारे साथ थे विजय पाल यादव जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर हम आते हैं अगले सवाल पर। हम लोग बातचीत कर रहे थे सर लता वाली सब्जियों की खेती और उसकी जो प्रमुख किस्में हैं क्या क्या हैं और उत्पादन जो है वो कैसे लें सर, चाहेंगे सर।
2: हम प्रमुख किस्मों की बात हम परवल पे थे कि स्वर्ण अलौकिक, स्वर्ण रेखा
1: जी
2: जो किस्में हैं वो अत्यंत ही उन्नतशील तथा उपयोगी किस्में हैं। अब हम बात करते हैं उत्पादन विधि की। सामान्यतः करेला, कद्दू, लौकी तथा नेनुआ, जिसको कि हम तरोई बोलते हैं, वो उसका प्रवर्धन प्रायः बीज के द्वारा होता है, जिसको कि हम जमीन से उठी हुई 20 से 25 सेंटीमीटर जो समतल भूमि से जो जमीन उठी है उस पे प्रायः हम क्यारियों में 1.5 से 2 मीटर की रो से रो तथा 1 से 1.5 मीटर के पौध से पौध की दूरी को मेंटेन करके उसकी हम बुआई प्रायः थालों में, एक थाले में प्रायः 2 बीज हम किसान भाई अवश्य लगाएं, और जब पौध स्वस्थ हो जाए, तैयार हो जाए, तो उसका विरलीकरण करके उस एक पौधे को निकाल दें जिससे कि स्वस्थ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित हो सकें
1: जी। तो ये सर ये परवल की जो किस्म बताए हैं सर, अगर मान लीजिए कोई किसान भाई बहन लगाना चाहते हैं तो ये जो बीज है ये कहाँ से प्राप्त करें सर?
2: परवल की खेती के लिए जो एक जो उन्नतशील बीजों का जो स्रोत है
1: जी,
2: आप इसके लिए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी
1: जी,
2: जहाँ से कि काशी अलंकार, काशी सुफला, काशी अमूल्या ये प्रजाति जो है आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या, जहाँ से कि प्रजातियाँ विकसित हैं, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई उन्नतशील कृषक जो इसकी खेती काफ़ी वर्षों से और उन्नतशील तरीके से प्राप्त करना कर रहे हैं, उनके माध्यम से भी आप इसको इसकी कटिंग प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करने के बाद इसकी वैज्ञानिक तरीके से खेती कर सकते हैं
1: जी। ये तो सर हुई कि मतलब जैसे वहाँ पे मिलेगा, क्या सर ये कृषि विज्ञान केंद्र पे भी मिल सकता है, मतलब ऐसे भी?
2: हाँ,
1: क्योंकि नज़दीक
2: आप कृषि विज्ञान केंद्र के जो प्रधान वैज्ञानिक हैं
1: जी,
2: उनसे आप संपर्क करके उनके माध्यम से भी आप अगर सरकार के योजना अंतर्गत परवल की खेती पे अनुदान होगा वो आप किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह सरकार की योजना अंतर्गत इस पे अनुदान नहीं भी होगा तो जो कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे सम्मानित जो वैज्ञानिक हैं उनके स्रोतों के माध्यम से भी यह बीज आपको आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं
1: जी। सर एक सवाल मेरा मतलब पर्सनल है सर, और हमारे किसान भाई बहनों के भी मन में सवाल होगा सर, जैसे बरसात का मौसम चल रहा है और जल भराव है सर, तो बहुत सारे किसान भाई बहन के मन में सवाल होगा कि जैसे लताएदार जो सब्जियां हैं वो लगाना चाह रहे हैं, तो उस समय अगर लगा रहे हैं तो वो किन किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि सर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जल भराव इस समय बरसात का सीज़न चल रहा है तो कुछ जगहों पर जल भराव हो जाता है, या ज़मीन जो है कहीं ऊंची है या कहीं खाली है, तो मतलब कैसे उसका जो है वो बीज जो है बोएं और कैसे लगाएं सर?
2: आपका यह प्रश्न अत्यंत ही प्रासंगिक है। जिन क्षेत्रों में जहाँ पे मुख्य खेत में पानी की समस्या है, उसके लिए किसान भाई प्रायः जो है पॉली बैग्स जो आपके 15x10 सेंटीमीटर के आपके बाज़ार में उपलब्ध होते हैं, उसमें किसान भाई क्या करें कि एक मात्रा आपके मिट्टी की, एक मात्रा बालू की और एक मात्रा जो है सड़ी गोबर की खाद को मिला करके उस पॉली बैग्स को भर दें, और भरने के बाद उसमें लता वर्गीय सब्जियों की 2 बीज जो है उसके अंदर बो करके उसको किसी लो टनल पॉली हाउस या किसी नियंत्रित वातावरण में जहाँ की वर्षा और आंधी की कोई समस्या ना हो वहाँ पे उसको रख दें, और जब उसका अंकुरण हो जाए, अंकुरण होने के पश्चात 7 से 8 दिन में प्रायः अंकुरण बीजों का हो जाता है, उसके बाद जब थोड़ा सा पौधे 2 to 4 लीफ के यानी 2 से 4 पत्तियाँ जब उसमें उगाएं, तो उसको ले जा करके मुख्य खेत में गड्ढे बना करके जो 60 सेंटीमीटर के गोलाकार जो गड्ढे होते हैं उसमें उनका आसानी से रोपण कर सकते हैं। ये तो एक ये विधि है। दूसरी विधि, किसान प्रायः किसान भाई जो थोड़ा उन्नतशील किसान है वो प्रो ट्रे में कोकोपीट वर्मिकुलाइट और परलाइट जो यानी एक भाग कोकोपीट, एक भाग वर्मिकुलाइट और एक भाग परलाइट, तीनों की जो एक मात्रा है उसको फिलअप करके और उसमें प्रो ट्रे में उनकी बीजों को की बुआई करें, 3 से 4 दिन के पश्चात उनका अंकुरण आसानी से हो जाएगा। फिर उसको ले जा करके जहाँ जल भराव की समस्या है उस पे जब पानी का ठहराव और निकास जब हो जाए तो वहाँ पे मुख्य जो थाले में ले जा करके उनका पौधारोपण करके इस समस्या से किसान भाई निजात पा सकते हैं।
1: जी, अब सर जानना चाहेंगे सर अगले सवाल पर आते हैं कि सर ये जड़ वाली जो सब्जियों की खेती है इसकी प्रमुख जो किस्में हैं, इसकी जो प्रमुख वैरायटियां हैं वो कौन कौन सी है, उसका जो प्रबंधन है वो कैसे हमारे किसान भाई बहन करें।
2: जो अगस्त का महीना चल रहा है इसमें अगर हम जड़ वाली सब्जियों जो अगेती किस्में हैं जैसे कि मूली और गाजर।
1: जी,
2: मूली की पूसा चेत की जो कि अगस्त से लेकर के जिसकी बुआई आप अप्रैल तक कर सकते हैं वो अगस्त में बुआई करने के लिए उपयुक्त है। वहीं गाजर की हम बात करें तो पूसा वृष्टि जो अधिक तापमान पे भी जिसका कि जड़ का उत्पादन अच्छा होता है वह इन दोनों किस्मों की बुआई जो है इस समय अगस्त 15 अगस्त के बाद की जा सकती है। हाँ, किसान भाई ये अवश्य ध्यान रखें कि इनकी बुआई मेड़ों पे करें, जो 60 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ बना करके उस पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और 1 से 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पर गाजर तथा मूली के बीजों की बुआई करें, जिससे कि अंकुरण भी अच्छा होगा तथा जड़ का उत्पादन भी काफ़ी अच्छी तरीके से होगा और कोई समस्या किसान भाई को नहीं होगी।
1: जी सर, इसमें जो हम लोग जड़ वाली बात कर रहे हैं सर, ये तो मतलब हो गई अगेती, अब सर हम जानना चाहेंगे सर ये पछेती भी कुछ वैरायटियां हैं जो बाद में लगाने वाली भी।
2: हाँ, जनरली जो पछेती किस्में हैं जिसमें कि मूली और गाजर की जो पछेती किस्में हैं इनकी बुआई प्रायः जो है आप सितंबर या अक्टूबर के महीने में कर सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान समय चल रहा है जिसमें हम खरीफ की बात कर रहे हैं इसमें प्रायः हम अगेती किस्मों को ही जो है किसानों को लगाने के लिए अनुशंसा करते हैं।
1: जी मतलब जी एक कॉल आ गई है हमारे साथ में सर।
4: हेलो
5: हेलो,
6: हाँ जी मैम अपना नाम बताएं।
5: जी सर, मेरा नाम रीता गुप्ता है।
6: जी
5: मैं जिला लखीमपुर के रहने वाले हैं, ललहवा की निवासी हूँ।
6: जी जी, आपका सवाल क्या है?
5: हमारा सवाल यह है कि मैंने भिंडी की फसल बोई है तो उसमें कीड़ा गिर लग जाते हैं सर।
6: मतलब कहने का मतलब आपकी जो भिंडी की फसल है उसमें कीड़ा लग जाता है।
5: जी हाँ
6: जी, और कोई सवाल?
5: और दूसरा का यही पहले भिंडी का समस्या हल हो।
6: जी
2: आपकी आपकी जो भिंडी की फसल है वो कितने दिन की हो गई है अभी?
5: ये भिंडी की फसल ये 1 महीने की हो गई है,
2: 30 से 35 दिन की।
5: हाँ जी,
2: जो कीड़े हैं वो अभी उसमें भिंडी में तो फूल और फल भी नहीं आ रहे होंगे तो
5: नहीं। हाँ,
2: जी
5: हाँ बताइए,
2: क्या भिंडी में पुष्प आ रहे हैं?
5: जी हाँ, फूल और बतिया भी आ रही हैं।
2: जी जी, जनरली जो सामान्यतः जब फसल 30 से 45 दिन की होती है तो उसमें प्रायः 2 तरीके के कीड़े लगते हैं। एक तो आपका पत्तियों को जो चूसने वाले कीड़े होते हैं जो प्रायः पत्तियों पे पत्तियों से हरा जो पदार्थ होता है उसको क्रूच करके और जो पत्तियों के रस को चूसते हैं, तो एक तो वह कीट होते हैं और दूसरा जो है वो पुष्प तथा फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए आप मेटास डाइमेथोएट 30 EC जिसको कि किसान रोगार के नाम से जानते हैं, आप इसको नोट कर लें, रोगार या इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो डाइमेथोएट 30 EC, इसकी 1 से 1.5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में, एक से डेढ़ ml जो मात्रा है प्रति लीटर पानी में,
5: लीटर पानी में,
2: और आप फसल पे 15 दिन के अंतराल पे 2 छिड़काव कर दें जिससे कि आप प्रभावी तरीके से इसका निजात हो जाएगा।
5: फिर कीड़ा तो नहीं लगेगा बाद में?
2: नहीं नहीं नहीं लगेंगे, 15 दिन के अंतराल पे एक बार और छिड़काव आप कर दीजिए।
5: 15 दिन के बाद फिर से दूसरे छिड़काव कर दें?
2: जी जी जी। और कोई सवाल है आपका?
5: अभी तो नहीं है
2: जी। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ में थी रीता जी लखीमपुर खीरी से। अब सर हम लोग बातचीत कर रहे थे जड़ वाली जो सब्जियों की जो पछेती जो वैरायटियां हैं वो सर लगाने का जो इसका सर समय क्या है, मतलब सर जानना
4: जो पछेती किस्में हैं उनको लगाने का जो समय है वो लास्ट सितंबर और आपका पूरा अक्टूबर, इसमें आप आसानी से पछेती किस्मों को जो है लगा सकते हैं। अक्टूबर से लेकर के आप नवंबर तक भी पछेती किस्मों को लगा सकते हैं।
2: सर इसमें प्रबंधन जो है, प्रबंधन की बात आती है तो सर प्रबंधन कैसे करें सर इसमें?
4: वर्षाकालीन में जो प्रबंधन की सबसे मुख्य समस्या होती है कि जड़ वाली सब्जियों की बुआई समतल भूमि में ना करें
2: जी।
4: हमेशा किसान भाई यह ध्यान रखें कि वर्षा में जब भी हम जड़ वाली सब्जियों को मेड़ पे उगाएं, क्योंकि मेड़ पे उगाने से जब भी वर्षा होगी तो जल भराव की समस्या नहीं होगी और आसानी से जो वर्षा का जल होगा उसको हम रिज के माध्यम से उसका जल निकास अच्छे तरीके से करेंगे जिससे कि हमारे जड़ों पे उसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा
2: जी। मतलब कहने का मतलब है कि समतल जो जगह है उस पर ना लगाएं, मतलब
4: जी
2: समतल जगह पे, क्योंकि पानी जब है उसका ठहराव ज़्यादा हो जाता है तो उस समय क्या है सूखने का बहुत ज़्यादा। अब सर हम आते हैं सर अगले सवाल पे, जानना चाहेंगे सर ये पत्तियां वाली सब्जियां जो हैं कौन कौन सी हैं जिसमें जिनकी खेती खरीफ के मौसम में कैसे की जा सकती है, क्योंकि कुछ जो होती हैं वो सर पत्तियों वाली सब्जियां होती हैं तो उनका जो खेती है वो कैसे की जाए, उसका प्रबंधन जो है वो हमारे किसान भाई बहन कैसे करें?
4: पत्ती वाली जो सब्जियां हैं उसमें मुख्य तौर पे पत्ता गोभी
2: जी,
4: चौलाई
2: जी,
4: और सलाद पत्ता जिसको कि हम लेट्यूस के नाम से जानते हैं। इस समय अगस्त का जो महीना है वो पत्ता गोभी की नर्सरी के लिए उपयुक्त समय है
2: जी।
4: पूसा ड्रमहेड, पूसा अर्ली ड्रमहेड जैसी प्रजातियां जो है किसान भाई इसको अपने नर्सरी में अगस्त के महीने में नर्सरी डाल करके इसके जो पौध जो 25 से 30 दिन पे इनकी जो पौध तैयार होगी वो जिनका पौधा पौधरोपण जो है हम सितंबर के माह में करेंगे, इसके लिए सामान्यतः 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होगी और इसकी नर्सरी के लिए 1 मीटर चौड़ी और आवश्यकता अनुसार 3 से 4 मीटर लंबाई का और 6 से 8 सेंटीमीटर जमीन से उठी हुई भूमि का चुनाव करेंगे जिसमें कि 5 से 10 सेंटीमीटर समानांतर रो बना करके 10 सेंटीमीटर के पौध टू पौध की दूरी पे 1 से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी बीज की बुआई करके एक भाग मिट्टी और एक भाग सड़ी गोबर की खाद को मिला करके हम सीड के ऊपर हल्की परत जो है वो बिछाएंगे जिससे कि और नमी की मात्रा का हमेशा ध्यान रखेंगे ताकि बीजों का अंकुरण 3 से 4 दिन में आसानी से हो सके। और ज्यों ही बीज का अंकुरण हो जाता है तो फफूंदी नाशक दवा ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम, किसान भाई इसको अवश्य याद रखें, कार्बेंडाजिम की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें जिससे कि नर्सरी में डैम्पिंग ऑफ एक बहुत बड़ी समस्या होती है पौध गलन, ज्यों ही हमारा पौध अंकुरण होता है उसकी जड़ें सड़ने लगती हैं और पूरा जो नर्सरी होती है उसका पौध जो है हमारा समाप्त हो जाता है। तो इसका विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है कि ज्यों ही हमारे बीज का अंकुरण 4 से 5 दिन का हो तो ये दवाओं का छिड़काव करें, जिससे कि पौध गलन की समस्या से किसान भाई पूरी तरीके से निजात पा सकें।
1: जी, अब सर इसमें जो पत्तियों वाली सब्जियां हैं सर, तो इसमें कोई वैरायटी भी है? कौन कौन सी वैरायटी? जैसे सर इस समय कुछ किसान भाई बहन जो है वो गोभी की जो नर्सरी सर वो डाल दिए हैं, और भी जो है नर्सरी सर पड़ चुकी है, तो इसमें अगेती और पछेती इसमें भी कुछ वैरायटियां हैं सर?
4: जी जी, अगर हम फूल गोभी की अगेती कर खेती कर रहे हैं तो अर्ली मेघना या अर्ली कुंवारी जो कि उच्च तापमान पर भी अच्छा उत्पादन देती हैं, तो अर्ली मेघना और अर्ली कुंवारी यह फूल गोभी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण किस्म है जिसकी किसान भाई बुआई करके अधिक से अधिक उत्पादन पा सकते हैं। वहीं पत्ता गोभी की हम बात करें तो पूसा ड्रमहेड की जो प्रजाति है वो ब्लैक लेग रोग से प्रतिरोधी है, इसकी किसान भाई चुनाव करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी सर, ये तो आपने सही चीज़ें बताई और मुझे लग रहा है कि जितने भी किसान भाई हमें सुन रहे हैं उनकी आधी ज़्यादा समस्या दूर हो गई है। लेकिन मैं अब बात करने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ की जो हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा उगाई जाती है, जो है परवर। अब देखिए, परवर की भी कुछ जो खेती होती है, मुझे लग रहा है कि जो मेरा मानना है कि इसकी खेती थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। तो इसमें क्या क्या जो है समस्याएं होती हैं जो किसान को फेस करनी पड़ती है, और क्या इसके समाधान है वो आप हमें बताएं, और कैसे मतलब क्या कैसी ज़मीन चाहिए, सॉइल कैसी होनी चाहिए खरीफ खेती के लिए, वो आप प्लीज़ हमें बताएं।
4: परवल की खेती के लिए 4 से 5 प्रमुख सावधानियां हैं। सबसे पहले तो परवल की खेती वो दोमट और बलुई दोमट भूमि का चुनाव करें जिसमें कि पानी लगने की कोई समस्या ना हो, और किसान भाई भारी मृदा का चुनाव कदापि न करें जिसमें कि क्ले की मात्रा ज़्यादा हो, यानी जिसमें चिपचिपापन का गुण ज़्यादा पाया जाता हो, जिसको कि किसान भाई अपने भाषा में मटियार भूमि बोलते हैं, जिसको कि इंग्लिश में क्ले सॉइल बोलते हैं। उसमें सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि नमी सूखने की क्षमता ज़्यादा होती है, वहीं जब सूखा पड़ता है तो मटियार भूमि में दरारें पड़ जाती हैं। तो ऐसी भूमि परवल की खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। हमेशा बलुई दोमट और दोमट भूमि का चुनाव करें जिसमें कि ऑर्गेनिक यानी जीवांश पदार्थ की संतुलित मात्रा हो, पहली किसान भाई इसका अवश्य ध्यान रखें। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि इसका प्रवर्धन, इसको कैसे लगाते हैं, तो प्रायः किसान भाई कटिंग जो एक वन ईयर जो एक साल पुरानी जो पौध होती है उसकी लताओं को 6 से 8 सेंटीमीटर जो लताएं होती हैं उसको 8 अंक के शेप में उसको हम बांध करके उसकी उसको 8 के शेप में हम घुमा करके और जो उसकी कटिंग होती है, कटिंग लगाने से पहले किसान भाई जो प्रमुख ध्यान दें कि उसमें जो रूट्स आती हैं, जो कटिंग जब हम भूमि में उसको लगाते हैं एक निश्चित दूरी पे, तो उसमें जो जड़ें निकलती हैं उन जड़ें निकलने में एक प्रमुख समस्या आती है कि कुछ कटिंग लगाने के बाद ही कटिंग वो सूख जाती है, उसमें जड़ें नहीं आती हैं। इसके लिए एक रूट प्रमोटिंग हार्मोन जो जड़ वृद्धि नियामक जिसको बोलते हैं, उसमें IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड उसकी आप किसान सेवा केंद्र से लेकर के और उसमें उस लता को डुबो करके उसकी बुआई करने से उसमें जड़ें यथाशीघ्र आएंगी और उनका फूटन तथा जमाव भी अच्छे तरीके से होगा।
0: जी,
4: अब एक जो प्रमुख समस्या है कि परवल वह एक लिंगी पौधा है, अर्थात जिसमें नर अलग और मादा अलग होते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
4: इसलिए परवल की खेती में हमेशा किसान भाई यह ध्यान रखें कि अगर हम परवल की खेती करने जा रहे हैं तो 10 लाइन मादा की और 1 लाइन जो है नर की, अर्थात जो मादा और नर का जो अनुपात होगा खेतों में वो 10 संबंधी 1 का होगा। अगर यह अनुपात हम संतुलित तौर पे खेत में नहीं रखेंगे तो निषेचन की क्रिया प्रभावित होगी और उसमें फलत नहीं आएगी। अतः किसान भाई जब भी इसको खेती करने के बारे में सोचें तो जिस भी प्रमाणिक संस्थान से हम उसकी कटिंग खरीद रहे हैं तो उसमें नर और मादा पौधे का विशेष ध्यान रखें, और खेत में लगाते समय उनका अनुपात 10 संबंधे वन का रखें, जिससे कि उनमें निषेचन की क्रिया प्रभावी तरीके से होगी और उसमें फलत भी अच्छी आएगी और उत्पादन भी अच्छा होगा।
0: जी सर, तो ये मुझे लग रहा है कि खेती, लौकी, भिंडी सबके बारे में हमने बात कर ली, लेकिन अब हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या जो सभी किसान जो खरीफ की जो सब्जियां हैं उसे उगा रहे हैं उनको सभी को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा समय भी होने वाला है। तो समय पूरा होने से पहले एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी कि जो खरीफ का मौसम में जो सब्जियाँ लगती हैं उसमें जो रोग लग जाते हैं और जो कीड़े लग जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे पहचानें और उसका निवारण कैसे करें?
4: जो खरीफ मौसम में प्रायः आर्द्रता की अधिकता के कारण, जिसमें नमी ज़्यादा होती है, बारिश होने के कारण लगातार नमी खेतों में बनी रहती है, तो उसमें अगर हम प्रमुख रोग और कीटों की बात करें, पहले हम प्रमुख रोगों की बात करेंगे, तो जो सब्जियों में हम पहले नर्सरी से चलते हैं, नर्सरी में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो पौध गलन की होती है। आमतौर पर राइजोक्टोनिया, जो पीथियम और राइजोक्टोनिया जो स्पीसीज के आप फफूदी होते हैं, इनके द्वारा पौधों को नुकसान पहुंचाया जाता है। इसमें एक क्या हो, इसमें जो प्रमुख लक्षण होते हैं कि एक तो सीड का जर्मिनेशन होता ही नहीं है, सीड भूमि के अंदर ही सड़ जाता है, या अगर अंकुरण हो भी गया तो उसकी जो पौध होती है वो भूमि के ऊपर आकर के भूमि के ऊपरी सिरे से ही उसमें पौध गलन होने लगता है, अर्थात जो उसका थीन जो स्टेम होता है वो जमीन के सतह से ही सड़ने लगता है।
0: जी सर बिल्कुल। अब इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे पास एक कॉलर है जिनका नाम है देवी
7: प्रसाद जी, जो एक समस्या लेकर आए हैं, तो उनसे बात करेंगे। हेलो
8: जी,
7: देवी प्रसाद जी,
8: सर जी से यही कहना है
7: जी।
8: जैसे कहने का मतलब है, सिर्फ परवर के बारे में बताएं तो ऐसा सब सब्जियों में ऐसा होना चाहिए, एक किसान पूछ रहे थे तो मैंने सोचा कॉल करके हम समस्या का समाधान निकाल ही लें।
7: क्या होना चाहिए
8: कि जैसे परवर के बारे में, नर्माता के बारे में बताया, ऐसे हर सब्जी में होता है कि सिर्फ परवर के बारे में होता है?
2: नहीं नहीं, किसान भाई आपका यह प्रश्न अत्यंत ही प्रासंगिक है, क्योंकि परवल और कुंदरू जो हमारे किसान भाई, कुंदरू और परवल या डायोसियस वेजिटेबल क्रॉप है, यानी कि इसमें नर और मादा जो पुष्प का विकास होता है वो अलग अलग पौधे पे होता है। बाकी जो हमारी लौकी, करेला, नेनुआ, तुरई, ये सब जो सब्जियां हैं, यह द्विलिंगी होती है, अर्थात इनके एक ही पौधे के कुछ भाग पे नर पुष्प और कुछ भाग पे जो है मादा पुष्प, यानी कि जो शुरू के नोड्स होते हैं उन पे नर पौधे और जो बाद के नोड्स आते हैं उन पे मादा पौधे। तो यह सब्जियों का जो संरचना है, जो उनका प्रजनन जो प्रकृति है, उस आधार पे इनका अलग अलग वर्गीकरण है। यह हर सब्जियों में नहीं होता है, यह प्रायः आपका कुंदरू और परवल में यह स्थिति पाई जाती है।
7: थैंक यू सो मच देवी प्रसाद जी, आपने कॉल किया और समस्या खुद भी समझा, और आपके पास जो लोग हैं उनकी समस्याओं को आपने उसका सॉल्व करवाया, तो थैंक यू सो मच
0: जी। सर आप बता रहे थे कीड़े के बारे में कि कैसे कीड़ा जो लग जाता है।
4: हाँ, हमने पौध गलन के बारे में बताया कि जो ही हम बीज की बुआई भूमि में करते हैं, उससे जो अंकुरण होने के पश्चात जब पौधे में एक से दो पत्तियां आई रहती हैं तो जमीन के सिरे से ही उसमें सड़न उत्पन्न होने लगती है, जिसको हम पौध गलन के नाम से जानते हैं, या प्रायः जिनकी नर्सरी, जिन जिन सब्जियों की नर्सरी लगाई जाती है उसमें यह प्रमुख रोग होता है। इसके लिए किसान भाई एक तो बुआई के पहले, जिसको मृदा सोलराइजेशन, सौरीकरण कहते हैं, गर्मियों के दिनों में प्रायः जब तापमान 35 से 40 सेंटीमीटर होता है तो भूमि जहाँ पे हम नर्सरी जुलाई में डालने वाले हैं उस पे हम उसकी जुताई करके और सफ़ेद पॉलीथीन ऊपर से हम उस पे जो पारदर्शी हो उसको बिछा करके चारों तरफ से उसको मिट्टी से ढक देते हैं, जिससे कि जब ज्यों ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो अंदर का तापमान वो 40 से 45 सेंटीग्रेड हो जाता है और उसमें जितने भी हमारे कीटाणु और जो फफूंदीनाशक के अवशेष होते हैं वह अत्यधिक तापमान के कारण मर जाते हैं, जिससे कि हमारी मृदा जो है सौरीकरण हो जाती है और उसमें किसी भी तरीके के रोग और कीटों के जो अवशेष होते हैं वो नहीं रहते हैं। तो किसान भाई इस विधि को अपनाएं। दूसरी, जो बीजों का शोधन अवश्य करें, इसके लिए ट्राइकोडर्मा जो 6 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के दर से बीज शोधन करके भूमि में लगाएं, और भूमि का शोधन भी अवश्य करें, इसके लिए 25 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, और प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 100 ग्राम खली का प्रयोग नर्सरी डालने के पहले अगर नर्सरी की भूमि में किसान भाई करते हैं तो इस तरीके के रोग से हम प्रभावी तरीके से निजात पा सकते हैं। अगर मुख्य नर्सरी में यह रोग लगता है तो कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम यानी 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो प्रभावी तरीके से हम इसमें निजात पा सकते हैं।
0: जी, तो मुझे लग रहा है कि हमने अधिकांश विषयों को हम लोग ने कवर कर लिया है। आपके एंड से अगर आप कुछ बताना चाहें खरीफ के फसलों के बारे में तो आप बता सकते हैं।
4: किसानों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अब कृषि केवल जीवन निर्वाह का साधन न हो करके एक रोजगार पाने और रोजगार देने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। यह हम तभी कर सकते हैं जब हम कृषि को अत्याधुनिक तरीके से हम अपने खेतों पे अपनाएंगे। इसके लिए किसान भाई लो टनल, जिसको पाली हाउस स्ट्रक्चर बोलते हैं, उस विधि का छोटे पैमाने पे ही प्रयोग जरूर करें, जिसमें कि आप सीजन की जो सब्जियां हैं, जो बेमौसम सब्जियां हैं, जिनकी हम वर्ष भर खेती करके जिस समय आप सीजन में जब मुख्य बाजार में जिन सब्जियों की अनुपलब्धता रहती है उनकी हम पाली हाउस में खेती करके और उनको अधिक मुनाफे पर बाजार में बेच करके हम अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों से मेरा यही आग्रह है कि आप परंपरागत तरीके से जो खेती करते चले आ रहे हैं उससे हमको थोड़ा सा विकसित कृषि के तरफ चलना है, और उसमें जो नई नई तकनीकी है उनका कृषि विज्ञान केंद्रों से संपर्क करके प्रशिक्षण प्राप्त करके और जो उन्नतशील प्रजातियां तथा उन्नतशील तकनीकें हैं उसको भी अपने किसानों के खेत पे अपनाना है, और अपना करके ही हम उसकी आर्थिक समृद्धि को बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे शो पर आए, दूसरी बार आपका आना हुआ और मुझे लग रहा है कि आप यहाँ आते हैं और लोगों को बहुत पसंद आता है। आप हर एक एक सीज़न की सब्जियों के बारे में लाते हैं, बताते हैं उनके बारे में, हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज भी आप हमें देते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े।
4: थैंक यू मैम।
0: थैंक यू। तो दोस्तों, देखा आपने, जैसा कि आज आपने सुना कि सर हमारे साथ जुड़े हैं एक्सपर्ट, जो कि आज बात कर रहे थे खरीफ सीज़न के बारे में, जिसमें हम कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं, क्या जो परवर के बारे में बताया, लौकी, कद्दू और कई सारी पत्तेदार सब्जियों के बारे में भी बताया, आपकी समस्याओं का निवारण भी किया। ऐसी ही चीज़ों को और सुनने के लिए आपको सुनना पड़ेगा रेडियो ज्ञानस्ती 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और सबसे बड़ी बात ये है किसानों की धड़कन, क्योंकि भाई किसानों के लिए एक शो आता है यानी कि बृहस्पतिवार को 5 बजे से 5 से 6 के बीच, जिसमें हम आपसे बात करवाते हैं, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कराते हैं हमारे एक्सपर्ट से, जिसमें आपकी समस्याओं को सुना जाता है और समझा जाता है और उसका निवारण भी किया जाता है। लेते हैं आपसे विदा, समय हमें इजाजत दे रहा है, मिलेंगे अगले बृहस्पतिवार को लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छे और जानकार एक्सपर्ट को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुखी रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे बीना के साथ।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण, याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान, टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
5: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
9: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
7: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
7: आज ही कॉल करें 92 60 981 976 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
9: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
7: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
10: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज।

प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335484। अब बारी है आपकी।

0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9286 9976 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
8: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
9: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
8: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
10: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
11: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
6: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
11: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
6: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
12: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
13: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
12: सच में क्या खास है वहाँ?
13: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
12: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
13: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
12: और फोटोग्राफी वगैरह?
13: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
12: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
13: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
12: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

रउआ सभी के दिल से प्यार भरा नमस्कार और स्वागत बा सबके रेडियो यांसली 89.6 एफएम मा इहा गोंडा शहर के धड़कन। सब संगी साथी लोग जे भी जहाँ जहाँ से सुनत हैं, आप सबन का आरजे बीना की ओर से स्वागत है आपके रउआ लोगन के कार्यक्रम मा गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला मा, जहाँ ना सिर्फ बात होती बल्कि बातन के संगे संगीत के भी बौछार होती, वो आपके पसंद के भोजपुरिया संगीत, आपके लोकगीत, आपके गांव घड़ी के बाद वो सब चीज़ जिक्रे बारे में आप सब जाने के लिए बिल्कुल परेशान रहा थो। तो संझा के समय हो चुका है और आज शहर में हल्की फुल्की बारिश से शुरुआत भई शाम के, जिसे कहते हैं सवेरे के शुरुआत भी बारिश से भय आज, और आज संझा के शुरुआत भी बारिश से भय। तो उम्मीद ये है कि आज बारिश जो है हमें सब का और रवा लोगन के भी आज दिल खुश करे वाली है, और किसान लोगन के मतलब किसानन के लिए जो न सावन के महीना है वो उम्मीद के महीना होत है, कहे कि यहीं में धान के रोपाई होत है, और धान के रोपाई करे के बाद, और जैसन कि आप सबन का पता है हमारे सबके यूपी बिहार में धान के खेती बड़े जोरों शोरों से होती है, और एक बारे में आप सबका अपने कार्यक्रम में भी पता हुई कि कैसे धान के खेती कैसे बेहतरीन ढंग से की जात है। फिलहाल दिन भर के भाग दौड़ काम काज और थकान के बाद अब आ गईल बा आराम करे के समय, आपनपन और भोजपुरी माटी के मिठास से भरल एगो खूबसूरत सांझ साझा करे के लिए। आज ऐसन कार्यक्रम में ऐसन मीठा मीठा गीत बजी जो न अपने गांव घर के कहानी, खेत किसानी के बात, लोक संस्कृति और ना जाने कैसे कैसे आपका मिलवाए दी। हाँ, जे हमरे श्रोताजन शहर में रहत हैं या जे ऐसन जगह रहत हैं जहाँ उन्हें अपने मतलब कहते हैं ना अपने जो समाज के अपने संस्कृति से मेल जोल, अब संस्कृति एक जैसन तो हो नहीं सकत। अब अगर हम कही कि हमें जाए के कोई कहे कि हम तमिलनाडु में रह लागे और हुआ अपन संस्कृति ढूंढी तो मिलम मुश्किल है, हुआ के संस्कृति अलग है और हियाँ के अलग। तो अपने संस्कृति का जाने के लिए अपने भाषा अपने लोगन के बीच में अपने भाषा के गीत संगीत सुने के बाद माँ ही लागत है अपनापन। तो आप सबन से पहले तो यह कहा कि फटाफट से तैयार हो जाए आज के संझा में। आप लोगन से बहुत सारी बात हुई, ना ही सिर्फ संगीत के संगे बल्कि आप सुबन के आपके घर के बीच के बात निकालब जोने के जाने के आरजे बीना के बिल्कुल हक है। तो देखत देखत शाम के कुछ मिनट बीत चुका है और बहुत सारा मिनट बाकी है जो उनकी आप संगन के साथ साझा करे के, पर हम एक चीज़ ही नहीं जाने पाई थी कि हम सब जब कोई अच्छी चीज़ करे होत है या कुछ ऐसा करे होते है जो उनकी मतलब हमारे सबके रोजमर्रा की जिंदगी में तो ना ही रोज होत लेकिन कबो कबो होत है, तो वो चीज़ का हम सब बहुत मुश्किल वाला दिन समझ लीन जाते हैं कि यार ये काम तो ना हो पाई, आज नहीं कल, आज नहीं कल हुआ करते। तो आप सबन से जाना चाहिए थे कि अगर आपसे कोई कहे कि आज के तारीख जोन है ये दुनिया के मतलब ख़त्म होने वाली तारीख है, तब तो भाई जल्दी जल्दी जोन जोन अधूरा काम है उसका करे के फटाफट से समय निकल आई ना। तो आपसे ये कही थे कि मतलब जोन काम ऐसा है जिसका करे बहुत जरूरी है और लागत है कि हाँ भले उमन आपका फ़ायदा ना हुए लेकिन ओका जल्दी से कर लिया, ख़ास तौर पे वो काम जोने से कि वो दूसरे का मतलब सहयोग मिल सकत है। एक साथ ये बता दी कि आज है 6 अगस्त और आज पूरी दुनिया यानी कि हिरोशिमा दिवस मनावत है, और आप सबन का बताई कि ये वो काला दिन है जिक्रे बारे में हम काल भी हल्का फुल्का आप सबका बताए ना, लेकिन आप सबका ये बताई कि हिरोशिमा में जो धमाका भवा रहा वो ना सिर्फ धमाका रहा बल्कि मानव समाज के जो तरक्की है उकरे ऊपर एगो ग्रहण बना रहा। तो आप सुबह बताई हैं कि ऐसन तरक्की ऐसन मतलब हमारे सबके उपलब्धि के का फायदा जब आज हम एक दूसरे का परेशान करे के लिए परेशान हैं।
साल 1945 के जापान के शहर हिरोशिमा, जहां दुनिया का पहली बार परमाणु बम गिरावा गया रहा। कुछ ही पल में पूरा शहर तबाह हो गया रहा, हजारों मने के जान चली गई रही और कई सालन तक लोगन के ऊपर असर दिखा रहा वो धमाके का। वो परमाणु धमाका नहीं रहा, वो एक दर्द के कहानी रही, जो जब भी महसूस होती तो सिर्फ दर्द होता। ये घटना पूरे दुनिया का सिखाए इसकी युद्ध और हिंसा कब्बो भी किसी के लिए भी कोई अच्छा संदेश लेके नहीं आवत, परिणाम हमेशा दर्दनाक रहा थे। इसीलिए हर साल हिरोशिमा दिवस शांति, इंसानियत और आपसी समझ के संदेश दिया था, पर लोगन का समझ में कहाँ आवत है। कितने दिन से अभी जो कहा था ना कि रशिया और इनके सबके युद्ध जो चल थे, ई का संदेश दिए थे, ई दिए थे कि आप कोई भी दिवस मनाओ, हमें सबका कोई फर्क नहीं पड़े वाला, हम सब तो इंसानी जान का एकदम खिलौना समझब। तो आज से ई संकल्प लिया जाए कि जीवन में भाईचारा और सम्मान बढ़ाए के ऊपर जोर दी जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक चींटी पे भी अगर पैर पड़ जाए तो उसका अफसोस करते हैं, हम सब कैसे इंसानी जीवन का नुकसान पहुँचाया जा सकते हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ पे ध्यान दिए और समझें। और भोजपुरिया शाम है और अगर भोजपुरिया गीत ना बजे तो का बजे। तो चलिए सुनी ये कुछ पुराना बॉलीवुड सॉन्ग जो उनकी भोजपुरी भाषा में रिकॉर्ड भय है, लेकिन हाँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आज के शाम, ई सुरीली शाम जो उनकी आप सबका याद दिलाए दी आपके बचपन।

ये ना सिर्फ संझा के गुहार है, ना सिर्फ गीतन के पुकार है, बल्कि आप सभी का ये बतावे के भी समय है कि ईशाम आपका आपके गांव के गलियन की याद दिलाए वाली है। और आपसे कुछ समय आपके मांगे वाली है। तो जोने दिशा में भी बटोहिया अभी जात है, चाहे अपने घर के, चाहे अपने नौकरी से, अपने अधूरेपन के और पर वो अधूरापन पूरा करे के लिए आरजे बीना आपके संगे हैं। बिल्कुल आपका अपने से दूर ना करे के तैयारी है, अपने संग ईशाम मां जोड़े के तैयारी है। ता चली अपने माटी से आज पूछा जाए कि का माटी हमें सबका याद करत है कि नहीं। अगर करत है तो फिर आपका अपने देश का है नहीं बलोतिन। तो चली आज आपके शहर से, आपके गांव से, आपके पूरा से कुछ बताई दी, आपके शहर के गलियन से कुछ निकाल के ले आई दी, जेका सुने के बाद माँ आप कही हैं कि आहा आज तो आरजे बीना कुछ अलगे बताए वाली हैं। तो चली आपका बताई कि आज हमारे गोंडा शहर के भाषा यानी कि अवधी भाषा के बारे में आपका कुछ बतावा चाहिए था। अवधी केवल भाषा नहीं है, ये जीवित पुरात्विक धरोहर है। जैसे हम किला और महल बचावत है, वैसे अपन भाषा बचावे के जिम्मेदारी भी हमारे सबके है। कहत है कि जोन समाज अपन भाषा खो देत है वो धीरे धीरे इतिहास के पन्ना से अपने आप का भी मिटाए दिया थे। अब इमा कोई भी दुई राय नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए आपसे आपके शहर के कुछ बखान करी, आपका आपके शहर के बारे में कुछ बताई, जेका जाने के बाद माँ आपका लागी कि आज आरजे बीना तो कुछ नवे बताए वाली हैं।

तो एक घाट के बारे में आज आपसे चर्चा करे है, जो ने घाट के नाम सुने के बाद में आपके चेहरे पर हंसी आ जी। घाट के बाद बात आपसे कहे करे वाली है, कहे कि हमारे सबके यूपी माँ घाट बनावे के बड़ा ट्रेंड है। मतलब कहा जाए तो हर गांव में एक घाट होते है, जहाँ औरत और आदमी लोग समय समय पर तीज त्यौहार पर नहाए के और पूजा पाठ करे के चलन होते है। तो एक घाट है जेकर नाम है मेहरारून घाट या मेहरारून के घाट। अब आप सोचे थी हैं कि आए कौन घाट के बारे में आज आरजे बीना बताए वाली हैं। तो बिल्कुल, अगर आपका पता है तो हमें जरा चैट रूम में जरूर बताई हैं, और जेका ना ही पता है ते हमें सुन के जान जाइए हैं कि मेहरारून के जो घाट है वो कहाँ है। और एकरे बारे में जो इतिहास है वो का है। तो चलिए, आपका बिल्कुल भी उतावला ना करब, एगो बड़ा प्रसिद्ध कहानी है मेहरारून घाट के, जिका जाने के लिए हम चाहिए थे कि हमारे चैट रूम में ना सिर्फ एक दुई बल्कि कम से कम हमार पूरा जोन लिसनर समाज है वो आए जाए। शुभ संध्या शास्त्री जी, सविता शास्त्री जी, शुभ संध्या रवि गोंडा जी। तो अगर आप सभी का जाने के कि मेहरारून के घाट कौन है, वैसे तो दिमाग में आएगी जहाँ मेहरारू लोग जात हुई है वो मेहरारू, वैसे हम सबके यूपी में औरत का मेहरारू भी कहा जाता है। तो फिलहाल बिल्कुल परेशान ना हुई है, ये गाना पहले सुनी है फिर बताई है। एक पहले जो गाना आप सुने वो रहा अलका आवाज याग्निक की आवाज में, ये वाला गाना सुनी है और फिर बताई है ये गाना कैसन है। कहे कि ये गाना भी बड़ा ही खूबसूरत गाना है, जगह सुने के बाद माँ आप सबके दिल कही आह हा, जे जिकरा के लगे ई मेर के प्लेलिस्ट हो तेरे पास तो समझ लो दुनिया का खजाना है। तो चलिए, आपका सुनाए दी एगो प्यारा सा गीत, जिका सुने के बाद माँ आपके मन कही ओ हो का बात है।

तो चलिए आज आपका बताई आपका ऊ घाट के बारे में, जगह सब कहत है मेहरारून के घाट। तो फिलहाल आप सबका आज उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ले चलब, जहाँ खैराबाद भी जगह कहा जात है। वही एगो ताल पड़त है जेकर नाम है भुइया ताल। भुइया ताल के अगर इतिहास जाना जाए तो उ तीर्थ के जोन है एगो बढ़िया स्थान है, लेकिन ओका लोग जाना तनाई है। तो देखा जाए तो नज़रअंदाज है लोगन के पहुंच से दूर है, जैसे छोटे मोटे मंदिर के भी जानकारी लोगन का रहा थी। वैसे हम हर जगह का सिद्ध मानित है, अगर किसी के साथ कोनो भी इतिहास से जुड़ा पन्ना है तो वो अपने आप में महान है। कहा थे कि वो 1000 वर्ष प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है और कहा थे कि वहाँ लोगन के मन्नत बहुत पूरी होती। अभी तो हमें ज़्यादा नहीं जानकारी है, लेकिन सब कहा थे कि ई जोन है जोन आंकड़ा बतावा जात है जैसे कि 1000 वर्ष पुराना, इहू से ज़्यादा पुराना है। काहे कि केहू का कोनो दस्तावेज नहीं मिला है और वहाँ के जोन मतलब बनावट है वो भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। कहा थे कि कटरा संगत के संस्थापक महर्षि गुरु दयाल दास के आगमन भुइया मंदिर के प्रमाण है कि जोन महर्षि गुरु दयाल रहे वो भुइया मंदिर या भुइया ताल में आए रहे और उनके आधार पर उन्हीं एगो जो उन कहते ना ताल के स्थापना और वहाँ उनके काफ़ी समय बीता। अब खैराबाद के जो उन भुइया ताली है या भुइया ताल जोन है उमा एक बार विक्रमादित्य पहुँचा रहे। वह अपने घर के मेहरारू लोगन के लिए देखिन कि वहाँ नहाए के व्यवस्था नहीं है, तो वह कहा कहीं वो ताल का थोड़ा मॉडिफाई कराए दिन, मतलब कि औरतन के नहाए के लिए ऐसा व्यवस्था कहीं कि ऐसे कमरा जैसन रही और पानी उमा से ताली के अंदर से जाई। तब से उही मतलब भुइया ताल के एगो आधा जो हिस्सा है ओका कहा जाएला मेहरारून के ताल और ऊपर सिद्ध होएगा अपने ही नाम से। और देखा जाए तो ये बड़ा भव्य ताल है, चारों तरफ से बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं और ना सिर्फ हुआ के जो उन कहा था बनावट अच्छी है बल्कि हुआ के जल जोन है वो हमेशा भरा रहा था। और कहा थे कि वो तीर्थ में जोड़ा जाए वाला एगो स्थान रहा, लेकिन लोगन का ओकर जानकारी नहीं है। कहा थे कि ओमन जो जल आवत है वो गंगा जल है और गंगा के निहाई थी वो अंदर कोनो स्रोत से निकला है। अब कहाँ से निकला है एकर बाहर कोई जानकारी क्यों का नहीं पता है, लेकिन हाँ लोगन के यह मान्यता है। और हर अमावस और पूर्णमासा का हुआं लोग स्नान करे जाते हैं। कहा थे कि जितना भी शारीरिक रोग और जितना भी पाप है सब हुआं धुल जाता है। फिलहाल पाप धुले या ना धुले शरीर जरूर धुल जाता है। और कहा थे कि वहाँ कार्तिक मास में 1 माह तक पूरा मतलब साधु संतन के कल्पवास रहते हैं। दूर दूर से संत महात्मा हुआ रहे आवत हैं और कहा थे कि वही भुइया ताल के किनारे से लोगन बहुत सारा मतलब जोन है मूर्ति उर्ति भी पाई है। ऐसे ये प्रमाण है कि और भी ज़्यादा साल पुराना है। तो अगर जाने के सोचें तो हमें सबका कुछ ऐसी भी बहुत सारी जानकारी है जोने के बारे में हमें सबका पता नहीं। ऐसे आपके और हमारे शहर के पास यानी कि गोंडा शहर से कुछ दूर पर अयोध्या अयोध्या के कुछ आगे सूर्यकुंड है, जहाँ पे अगर आप जाए के नहाएं तो आपका लागे कि आप तो बड़े बहुत बड़े तीर्थ स्थल पे आए हैं और उसका बनावट भी और उसका जो उनका आता है ना सौंदर्यकरण बहुत खूबसूरत अंदाज में भय है। और आजकल माँ तो हुआ जो LED रामायण प्ले होता है तो ओका देखे के बाद में लागत है कि विकास जोन है वो आसपास भय है, लेकिन हम सबका दिखते नहीं है। विकास के बाद तो ना करी, लेकिन हाँ मानव के जोन कहा था ना कि पहुँच है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच गई है और कितना इतिहास के जोन पन्ना है ओका साफ कह दी से ये तो कहते बना थे। तो चली हम तो आप सबसे यह कहा कि
आप सब भी तैयार रहें आज के जो फरमाइश वाली शाम है। और अगर आपके घर के पास भी ऐसा कोई प्रसिद्ध ताल है तो का जरूर हमें सबका बताई है, और अगर ना बताई है तो हमारे पास तो और भी बहुत सारी जानकारी है जो ना आप सबका दिया चाहिए था। तो अगर आपका कभी भी मौका मिले यानी कि सीतापुर जाए के, तो ये मेहरारून के ताल में जरूर जाए के स्नान करिए। और जैसे कि आपका जानकारी भी हो गई कि वहाँ का जो जल है बड़ा शुद्ध है, तो बिल्कुल ट्राई करिए। तो चलिए जल्दी से एगो गीत सुनाई और आप सबके फरमाइश की भी तैयारी शुरू हो चुकी है, तो बिल्कुल फरमाइश के संगे संग भोजपुरी तड़का भी बीच में लगी। लेकिन अगर आपका भी जानकारी है कोनो ऐसा प्रसिद्ध ताल के बारे में या ऐसे तलिया के बारे में या इसी कोई प्रसिद्ध जगह जो उनके आपके क्षेत्र में है और उनका कोई भी नहीं जानत है, तो बिल्कुल अगर गोंडा शहरवासी सुनत हैं या इधर जोन क्षेत्र के, तो सूर्यकुंड तो बिल्कुल जाएं, क्योंकि ये बहुत नज़दीक है। सीतापुर तो थोड़ा दूर पड़े गोंडा शहर से, बाकी सीतापुर के नज़दीक वाले लोग जरूर ही कुंड में जाएं और देखें कि इतिहास कितना कुछ हमें सबका देश है, बस हम सब ढूंढ नहीं पाए थे। तो चलिए एगो गीत और सुना जाए और ये संझा के जो समय है एक और साकार किया जाए।

0: कुछ भी बोलेगा हम सुनते रहेंगे।
1: बाबा तुमने बचपन से कभी हमसे ऊंचा आवाज में बात नहीं किया है। देखो महारानी को देखो।

तो चलिए अब सबसे पहली फरमाइश सुनने के बारी है, रवि गोंडा के आ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, अगर आपका जानकारी अच्छी लगी। और हम तो बिल्कुल चाहिए कि कुछ सुने के बाद में अगर नया पता चले तब तो मज़ा है, शाम के मतलब एंटरटेनमेंट के साथ अगर आपका कुछ सीखे का मिले तो ये तो बड़ी अच्छी बात हुई जाए। तो शुभ संध्या अनिल जी, का हाल है? और रवि लिखते हैं कि आवाज़ में मिश्री घुलल बा, बोली माँ जादुई मिठास, आर जे बीना के हर अंदाज माँ बा कुछ अलबेला खास, रेडियो जा आन करत ही चेहरे पर मुस्कान तैर जाला, रउआ एक बार हंस दी ता उदास दिल विखिल जाला, गूंजे जब राउर सुर ता निखर जाला हर जमाना, बीना जी के मीठ बोली पर भइल बा पूरा गोंडा दीवाना। अब ऐसन तारीफ करी है ना तो हमार धड़कन कही कि भाई सचमा हमें तो कुछ ज़्यादा ही उड़ावा जाते। फिलहाल हम उड़ब ना, आपका आपके पसंद के गाना सुनाए थे, जल्दी सुनी और रोवा लोगन के जिका जिका अपन फरमाइश भोजपुरी वाली सुने को, और हफ्ता भर भाई इंतजार करते हैं तो अपन गाना सुन लिए जल्दी से।

तो भाई गाड़ी चाहिए कि ना चाहिए, फिलहाल दहेज तो बिल्कुल अब गुनाह है, लेकिन गाना मंगावत है बिल्कुल हीरो बन के, तो देखा का होते उनके संगे। तो चलिए एगो गीत सुना जाए का दे।

भोजपुरी गाना का फरमाइश करें, कहे कि कुड़िया शहर दिया, ये गाना जो है ये पंजाबी भाषा में है, तो अगर आपके दिमाग में कोई भी भोजपुरी अच्छा सा गाना है तो बिल्कुल फरमाइश कर सकते हैं। तो चलिए अगला गीत सुना जाए सविता जी के फरमाइश पे, सविता शास्त्री।

अभी गाना सुने के बाद बारी है दुर्गा जी के फरमाइश के गाना सुने के। दुर्गा जी सुना चाहती अपने भाई के जन्मदिन के गीत। तो फिलहाल जन्मदिन के संगे भाई का अगर बतावा जाए कि भाई कितना खास है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। तो चलिए बताइए अपने अपने भाई का, और दुर्गा जी भी बताएंगे कि अपने भाई का कि वह कितना खास है उनके लिए। तो सुनिए गाना भाई हमर कोहिनूर बाड़े।

अगला गाना है पलकन के छाँव में, और ये गाना के फरमाइश है हमारे लिसनर पूजा के, और पूजा सुना चाहती गाना पलकन के छाँव। तो अभी भी आपके पास समय है, जे जे आपन फरमाइश अभी ना किए है तो बिल्कुल कह सकत है। तो चलिए सुना जाए ये गाना। शुभ संध्या दीपक जी, नागेश्वर शुभ संध्या, सबन के स्वागत है आपके भोजपुरिया छाँव।

इतना प्यारा गीत सुने के बाद अब अगला गीत सुने के बारी है। अमन के फरमाइश के गाना है मोहब्बत हसावे मोहब्बत रुलावे, और फरमाइश है ये अमन पांडे के।

अगला गाना है, बहुत ही प्यारा सा गीत सुने के बाद अगला गाना सुने के बारी है, और ये गाना है भोजपुरी सनी पांडे के। कार्तिक कश्यप आप बिल्कुल बना रही हैं, आपके हिंदी गाना है तो आपके गाना बाद में फरमाइश करिए, है कि हिंदी गाना अभी 45 के बाद लिया जाए, तो सनी के फरमाइश के गाना है।

अनोखी धर्मेश शुभ संध्या, शुभ संध्या अनोखी, कार्तिक, सोनिया, सबन के स्वागत है। और अभिराज पांडे एनसीआर दिल्ली से आपके भी रोज स्वागत है। सुरेंद्र जी सखी रे वर पा गई नी, ये गाना अभी अभी बज चुका है, तो आपसे निवेदन करब कि आप एक दूसरा गाना का फरमाइश कर दिए जो ने क्यों गाना बज जाए।

तो शुभ संध्या। आज के सबसे पहली फरमाइश यानी कि 7:45 पे महेंद्र दीपेंद्र राजस्थान से। तो गाना है आज का सबसे पहला, चूड़ी मजा न देगी कंगन मजा न देगा। सावन में तो भाई चूड़ियां पहन के, हरे रंग की चूड़ियां तो सबको मजा देती हैं।

तो चलिए अगले गाने की ओर रुख करते हैं। अगला गाना है आसिफ का। आसिफ सुनना चाहते हैं बहुत ही प्यारा सा गाना अरिजीत की आवाज़ में, अपना बना ले पिया। और इसके बाद हम लोग सुनेंगे पूजा का गाना पल पल दिल के पास। तो आसिफ और पूजा की फरमाइश का गाना लगातार सुनिए आरजे बीना के साथ।

0: पूजा की फरमाइश के बाद अब आपको आना है हम लोग की अगली फरमाइश के पास। और अगली फरमाइश किसकी है, चलिए देखते हैं। हमारे चैट रूम में गाना है, हाय हाय हाय ये मजबूरी ओ हो, हो, हो, हो, हो, हो। तो फरमाइश है ये आशु जी की।
1: आइकन को

लोग सुन रहे हैं सृष्टि की फरमाइश का गाना, ये इश्क सूफियाना। और इसके बाद हम लोग सुनेंगे गाना सुनील मझारा की फरमाइश पे। गाना है क्या बात है, तंदूरी नाइट्स, हाय हाय हाय क्या कहने भाई, काश वो जमाना फिर से आ जाए तंदूरी नाइट्स वाला। लेट्स एंजॉय द गाना इश्क सूफियाना। वैसे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं आपका इश्क किसके लिए सूफियाना है। वैसे मेरा इश्क तो आप लोग के लिए सूफियाना है, जैसे ही आप लोग आते हैं देखते ही मेरा दिल आहा सूफी गीत गाने लगता है।

अभी आप सुनिए सुनील की फरमाइश का गाना, गाना है तंदूरी नाइट। किसी को याद है ये गाना कैसा था? तंदूरी नाइट, तंदूरी नाइट, याद है कि नहीं भाई? हम लोग बचपन में इस गाने को गा के कूदते थे बाकायदा, मतलब रुकते नहीं थे। वैसे आपने भी कूदा है तो बिल्कुल आपकी प्रेजेंस मुझे चैट रूम में दिखनी चाहिए।

रमेश रेशमिया की आवाज़ सुनने के बाद अपने आप शरीर में करंट सा लग जाता है, और ये करंट वाला गाना सुनने के बाद अगला गाना सुनने की तैयारी। गाना है हाँ हाँ, मतलब सच्ची बताऊँ तो आजकल लोग एक दूसरे को डेडिकेट

दिया है। बिल्कुल सही, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है और मेरे साथ भी कभी ना कभी हुआ ही होगा, लेकिन इतना भी नहीं। लेकिन हाँ, गाना सुनो तो लगता है कि यार मेरे साथ भी मेरे दोस्त ने ऐसा किया था। अगर आपको भी लगता है तो जल्दी से दोस्त लिख दीजिए अपने चैट रूम में।

क्या बात है, भावनाएं कितनी सही प्रकट हो रही हैं। फिलहाल इन भावनाओं को जानने के बाद मुझे लगता है अगली भावनाएं जान लेनी चाहिए। आज पुराने पुराने गाने की फरमाइश हो रही है। खाई थी खसम एक रात सनम, क्या राइम बना रहे, मतलब कभी कितना गजब लिखता है गानों को, मजा आ जाता है मुझे तो। फिलहाल कोई बात नहीं, कभी के जो कहते हैं ना कि भावनाओं को हम लोग समझेंगे, लेकिन तब तक के लिए इस गाने को सुनते हैं जो फरमाइश है हमारे लिसनर राजेश सिंह जी मालवीय नगर से हमें सुन रहे हैं। बहुत प्यारा।

बड़ी सी मतलब क्या कहते हैं इमोशनल सी फरमाइश जिसको सुन के दिल भावुक हो गया। और अब अगली फरमाइश है हमारे लिसनर अनुष्का की। अनुष्का सुनना चाहती हैं गाना तेरे नाम हमने किया है। ओए होए होए वो गाना जो कि मतलब हम लोग के बचपन को एकदम मतलब एनर्जेटिक बनाता था और बहुत सारे लोगों के लिए शायद जवानी को एनर्जेटिक बनाने वाला रहा होगा, लेकिन मेरे तो बचपन में ये गाना आया था। लेकिन सच बताऊँ इस गाने को सुन के शायद ही कोई गली कूचा बचा हो जहाँ ये गाना बजाना हो। तेरे नाम हमने किया है। अच्छा, इस फिल्म के आने के बाद निर्जरा जो नाम है बड़ा कॉमन हुआ था, लड़कियाँ अपना नाम निर्जला निर्जरा रखती थी। और सलमान का हेयर स्टाइल तो सबसे गंदा मुझे लगा था वैसे, लेकिन लोग कॉपी करते थे और उस टाइम पे ये एकदम बढ़िया वाला लगता था। तेरे नाम हेयर स्टाइल फिल्म से ज़्यादा हेयर स्टाइल प्रसिद्ध हुआ था। आपको क्या लगता है? फिलहाल मेरा नाम आपके नाम आवाज़ किस

क्या बात है। अब सुनते हैं गाना अगला जो है और ज़्यादा बेकरार करने वाला। फरमाइश है धर्मेंद्र मोहन जी की और गाना सुनना चाहते हैं बेकरार में, बेकरार दिल। क्यों भाई बेकरार शब्द सुन के आपको क्या फीलिंग आती है? बचपन में मैं बेकरार शब्द को बेकार बोलती थी, मतलब मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी बड़े शब्दों को प्रोनाउंस करने में जब मैं 2-3 साल की थी, ऐसा मुझे लोग बताते हैं। अब आप सोच होंगे ना कि आज भी ना कि याददाश्त बढ़ी थी, ऐसे मुझे लोग बताते हैं, तो बेकरार जैसे बोलो ना तैसे बेकार वाली फीलिंग आ जाती है। एनीवे चलिए बेकरार दिल है तो हम लोग भी बेकरार हो जाते हैं। और बड़ा बढ़िया सा गाना है, हद कर दिया आपने फिल्म का। वैसे हद कर दिया आपने फिल्म जितनी अच्छी नहीं थी उसके गाने उतने ही ज़्यादा अच्छे थे। चलिए सुनते हैं ये फरमाइश हमारे लिसनर जिनका नाम है धर्मेंद्र।

बड़ा दर्द है भाई कवि के मन में, और इतना ज़्यादा परेशान, मतलब इतना कितना, मतलब क्या कहने, गाने तो ऐसे लिखते हैं आप लोग ना कि मतलब लिसनर्स क्या हूँ, कभी लोग ऐसे गाने लिख देते हैं ना कि सुन के भी ना इंसान कहे कि यार ये वाला हाल तो एकदम सेम टू सेम मेरा वाला है। तो चलिए अगला गाना सुनने की बारी है। अभिराज पांडे NCR दिल्ली से सुनना चाहते हैं सावन में।

0: अभी आप सुन रहे हैं धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश, और सुनते रहिए और फरमाइश करते
1: मजा आ गया, बड़े गजब का शेर था।
2: लेकिन अवतार साहब एक बात समझ में नहीं आई, जिससे इज्जत शोहरत और किस्मत सबने ही वफादारी की हो, उसकी जबान पर यह बेवफाई भरा शेर।
1: किसने की है बेवफाई आपसे, जरा हमें भी तो बताएं।

बताया कि बेकरार का मतलब होता है हलचल, मिलन की कोशिश हो रही है। ओह क्या बेचैनी, बिल्कुल सही है, तो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं प्रोनंसिएशन की, जैसे कहते हैं ना उच्चारण, तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो बड़े शब्दों को बोल नहीं पाते, तो बेकरार शब्द को बोलने की जगह बेकार बोल देते हैं। तो फिलहाल बेकरार मतलब किसी चीज़ के लिए उत्सुकता, या कह सकते हैं क्यूरोसिटी, जिज्ञासा कि बस वो चीज़ मिल जाए। थैंक यू सो मच बताने के लिए, और ऐसे ही आप लोग इंटरेक्ट करते रहिए, बातें करते रहिए, जिससे मज़ा आता रहे। हम लोग सुन रहे हैं अभी गाना, किसकी फरमाइश है भाई, हमारे एक लिसनर है बड़े प्यारे से, क्या नाम है इनका, लेकिन आप लोग इतने सैड सैड गाने फरमाइश करते हैं ना, तो दिल मेरा मतलब धड़कने लगता है। फिलहाल धर्मेश जी की फरमाइश का गाना है, मैं सोचने लगती हूँ कहीं आप लोग का दिल तो नहीं टूट गया, तो फिलहाल दिल ना टूटे, भगवान करे ये गाना सुनते बस।

बारिश की बूंदें एहसास लेके आती हैं। हाँ, कभी कभी ये बूंदें तबाही भी मचाती हैं, जैसा कि हम असम में और बहुत ज़्यादा जगहों पे देख रहे हैं कि भाई बाढ़ आ रही है, नुकसान हो रहा है। लेकिन ये उम्मीदें भी जगाती हैं, कभी किसी के मन में प्यार की तो कभी किसी के मन में किसी के काम के पूरे होने की, जैसे कि किसानों के लिए बहुत सारी उम्मीदें पूरी होनी होती हैं। तो चलिए एक और गाने की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक कविता सुनाती हूँ। कहते हैं कि सावन फिर आया है, धरती ने हरियाली का आंचल फैलाया है, बूंदों ने छेड़ी है मीठी सरगम, बादलों ने प्रेम का गीत गाया है, रिमझिम की हर एक फुहार दिल में जगा दे नया सा प्यार, मिट्टी की खुशबू कहती है जिंदगी का हर मौसम है उपहार, झूले पड़ गए नीम की डाली पर, कजरी गूंजे हर चौपाल, मेहंदी रचाए हस्ती हथेलियां, सज उठे सपनों के हर ख्याल, कहीं किसान की आंखों में उम्मीद है, कहीं बच्चे बारिश में मुस्कुराते हैं, सावन सिर्फ मौसम नहीं होता, ये रिश्तों को भिगो जाते हैं, आओ इस सावन में कुछ शिकवे भी बारिश में बहा देते हैं, कुछ रिश्तों की सूखी मिट्टी पर चलो अपनेपन और विश्वास का पौधा लगाते हैं। अभी हम सुनने जा रहे हैं अगला गाना, जो है उषा कश्यप गोंडा से, सुनना चाहती हैं थोड़ा हटा मांगो फूल बड़े नाजुक होते हैं, क्या बात है, ये गाना बड़ा अच्छा सा है, मैं काफ़ी दिनों बाद ये सुन रही हूँ, थैंक यू ऐसी फरमाइश करने के लिए।

बिल्कुल हैंडल विद केयर वाला सीन है फूलों के साथ, तो बांसुरिया यही पुकारे गाना।

तो चलिए, बांसुरिया तो बज गई और अगला गाना बजने को तैयार है। गाना है भाई, जाना जाना है दूर, कहीं दूर जाना है। आहा,

0: दिशा दी जाती है।
1: आप अकेले नहीं हैं,
0: मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्र मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
3: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
2: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
3: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, असम में एक हाईवे पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, यह है बायता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
1: आर्टिकल 370 गेटिंग अब्रोगेटेड।
4: अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा है।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
5: लोकसभा की कार्यवाही 2 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इजरायल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
6: 19 लाख हाउसहोल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
7: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
6: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
2: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
8: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं।
2: 2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
9: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। ईशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।
10: छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 4 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है, जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
2: उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये एक जन आंदोलन में बदल गया है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
11: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.22 रुपए पर बंद हुआ।
2: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता व्यक्त की है। 27 जुलाई को POJK में
12: सुर में गाना सीखिए।
2: चुनावों के पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़प हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी बलिशेट्टी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बात करते हैं हम लोग तो देश की मिट्टी ना सिर्फ देश की मिट्टी है बल्कि हमें अलग अलग रंगों के साथ प्रेरित भी करती है कि हम अलग होते हुए भी एक ही हैं। तो देश को समर्पित एक गाना हम लोग सुनने जा रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत प्यारे से लिसनर की फरमाइश है। और ख़ास बात यह है कि इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है तो हम लोग को अपने देश को थोड़ा सा ट्रिब्यूट तो देना चाहिए। रवि की फरमाइश का ये गाना है देश रंगीला रंगीला। और ऐसे ही सुनते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM।

गौवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: नफरत की हमारे शहर में लग न जाए आग, नफरत की हमारे शहर में मैं मोहब्बत हूँ, मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप इस्तकबाल आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणस्थल 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। बहारे गजल यानी वो कार्यक्रम जो बात करता है नींव के ईंट की। महल हम सबको दिखाई देता है, लेकिन जो नींव की ईंट होती है वो शायद हमारी नजरों से बावस्ता या रूबरू नहीं हो पाती। लिखने वाले लिखते हैं, संगीतबद्ध होती हैं चीजें, गाने वाले ने गा दिया और गीत अमर हो जाता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जिसने उस गजल को उन नगमों को उन गीतों को अपनी कलम से पिरोया, वे कलमकार, शायद उनका नाम हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। हम सब ने सुना होगा, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, लेकिन शायद हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस प्यारी सी गजल को लिखा किसने है। आवाज हम सभी जानते हैं, कलम की ताकत है, और हम उसी ताकत पर आपसे बात करते हैं, उन्हीं शख्सियत की बात करते हैं जो जिंदगी के कई सारे मौजूआत को छूती हुई, जिनकी कलम हम सभी को कहीं ना कहीं एक सुकून सा देती है। जी हाँ, बात करते हैं उन दानिश्वरों की जो देश पर जब संकट पड़ा तो भी उन्होंने लिखा, जब बेटे को आवश्यकता हुई तो भी उनकी लेखनी काम आई, जब हम उदास हुए तो उनकी लेखनी काम आई, और जब हम खुश हुए तो भी उनका जादू सर चढ़कर बोला। आज जिस शायर की हम आपसे बात करने वाले हैं, उनका नाम उर्दू अदब की दुनिया में लिया जाता है, और न जाने कितने तालिबे इल्म अर्थात विद्यार्थी उनकी लिखी हुई गजलों पर रिसर्च करते हैं और पीएचडी की डिग्री उनको प्राप्त होती है, नाम के आगे डॉक्टर लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब की, जिन्होंने गजल को महबूबा की बाहों तक सीमित नहीं रखा। ये सिर्फ गुफ्तगू नहीं हुई महबूब और महबूबा के बीच, बल्कि हमारे घर आंगन की बात हुई, परिवार की बात हुई, समाज की बात हुई और देश की बात हुई। जीने का सलीका सिखाया प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने अपनी गजलों के माध्यम से। जब उन्होंने शुरुआत करी मुशायरों में शिरकत करने की, तो उन दिनों लोग सुर में ही गाते थे, तहत में। वसीम बरेलवी साहब ने एक नई परंपरा चलाई, दो पंक्तियों की बात और ऐसी बात जो सीधे दिल को छू जाए। एक उदाहरण देते हैं आपको कि उन्होंने लिखा कि यही जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मका नहीं होता। जिन्होंने हमको बोलने का सलीका सिखाया और कहा कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने,
कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है। जिंदगी का सच बयां किया, परिवार के मुखिया का जब दर्द बयां किया तो अंदाज कुछ यूं था कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता। आप में से अक्सर हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हों जो परिवार के मुखिया हों और सुन रहे हों मुझे, तो कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम नहीं बता सकते परिवार में, मन की बात मन में ही रख लेते हैं। तो उन्होंने लिखा, क्या दुख है समंदर को। समंदर यहां पर परिवार के मुखिया को रिप्रेजेंट करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है, सिंबलिज्म है। क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता। तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या। हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, और प्यासे ही रह जाते हैं दुनिया के सवालात, प्यासे ही रह जाते हैं दुनिया के सवालात। किसके लिए जिंदा हूं बता भी नहीं सकता। ये घर आंगन का दर्द है जो उन्होंने अपनी शायरी में ढाला, अपनी गजलों में ढाला। बात करेंगे उनके व्यक्तित्व की, बात करेंगे कुछ और गजलों की, उनके कुछ ऐसे शेरों की जो लोगों की जुबान पर है। आइए फिलहाल आपको ले चलते हैं एक प्यारी सी गजल की तरफ, और इस गजल के बाद आपसे फिर मुलाकात करते हैं। जी हाँ, हमारे साथ सोनू टेलर जी हैं फतेहगढ़ से। जी हाँ, इस्तकबाल करते हैं आपका। मुस्तफ़ा जी हमारे साथ सऊदी से हैं, धर्मेंद्र मोहन जी हैं। और जी अब आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल और मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणस्थल 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।

न किसी की आँख का नूर हूँ, फिल्म लाल किला की ये प्यारी सी गजल और रफी साहब की आवाज में। वास्तव में कायनाती गला कहना उससे गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। बात कर रहे हैं प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब की। उन्होंने जिंदगी के करीब 70 साल देखे। उन्होंने अपनी इस गजल को पढ़ते वक्त कहा था कि जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखा वो ये सीखा कि इस दुनिया में अगर इंसान को एक अच्छी जिंदगी जीनी है तो डर बहुत जरूरी है। अमर उजाला वालों ने कार्यक्रम किया था और ये बात गोंडा के टाउन हॉल की है। पिछले 2 या 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं मैं। तो उन्होंने कहा था कि डर आवश्यक है। तो फिर उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया, कभी कभी हमारे ऊपर कोई नहीं होता और हम गलत या सही का फैसला नहीं कर पाते। उन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी थी कि क्या गलत है और क्या सही है। उन्होंने कहा कि जिस काम को करने के बाद आपको खुशी मिले, प्रसन्नता मिले, वो काम सही है, और जिस काम को करने के बाद आपको ये लगे कि प्रसन्नता नहीं मिली वो काम गलत है। अगर कोई व्यक्ति भूखा है और आपसे उसने कहा कि हम 2 दिनों से भूखे हैं और हमको खाना खिला दीजिए, उन्होंने कहा कि आप किसी गरीब को कभी खाना खिला कर देखिए कि होटल में बिठा लिए और कहे बाबा जितना खाना हो खाओ, वो खाना खाकर जा रहे होंगे तो आपको अंदर से एक अच्छी सी फीलिंग्स आएगी, एक प्यारी सी वाइब आएगी कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। हर वो काम करने के बाद की खुशी। तो उन्होंने कहा कि अगर इस दुनिया में हमको जीना है तो ऊपर वाले से डरना बहुत जरूरी है ताकि हम एक नेक जिंदगी जी सकें। उन्होंने कहा कि खौफे खुदा है दिल में, अगर आपके हृदय में खुदा का खौफ है कि अगर आप गलत करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा, अगर ऐसी है स्थिति आपकी है तो खौफे खुदा है दिल में तो फकरे जमी हो तुम। अगर आपके दिल में खुदा का खौफ है, अगर आप ईश्वर से डरते हैं तो निश्चित रूप से आप जमीन आप पर नाज करेगी क्योंकि आप शायद ही कुछ गलत कर पाए। खौफे खुदा है दिल में तो फखरे जमी हो तुम, खौफे खुदा नहीं तो कहीं के नहीं हो तुम। और अक्सर देखिए जो लोग नहीं डरते वो कुछ भी उनके लिए गलत या सही नहीं होता, वो ऐसे ही लोग होते हैं। उन्होंने फिर आगे कहा, होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम, होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम, इस दर्जा एहतियात से थकते नहीं हो तुम। आजकल तो फोन का दौर है, इंसान यहां रहता है तो यहां बताता है। होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम, इस दर्जा एहतियात से थकते नहीं हो तुम। और अब देखिए आपके सामने कई चेहरे आ जाएंगे, जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें, जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें, मैं खूब जानता हूं कि ऐसे नहीं हो तुम। हां हां तुम पे नाज करती हैं वादा खिलाफियां, मतलब वादा खिलाफियों पर आपको नाज होना चाहिए कि मतलब आपसे ज्यादा झूठ या आपसे ज्यादा वादा तोड़ने वाला इंसान शायद ही कोई हो। हाँ तुम पे नाज करती हैं वादा खिलाफियां, हाँ मेरे इंतजार के लायक नहीं हो तुम। और अंत में दो पंक्ति जो कही
वो हर इंसान को कहीं ना कहीं छूती है कि हसरत से तकते रहते हो बस आसमान को, हसरत से तकते रहते हो बस आसमान को, अरे होते हो जिस जमीन के उसी के नहीं हो तुम। अरे आप जमीन पर खड़े हैं, इंसान आसमान की तरफ देखे लेकिन उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका पैर जमीन पर है। और अगर इस बात का एहसास आपको है तो आपको ऊंचाइयों से डरने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम आप उड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम ये भूल जाएं कि नहीं बस आसमान ही अपना है और जमीन से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम न जमीन के होते हैं और न आसमां के होते हैं। जी हाँ, ये थोड़ा सा तल्ख नज़रिया आपको दिखाई पड़ा, थोड़ा सा थोड़ी सी बिटरनेस, थोड़ी सी कड़वाहट, थोड़ी सी सच्चाई प्रोफेसर वसीम बरेली की इस प्यारी सी गज़ल में आपने सुनी। जी हाँ, हमारे छात्र अनिल शास्त्री जी हैं, चौरसपर्श आपको, और शुभ संध्या मनु जी, आपने गाना सुनाकर दिल जीत लिया। अरे क्या बात है, रफ़ी साहब की बहुत प्यारी कव्वाली हमको याद आ गई। सविता शास्त्री जी है, चौरसपर्श करते हैं आपको भी। और अब चलिए आपको ले चलते हैं फिर भाई, अब रफ़ी साहब की गज़ल हो चुकी है तो लता जी की एक प्यारी सी गज़ल तो बनती है। आइए आपको सुनाते हैं लता जी की आवाज़ में एक प्यारी सी गज़ल, और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस

जी हाँ, स्वर कोकिला लता जी की आवाज में ये दो गजलें सुनी आपने, और आपको बताएं कि ये दोनों गजलें मिर्जा गालिब की लिखी हुई हैं। जी हाँ, जिनको शायद उर्दू में गजलों का बादशाह कहा जाता है। और एक अच्छी बात इसमें और है कि इसका जो संगीत तैयार किया है वो पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने तैयार किया है। आप में से बहुत से लोग इस नाम से परिचित होंगे, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर। और अगर नहीं परिचित हैं तो मैं आपको बताऊं कि इनको संगीत की दुनिया में लोग बाला साहेब के नाम से भी जानते हैं, और ये दीनानाथ मंगेशकर के इकलौते बेटे हैं। यानी ये भारत की जो दिग्गज गायिका हैं लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी, उषा मंगेशकर जी, ये सबसे छोटे भाई हैं उनके। जी हाँ, इकलौते बेटे हैं और तीन बहन और एक भाई। और इस गज़ल को, जो गज़ल आपने सुनी, इस गज़ल में इन्होंने संगीत निर्देशन किया है। जी हाँ, तो भाई और बहन दोनों, और गज़ल किसकी? मिर्ज़ा गालिब, जिनके लिखने का एक अलग ही अंदाज। आइए अब चलते हैं प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब की तरफ। उन्होंने कहा कि इंसान का अपना एक वजूद होना चाहिए, छोटा ही सही मतलब, लेकिन अपनी एक

सेल्फ आइडेंटिटी हो, अपना एक वजूद हो। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने पढ़ा कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कहा कि गोपियों ने कहा कि जई हैं बल बन बिगद ना बादिधिता बादिध की, बूंदता बिलई हैं बूंद विवश बिचारी की। उधर उनको समझाने आए थे कि कृष्ण को छोड़ करके क्या परमात्मा में मिल जाओगी तो क्या अस्तित्व रह जाएगा, तो अपनी जिंदगी जियो। तो उन्होंने कहा कि हम पानी की एक बूंद है और हमारा एक अस्तित्व है, भले छोटा सा ही है लेकिन अस्तित्व है, और हम अगर समुद्र में मिल जाएंगे तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लोग तब सागर कहेंगे, तब कोई इस बूंद को नहीं देखेगा। किसी शायर का शेर है कि बात कम कीजिए, हाँ निदा फाजली साहब का मुझे याद आया कि बात कम कीजिए, जहानत को छुपाते रहिए, ये नया शहर है कुछ दोस्त बनाते रहिए, दिल मिले या न मिले इससे कोई फर्क नहीं, आपका ये फर्ज है बस हाथ मिलाते रहिए। लेकिन कोई ये भी कहता है कि मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती न मिला, गर दिल नहीं मिलता है तो हाथ भी न मिला, ये बशीर बद्र साहब का शेर है। तो उन्होंने कहा कि लोग हमको समझें या हम लोगों के पीछे जाएं अच्छी बात है, लेकिन अपनी एक पहचान, अपना एक व्यक्तित्व। उन्होंने कहा कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, अगर आप हमको छोड़कर जाने लगेंगे तो हम रिश्तों की दुहाई नहीं देंगे, तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, अरे हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे, हमको महसूस किया जाता है खुशबू की तरह, हमको महसूस किया जाता है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। और जिंदगी का एक सच, इंसान वो देख लेता है जो उसे देखना होता है। उन्होंने कहा कि पिछली सफ में ही सही, सफ मतलब पंक्ति या कतार, रो पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में, पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में, अरे आप चाहेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे, आप देखेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे, आपका देखने का मन नहीं हो वो एक दूसरी बात है, दैट इज सेकेंडरी मैटर, कि आप देखना ही नहीं चाहते, हम सबसे पिछली सफ में खड़े हुए लोग हैं, लेकिन हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो हम आपको दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान, कभी सियासत पर उन्होंने अपनी कलम चलाई तो उन्होंने कहा कि आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। अब देखिए कई सारे पहलू छू रहे हैं, परिवार का मुखिया, इंसान की जिंदगी, शायरी, खुदा का खौफ, और अब अपनी एक पहचान, और अब सियासत, देश। उन्होंने कहा कि आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। आंखों को, जिसे दुनिया में क्या चल रहा है हम अपनी आंख को बंद कर लें, लेकिन इससे खतरा टलने वाला नहीं है,
जो परिस्थितियां आज किसी दूसरे के साथ हैं, वो कल हमारे भी साथ हो सकती हैं। जी, उसके कत्ल पे मैं भी खुश था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी खुश है, अगला नंबर आपका है। डॉक्टर नवाज देवबंदी की ये पंक्ति बहुत अच्छी लगती है कि अगर आप किसी के झगड़े में बहुत ही खुश हैं किसी स्थिति में, तो किस्मत पलटती है जरूर। उन्होंने कहा कि आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, जलना हो कब्र में या जलाना हो बस्म में, बस मतलब महफिल, जलना हो बस कब्र पर या जलाना हो बस्म में, ये भी किसी चराग से पूछा न जाएगा। और अब पंक्ति देखिएगा कि ये कहकर बंद हो गए सभागार के किवाड़, ये कहकर बंद हो गए सभागार के किवाड़, अब बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा। आपने अगर सच बोल दिया, खिलाफ में बोल दिया, तो यहां से जिंदा नहीं जाएंगे। ये एक शायर के अंदर का जो कवि, मतलब उसके अंदर की जो देशभक्ति होती है ना, पैट्रियटिज्म होता है, वो किसी भी रूप में बाहर निकलता है। और ये उनका बहुत ही तल्ख बयान है, ये कहकर बंद हो गए सभागार के किवाड़, बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा। आप नहीं बोल सकते। जी हाँ, बोलने पर पाबंदी लग चुकी है। और इकबाल अशर ने कहा था कि बोलने पर लगा दी पाबंदी, उसने लिखना सिखा दिया हमको। कभी कभी इंसान जब बोलने पर पाबंदी लगा देता है, तो इंसान को ऊपर वाला लिखने का हुनर दे देता है। जी हाँ, आइए आपको एक प्यारी सी गजल और सुनाते हैं, और अब आवाज रहेगी पंकज उदास साहब की। चलिए चलिए चलते हैं, थोड़ा सा झूमते हैं, थोड़ी सी मस्ती करते हैं, और फिर लौटते हैं इस प्यारी सी गजल के तत्काल पश्चात।

जी पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। क्या गजल, बहुत ही खूबसूरत गजल आपने सुनी। और अब चलते हैं भाई फिर एक बार प्रोफेसर वसीम बरेलवी की तरफ। अब बात करेंगे घर आंगन की। उन्होंने कहा कि आंखों आंखों रहे और कोई घर न हो, आंखों आंखों रहे और कोई घर न हो, ख्वाब जैसा किसी का मुकद्दर न हो। ख्वाब की क्या मतलब बिसात है, जब तक इंसान सो रहा है तब तक ख्वाब की बिसात, जागा ख्वाब खत्म। तो ख्वाब जैसा किसी का मुकद्दर न हो, क्या तमन्ना है रोशन तो सब हो मगर, हम चाहते हैं कि सब अच्छे रहें। क्या तमन्ना है रोशन तो सब हो मगर, कोई मेरे चरागों से बढ़कर न हो, लेकिन हमसे ज्यादा किसी के पास ना हो। रोशनी है तो किस काम की रोशनी, रोशनी है तो किस काम की रोशनी, आंखों के पास जब कोई मंजर ना हो। नहीं आंख है लेकिन अगर ख्वाब देख नहीं पा रहे तो क्या फायदा। और अब देखिएगा परिवार के मुखिया की बात कि क्या अजब आरजू घर के बूढ़ों की है। अगर आप लोगों ने महसूस किया होगा तो हम लोग के पेरेंट्स, हम लोग के माता पिता, मतलब शाम होते ही बेटा घर आ जाना, सबने सुना होगा। क्या अजब आरजू घर के बूढ़ों की है, शाम हो तो कोई घर से बाहर ना हो, शाम तक वापस आ जाओ, समय से आ जाइए। जिसे कमतर समझते रहे हो तुम लोगों, जिसे आप बहुत कम समझ रहे हैं, अरे मिलकर देखो कहीं तुमसे बेहतर ना हो। ऐसा ना हो जिसे आप कम समझ रहे हो वो आपसे ज्यादा काबिल हो। अंदाजा लगाइए जरा, मिलकर देखिए। जी हाँ, और अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो शनिवार को पुनः आप सभी से मुलाकात होगी आपके ही प्यारे से कार्यक्रम बहारे गजल में। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गणस्थली 89.6 FM, ये अब सिर्फ गोंडा ही नहीं बल्कि आपके दिल की धड़कन भी बन चुकी है। जी हाँ, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आपने सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आसमान वाले ने चाहा तो मिलते हैं शनिवार को। गजलें हमारी, गीत आपके खजाने को तैयार रखिएगा। आसमान वाले ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी आपसे शनिवार को ठीक 9:30 बजे आप ही के कार्यक्रम बहारे गजल में।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी प्यार का सिला। एम्बुलेंस का सायरन बज रहा था, लोग घबरा कर इधर उधर भाग रहे थे। छुट्टी का दिन होने से अस्पताल का आपातकालीन सेवा विभाग ही खुला हुआ था। शोर शराबे से डॉक्टर नीलकंठ की तंद्रा भंग हो गई। घड़ी पर निगाह डाली, रात के 10:20 हो रहे थे। उसे एलिस के लिए चिंता हो रही थी और उस पर क्रोध भी आ रहा था। 9 वो रोज उसके लिए कॉफी बनाकर ले आती थी। वैसे उसने फोन पर बताया था कि वो 1-2 देर से आएगी। सर, वार्ड बॉय ने आकर कहा, एक इमरजेंसी केस है, ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया है। मेल है या फीमेल? नीलकंठ ने खड़े होते हुए पूछा। औरत है, वार्ड बॉय ने उत्तर दिया। कहते हैं कि आत्महत्या का मामला है, पुलिस को बुलाना होगा। नीलकंठ ने पूछा, साथ में कौन है? 2-3 पड़ोसी हैं सर, वार्ड बॉय बोला। ठीक है, ऑपरेशन की तैयारी करने को कहो, मैं आ रहा हूं। और हाँ, सिस्टर एलिस नहीं आई अभी तक? नीलकंठ बोले, जी अभी अभी आई हैं, उस घायल औरत के साथ ओटी में हैं, वार्ड बॉय ने जाते हुए कहा। राहत की सांस लेते हुए नीलकंठ ने कहा, तब तो ठीक है। वो जल्दी से ओटी की ओर चल पड़ा। दरअसल मन में एलिस से मिलने की जल्दी थी, घायल की ओर ध्यान कम ही था। एलिस को देखते ही वो बोला, इतनी देर कहां लगा दी, मैं तो चिंता में पड़ गया था। सर जल्दी कीजिए, एलिस ने उत्तर दिया, मरीज की हालत बहुत खराब है। और क्या? नीलकंठ ने एप्रन पहनते हुए पूछा। सारी तैयारी तो कर दी है ना? जी सब तैयार है, एलिस ने गंभीरता से कहा। सर घायल औरत और कोई नहीं, आपकी पत्नी सुरमा है। सुरमा? वो लगभग चीख उठा। सुबह ही नीलकंठ का सुरमा से खूब झगड़ा हुआ था। झगड़े का कारण एलिस ही थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है प्यार का सिला। अब तक आपने सुना डॉक्टर नीलकंठ का उनकी पत्नी सुरमा से भयानक झगड़ा हुआ था। कारण था उनकी सिस्टर एलिस। सुरमा ने आत्महत्या का प्रयास किया और उसे इलाज के लिए नीलकंठ के ही अस्पताल में लाया गया। अब आगे नीलकंठ और एलिस का प्रणय प्रसंग उनके वैवाहिक जीवन में विष खोल रहा था। सुबह सुरमा बहुत अधिक तनाव में थी क्योंकि नीलकंठ के कोट पर दो चार सुनहरे बाल चमक रहे थे। सुरमा को पूरा विश्वास था कि ये एलिस के ही हैं। पूरी कहानी पर्दे पर चलती फिल्म की तरह साफ थी। झुंझलाकर क्रोध से पैर पटकता हुआ नीलकंठ बाहर निकल गया था। जाते जाते सुरमा के चीखते शब्द कानों में पड़े थे, आज तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। ऐसी धमकियां सुरमा कई बार दे चुकी थी। एक बार नीलकंठ ने उसे ताना भी दिया था। जाने मन, जीना जितना आसान है मरना उतना ही मुश्किल। मरने के लिए बहुत बड़ा दिल और हिम्मत चाहिए। मर कर भी दिखा दूंगी, सुरमा ने तड़प कर कहा था। तुम्हारी तरह नाटकबाज नहीं हूं, देख लूंगा नीलकंठ ने विषैली मुस्कुराहट के साथ कहा था। वो शुभ घड़ी आने तो दो। आखिर सुरमा ने अपनी धमकी को हकीकत में बदल दिया था। उनका घर पांचवी मंजिल पर था। वो बालकनी से नीचे कूद पड़ी थी। इतनी ऊंचाई से गिरकर बचना बहुत मुश्किल था। नीचे हरी हरी घास का लॉन था। उस दिन घास की कटाई हो रही थी। कटी घास के ढेर लगे थे। सुरमा उसी एक ढेर पर जा गिरी। उस समय तो बच गई पर चोट बहुत गहरी आई थी। शोर मचते ही कुछ लोग जमा हो गए। उन्होंने सुरमा को पहचाना और यही ठीक समझा कि उसे नीलकंठ के पास उसी के अस्पताल में पहुंचा दिया जाए। काफी खून बह चुका था। नब्ज बड़ी मुश्किल से पकड़ में आ रही थी। शरीर का रंग फीका पड़ रहा था। नीलकंठ के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। सुरमा से पीछा छुड़ाने का ये बहुत अच्छा अवसर है। इसके साथ जीवन काटना बहुत दूभर हो रहा है। हमेशा की किटकिट से परेशान हो चुका हूं। एक डॉक्टर को समझना हर औरत के वश की बात नहीं। कितना तनावपूर्ण जीवन होता है। अगर चंद पल किसी के साथ मन बहला लिया तो क्या हुआ। पत्नी को इतना तो समझना चाहिए कि हर पेशे का अपना अपना अंदाज होता है। सहसा चलते चलते नीलकंठ रुक गया। क्या हुआ सर, एलिस ने चिंतित स्वर में पूछा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना। मैं ये ऑपरेशन नहीं कर सकता, नीलकंठ ने लड़खड़ाते स्वर में कहा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है प्यार का सिला। अब तक आपने सुना डॉक्टर नीलकंठ की उनके ही हॉस्पिटल की सिस्टर एलिस से दोस्ती थी, इसी कारण हमेशा उनके और उनकी पत्नी सुरमा के बीच तनाव रहता था। और उस दिन सुरमा ने आत्महत्या की कोशिश की। इलाज के लिए उसे नीलकंठ के ही अस्पताल में लाया गया। नीलकंठ के मन में बहुत से विचार एक साथ चल रहे थे। कहीं ना कहीं वो ये भी चाहता था कि वो सुरमा का इलाज ना करे और सुरमा का अंत हो जाए। अब आगे, कोई डॉक्टर अपनी पत्नी या सगे संबंधी का ऑपरेशन नहीं करता क्योंकि उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? एलिस ने आश्चर्य से पूछा। जल्दी से डॉक्टर जतिन को बुला लो, नीलकंठ ने वापस मुड़ते हुए कहा। वो सोच रहा था कि ऑपरेशन में जितनी देर लगेगी उतनी जल्दी ही सुरमा इस दुनिया से चली जाएगी। ये कैसे हो सकता है? एलिस ने तनिक ऊंचे स्वर में कहा। डॉक्टर जतिन को आते आते एक घंटा तो लग ही जाएगा, लेकिन इतना समय कहाँ है? मैं मानती हूँ कि आपके लिए पत्नी को इस दशा में देखना बड़ा कठिन होगा और ऑपरेशन करना उससे भी ज्यादा मुश्किल, पर ये तो इमरजेंसी है सर। नहीं, नीलकंठ ने कहा, ये डॉक्टरी नियमों के विरुद्ध होगा और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। ठीक है, कम से कम आप कुछ देखभाल तो करें, एलिस ने कहा। मैं अभी डॉक्टर जतिन को संदेश भेजती हूँ। डॉक्टर नीलकंठ जब ओटी में घुसे तो आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कितनी ही लहरें मन में उठती और फिर बादलों की तरह गायब हो जाती। सामने सुरमा का खून से लथपथ शरीर पड़ा था जिससे कभी उसने प्यार किया था। वो पल कितने मधुर थे। इस समय सुरमा की आंखें बंद थीं, एकदम बेहोश और दीन दुनिया से बेखबर। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसके मन में कितना तूफान उठा होगा। एक क्षण अपराध भावना से नीलकंठ का हृदय कांप उठा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को झंझोड़ रही हो। नीलकंठ ने कांपते हाथों से सुरमा के बदन से खून साफ किया। उसका सिर फट गया था। वो कितने ही ऐसे घायल व्यक्ति देख चुका था, पर कभी मन इतना विचलित नहीं हुआ था। वो सोचने लगा, क्या सुरमा की जान बचा सकना उसके वश में है? लेकिन डॉक्टर जतिन के आने से पहले ही सुरमा जा चुकी थी। नीलकंठ सूनी आंखों से उसे देख रहा था। वो जड़वत खड़ा था। जतिन ने शव की परीक्षा की और धीरे से नीलकंठ के कंधे पर हाथ रख दिया। बोला, एलिस, नीलकंठ को केबिन में ले जाओ, इन्हें कॉफी की जरूरत है। एलिस ने आहिस्ता से नीलकंठ का हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए ओटी से बाहर ले गई। कमरे में ले जाकर उसे कुर्सी पर बैठाया।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है प्यार का सिला। अब तक आपने सुना डॉक्टर नीलकंठ और उनके हॉस्पिटल की सिस्टर एलिस के बारे में जानकर नीलकंठ की पत्नी सुरमा बहुत परेशान रहती थी।

अक्सर उनके घर में लड़ाइयां होती और उस दिन सुरमा ने आत्महत्या की कोशिश की। उसे इलाज के लिए नीलकंठ के ही अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन नीलकंठ ने दुर्भावना से उसका इलाज करने से मना कर दिया, बहाना बना दिया। दूसरे डॉक्टर के आते आते बहुत देर हो गई थी और सुरमा ये संसार छोड़कर चली गई। अब आगे। सर, मुझे दुख है, एलिस ने आहत स्वर में कहा। सुरमा जी के ऐसे अंत की मैंने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी, नीलकंठ ने गहरी सांस लेकर कहा। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, कसूर मेरा है। नीलकंठ आंखें बंद किए सोच रहा था, शायद सुरमा को बचा पाना मेरे वश के बाहर था, पर कोशिश तो कर ही सकता था ना। लेकिन मैं टालता रहा क्योंकि सुरमा से छुटकारा पाने का यह सुनहरा अवसर था। मैं कलह से मुक्ति पाना चाहता था। अब शायद एलिस मेरे और करीब आ जाए। एलिस सामने कॉफी का प्याला लिए खड़ी थी। पुलिस सूचना पाकर आ गई थी। औपचारिक रूप से पूछताछ की गई। ये स्पष्ट था कि दुर्घटना के पीछे पति पत्नी के बिगड़ते संबंध थे, परंतु नीलकंठ का इस दुर्घटना में कोई हाथ नहीं था। नैतिक जिम्मेदारी रही हो, पर कानूनी निगाह से वो निर्दोष था। पोस्टमार्टम के बाद शव नीलकंठ को सौंप दिया गया। दोनों ओर के रिश्तेदार सांत्वना देने और घर संभालने आ गए थे। दाह संस्कार के बाद सबके चले जाने पर एक सूनापन सा छा गया। नीलकंठ को सामान्य होने में सहायता दी केवल एलिस ने। अस्पताल में ड्यूटी के समय तो वो उसकी देखभाल करती ही थी, पर समय पाकर अपनी छोटी बहन अनीशा के साथ उसके घर भी चली जाती थी, चाय, नाश्ता, भोजन, जैसा भी समय हो, अपने हाथों से बना कर देती थी। धीरे धीरे नीलकंठ के जीवन में शून्य का स्थान एक प्रश्न ने ले लिया। कई महीनों बाद नीलकंठ ने एक दिन एलिस से कहा, मैं तुम्हारी जैसी पत्नी ही पाना चाहता था, पर तुम पहले क्यों नहीं मिली, ये सोचकर कभी कभी परेशान हो जाता हूं। सर, एलिस बोली। सर, नीलकंठ ने टोकते हुए कहा, कितनी बार कहा है कि मुझे सर मत कहा करो, अब तो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, ये फॉर्मेलिटी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या कहूं, एलिस हंस पड़ी। सर, आदत सी पड़ गई है, वैसे कोशिश करूंगी

89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है प्यार का सिला। अब तक आपने सुना नीलकंठ और एलिस के संबंधों के बारे में जानकर नीलकंठ की पत्नी सुरमा ने आत्महत्या का प्रयास किया। इलाज के लिए उसे नीलकंठ के अस्पताल में लाया गया और उसने बहाने से इलाज करने से मना कर दिया। सुरमा ये दुनिया छोड़कर चली गई। काफी वक्त बीत गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर एक दिन नीलकंठ ने खुल के अपने मन की बात एलिस से करने की सोची। अब आगे तुम मुझे नील कहा करो, उसने एलिस की आंखों में झांकते हुए कहा। मुझे अच्छा लगेगा, एलिस हंस पड़ी। कोशिश करूंगी, वैसे जरा मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, नीलकंठ हंसा। आखिर मैं भी तो तुम्हें एलिस कहकर बुलाता हूं। आपकी बात और है, एलिस ने कहा। आप तो मुझसे सीनियर हैं, तो नाम से बुला ही सकते हैं। तो फिर तुम मुझे किस रिलेशन से नाम लेके बुलाओगी? नीलकंठ के स्वर में शरारत थी। पता नहीं, तुम जानती हो मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या भावना है, नीलकंठ ने कहा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सोने जीवन में बहार बन के प्रवेश करो। ये तो अभी मुमकिन नहीं, एलिस ने छत की ओर देखा। अभी नहीं तो कोई बात नहीं, नीलकंठ ने कहा। पर वादा तो कर सकती हो। नीलकंठ को विश्वास था कि एलिस इनकार नहीं करेगी। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये कहना भी मुश्किल है, एलिस ने मेज पर पड़े चम्मच से खेलते हुए कहा। क्यों? नीलकंठ ने आश्चर्य से पूछा। आखिर हम अच्छे दोस्त हैं। बस दोस्त ही बने रहें तो अच्छा है, एलिस ने कहा। क्या मतलब? नीलकंठ ने खड़े होते हुए पूछा। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अगर शादी कर ली तो इस बात की क्या गारंटी है कि मेरा भी वही हश्र नहीं होगा जो सुरमा जी का हुआ? एलिस ने एक एक शब्द तौलते हुए कहा। ये सुनते ही नीलकंठ को मानो सांप सूख गया। उसने कुछ कहना चाहा पर जबान पर ताला पड़ गया था। एलिस ने साथ रहने से इनकार जो कर दिया था। आज सुरमा को उसके प्यार का सिला मिल गया था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी प्यार का सिला। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
5: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
4: और जेंट्स के लिए?
5: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
4: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 9125-70-75-93 और 9696-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
6: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9286-9976-9216-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
6: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840 3395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
7: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।